मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 जुलाई 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56:35 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.6 बजने को है। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनज़र नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने

0: 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। और पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
4: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। देवों के देव महादेव, जो अपने भक्तों के जीवन से हर भय, हर कष्ट और हर अंधकार को दूर करते हैं, उनकी भक्ति मन को असीम शांति और आत्मबल प्रदान करती है। आइए भोलेनाथ की महिमा का गुणगान करते हैं।

आस्था जब स्वर बनकर गूंजती है तो वातावरण भी भक्तिमय हो उठता है। भगवान शिव का स्मरण हमें ये सिखाता है कि सादगी, धैर्य और करुणा ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। कैलाशपति भोलेनाथ अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाते हैं।

संतों की वाणी हमें बार बार यही संदेश देती है कि इस संसार में यदि कोई सच्चा दाता है तो वो केवल परमात्मा है। मनुष्य तो केवल माध्यम है, देने वाला वही सर्वशक्तिमान है जिसकी कृपा से जीवन में सुख, शांति और संतोष का प्रकाश फैलता है।

माँ की आराधना केवल शक्ति की उपासना नहीं बल्कि विश्वास साहस और आत्मबल का उत्सव भी है। जब भक्त सच्चे मन से माँ के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करता है तो उसकी एक ही कामना होती है कि ऐसा वरदान मिले जो जीवन को सदाचार सेवा और सद्भाव की राह पर आगे बढ़ाए।

नरेंद्र चंचल के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है विचार बिंदु। आज सुनिए शक संवत की अवधारणा इस विषय पर।
1: सैकड़ों वर्षों तक भारत में विभिन्न प्रकार के संवत प्रयोग में आते रहे। अलबरूनी ने 5 संवतों के नाम दिए हैं, जैसे श्रीहर्ष, विक्रमादित्य, शक, वल्लभ एवं गुप्त संवत। कलयुग संवत के विषय में सबसे प्राचीन संकेत आर्यभट्ट द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जब वे 23 वर्ष के थे तब कलयुग के 3600 वर्ष बीत चुके थे। इस हिसाब से आर्यभट्ट 476 ईस्वी में पैदा हुए। मध्यकाल के भारतीय ज्योतिषियों ने माना है कि कलयुग के आरंभ में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रविवार के सूर्योदय के समय सभी ग्रह एक साथ उपस्थित थे। श्रीमद्भागवत पुराण में विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा की आयु 100 दिव्य वर्षों की मानी गई है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को मिलाकर एक महायुग बनता है और ऐसे 1000 महायुगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतनी ही समय की एक रात्रि भी होती है और ब्रह्मा के एक ऐसे 1000 दिन विष्णु की एक घड़ी होती है और भगवान विष्णु की 1200000 घड़ियों की शिव जी की आधी कला होती है और शिव जी की 1 अरब अर्धकला व्यतीत होने पर एक ब्रह्माक्षर होता है। भगवान वेदव्यास के अनुसार ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु शासन करते हैं। उनके नाम हैं स्वयंभू, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। इस प्रकार ब्रह्मा के 6 मनु बीत चुके हैं। इस समय 7वें वैवस्वत मनु का 28वां युग चल रहा है। वर्तमान संवत्सर का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हो रहा है। अब तक सृष्टि के 1,95,58,85,102 वर्ष बीत चुके हैं। इसमें 17,28,000 वर्ष सतयुग के, 12,96,000 वर्ष त्रेता के, 8,64,000 वर्ष द्वापर के बीत गए हैं और 4,32,000 वर्षों तक जीने वाले कलयुग के 5,102 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,898 वर्ष अभी बीतने को बाकी हैं। नवंबर सन 1952 में शासन की ओर से डॉक्टर मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में पंचांग सुधार समिति बनी। उसके द्वारा दिया गया निर्णय इस प्रकार है। पहला, शक संवत का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा, वर्ष का प्रारंभ वासंतिक विषु के अगले दिन से होना चाहिए। तीसरा, चैत्र वर्ष का प्रथम मास होगा और सामान्य वर्ष में 365 दिन और प्लुत यानी लीप ईयर में 366 दिन हो। शक संवत में 78 जोड़ने पर यदि 4 से भाग लग जाए तब वह प्लुत वर्ष माना जाएगा। भारतीय संवत की बात करता हुआ अलबरूनी लिखता है कि भारतीय लोगों के पास ग्रहों एवं सप्ताह दिनों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत ही पुरानी परिपाटी है जो पूरी तरह से गणित पर आधारित है और वैज्ञानिक है। अलबरूनी सच कहता है क्योंकि शक संवत हमारे लिए धुरी है और इस धुरी पर हमारी जीवन शैली समय चक्र की तरह निरंतर गतिमान बनी रहती है।
0: विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे शक संवत की अवधारणा इस विषय पर। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

AIR at 90. आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुने राहुल शाह से रानू जायसवाल की वार्ता, बातचीत मुर्गी पालन को कैसे बनाएं आय का साधन।
1: देखो भैया, समय समय पे खेती किसानी के अपने प्रोग्राम में कृषि विशेषज्ञ भैया आवत रहते हैं, यही के बीच में काम से हमारे बीच आए हैं राहुल शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर पशुपालन विभाग सुवाट्स एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज। आज भैया जौन हम भैया से चर्चा करब ओकर विषय है मुर्गी पालन के आय के प्रभावी साधन का हो, और जोने से किसान भैया बहनी हरण के ओकर लाभ मिले। भैया ये बताएं कि कौन मुर्गी पालन किया जाए कि जोने से किसान भैया बहनी हरण के अच्छी आमदनी हो।
2: देखिए, अलग अलग तरीके के किसान होते हैं।
1: हाँ।
2: और वो मुर्गियों को जो है अलग अलग तरीकों से पालते हैं।
1: हाँ।
2: तीन तरीके की मुर्गियों को हमारे देश में पाला जाता है। पहली ब्रायलर होती है,
1: हाँ।
2: जिसे मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है और 35 सप्ताह में लगभग ये तैयार हो जाती है।
1: अच्छा।
2: दूसरा अंडों के लिए पाला जाता है,
1: हाँ
2: जिसे लेयर कहते हैं, जो अंडा उत्पादन का काम करती है। ये 18 से 20 सप्ताह का समय लेती है और अंडों को जो है उत्पादित करती है।
1: हाँ
2: कई किसान इसे पालते हैं। तीसरी मुर्गियां देशी मुर्गियां होती है, जो कि देशी मुर्गियां सभी जानते हैं कि किसान घरों पे पालते हैं।
1: अच्छा, ये बताओ डॉक्टर साहब, कौन बात के विशेष ध्यान रखे के चाहिए मुर्गी पालन में?
2: मुर्गी पालन में हमको जातियों का जो चयन है
1: हाँ हाँ
2: उसका विशेष ध्यान दें,
1: हाँ
2: आहार का विशेष ध्यान दें,
1: हाँ
2: और इस बात का विशेष ध्यान दें कि जिस जगह पे हम उसको रख रहे हैं
1: हाँ हाँ
2: वो अच्छी तरीके से वो बिछावन वहाँ पे हो।
1: अच्छा।
2: क्योंकि नमी और गर्मी के समय में
1: हाँ हाँ
2: मुर्गियों में बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं,
1: अच्छा,
2: तो बिछावन साधन जो है उसके अच्छे तरीके के रहने चाहिए।
1: अच्छा अच्छा अच्छा ये बताओ डॉक्टर साहब, पोल्ट्री फार्म में कैसन रहे के चाहिए जौने से मुर्गी के विकास में और उनके रोग कम लगे?
2: जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नमी जिस स्थान पर मुर्गियों को हम रख रहे हैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए।
1: हाँ हाँ हाँ
2: और समय समय पर जो मुर्गी है उसका हमको टीकाकरण करना चाहिए।
1: अच्छा।
2: जब टीकाकरण का समय आता है उसका टीकाकरण करें,
1: हाँ हाँ
2: उसको साफ सुथरा पानी हम पिलाएं,
1: हाँ हाँ
2: खनिज लवण हम उसे उपलब्ध कराएं।
1: हाँ हाँ
2: ये सब छोटी छोटी बातें हैं पर विशेष हैं।
1: अच्छा। डॉक्टर साहब ये बताएं, कैसन आहार की जरूरत होता है मुर्गी पालन में?
2: मुर्गी पालन के लिए आपको दाने की मात्रा अधिकतम रखनी चाहिए,
1: हाँ हाँ
2: क्योंकि एक जो है आरोमंथी पक्षी है और दूसरी चीज़ है डाइजेशन के लिए कंसंट्रेट मिक्सचर आता है।
1: हाँ हाँ हाँ
2: वो स्टार्टर फीडिंग जो है स्टार्टिंग में देते हैं,
1: हाँ
2: फिर मिड में देते हैं और
1: हाँ
2: फिर एंड में देते हैं। तीन तरीके के फीड बाजार में उपलब्ध हैं,
1: हाँ
2: तो किसान भाई उसे लेकर के मुर्गियों को दे सकते हैं।
1: अच्छा।
2: साथ में इसमें खनिज लवण,
1: हाँ हाँ
2: खनिज लवण भी मिलाना चाहिए ताकि उसके शरीर के जितने भी रोग हैं वो नियंत्रित हो सके।
1: अच्छा।
2: तो इससे उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, पैदावार भी अच्छी होगी।
1: अच्छा। पानी का भी मन उपयोगिता डॉक्टर साहब कैसा है?
2: पानी जो है, पानी मुर्गियों को साफ सुथरा पानी हमें हमेशा देना चाहिए।
1: अच्छा।
2: काई लगा पानी हम ना दे। कई बार होता है कि बर्तनों को ऐसा रखते हैं कि काई लग जाती है।
1: हाँ हाँ हाँ
2: काई वाला पानी बिल्कुल भी ना दें। पानी पर विशेष ध्यान दें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान हम दें।
1: अच्छा। एकर मतलब ये है कि समय समय पे कनम से साफ सफाई का बहुत
2: साफ
1: ध्यान।
2: सफाई का विशेष ध्यान
1: अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि रोग बहुत ज़्यादा लग जाते हैं
2: जी।
1: कभो कभो, ऐसा होता है कि किसान भैया बहनी हरिन के मुर्गी पालन किए हैं, 100-100, 200 मुर्गी मर जाते हैं, तो ये बात के कैसे ध्यान में?
2: कॉक्सिडियोसिस एक बीमारी होती है, जैसा मैंने शुरू में ही बताया
1: हाँ हाँ
2: कि
1: हाँ
2: ये ज़्यादा गर्मी और नमी के कारण होती है। नमी
1: अच्छा
2: में क्या होती है, मुर्गियों के जो पंजे होते हैं उसमें मिट्टियाँ लगती हैं।

0: है
1: हाँ
0: या
1: हाँ
0: फिर नमी यदि है जहाँ पे बिछावन है, वो उसके पैरों में जम करके बैक्टीरिया और फंगस को बढ़ाएंगे और उसके कारण वो बीमारी जो है धीरे धीरे शरीर में उसके फैलेगी बैक्टीरिया फंगस के थ्रू। तो वो सब बातों को ध्यान रखते हुए पहले ही हम वैक्सीनेशन करा दें और सूखा और साफ सुथरा जगह
1: अच्छा
0: मुर्गी पालन के लिए हम रखें।
1: अच्छा ये बताओ डॉक्टर साहब, कुछ किसान भैया बहनी हरे ऐसा हैं कि आवश्यकता से अधिक मुर्गी के जोन बच्चा है ओके डाल देते हैं, ये कितना उचित है?
0: देखिए, आपके पास जितना क्षेत्र है
1: हाँ
0: उस क्षेत्र के हिसाब से मुर्गियों को हमें रखना चाहिए।
1: हाँ हाँ
0: हमारा फॉर्म की कैपेसिटी 500 की है,
1: हाँ हाँ
0: 1,000 की है,
1: हाँ
0: 1,500 की है,
1: हाँ
0: 2,000 की है,
1: हाँ
0: उस हिसाब से हम उसे रखें।
1: अच्छा
0: तो ये नहीं कि उसमें 1,000 की कैपेसिटी है और हमने उसमें 2,000 डाल दिया,
1: हाँ हाँ हाँ
0: क्योंकि वो बढ़ते हैं शरीर से,
1: हाँ हाँ
0: उनको स्पेस चाहिए रहता है,
1: हाँ हाँ
0: घूमने फिरने के लिए भी उन्हें जगह चाहिए, खाने के लिए जगह चाहिए, फिर आप पानी के वाटरर भी जो कहलाते हैं, पानी के बर्तन जो होते हैं,
1: हाँ हाँ
0: उसे
1: हाँ
0: भी आप रखते हैं,
1: हाँ हाँ
0: तो जगह का विशेष ध्यान दें।
1: अच्छा
0: तो उसी के अनुसार हम चूजों की संख्या को उसमें रखें।
1: अच्छा अधिक होने पे नुकसानदायक हो
0: अधिक
1: सकता
0: होने पे वो नुकसानदायक भी होगा और
1: है।
0: बीमारियां भी फैलेगी और पक्षी जो है एक साथ पूरे स्लॉट में फिर इसलिए खत्म भी हो जाते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब ये बताओ, बचाव तो ठीक है लेकिन अगर मुर्गी में जोन बच्चा है जोन मुर्गी पालन किया गया है उमन अगर रोग लग गया है तब कैसे बचाव किया जाए कि कम से कम मुर्गी मरे जोने से किसान भैया बहनी हरण के नुकसान कम हो?
0: तुरंत अपने आसपास के पशु चिकित्सा विभाग में जाइए
1: हाँ हाँ
0: और
1: हाँ
0: मुर्गी में क्या रोग है वो डॉक्टर तुरंत आएंगे आपके, चेक करेंगे और आपको तुरंत वैक्सीनेशन क्या करने हैं तुरंत वो आपको उपलब्ध कराएंगे।
1: एकर मतलब यह है कि जो पशु चिकित्सालय है वहां जाके एकर काम
0: तुरंत
1: से?
0: वहाँ पे जाके यह संपर्क करें।
1: अच्छा, डॉक्टर साहब ये तो ठीक है। ये बताओ लागत कैसे कम किया जाए और आमदनी बढ़िया किसान भैया बहनी हरण के मुर्गी पालन से?
0: हाँ, पानी को कम खर्च करें, आहार जो है कोशिश करें कि आहार सस्ता हो,
1: हाँ
0: नज़दीकी बाजार से खरीदें, ये नहीं कई दूर से मंगा रहे हैं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें कि सस्ता आहार लें और पानी जो है कम से कम हम इलेक्ट्रिसिटी जो होती बिजली होती है
1: हाँ
0: उसका
1: हाँ
0: हमारा कम खर्चा हो, तो
1: अच्छा,
0: उससे लागत में बहुत कमी आती है। 70% तक आहार में ही खर्चा जाता है, तो आहार को हम कंट्रोल कर सकते हैं लागत को किस
1: हाँ
0: तरीके से कि आसपास के बाजारों से हम उनसे खरीदें और
1: हाँ
0: कम दाम में खरीदें।
1: अच्छा डॉक्टर साहब ये बताओ व्यापार करे विदा किसान भैया बहनी हरण के का करे के चाहिए, ऐसा कौन कार्य करें कि जैसे उनकर जोन मुर्गी पालन होता है साथे साथे अंडा होता है, कुछ जने मांस विदा पालत हैं कुछ जने अंडा विदा पालत हैं, तो उनकर कम खर्चा में अच्छा पैसा आई जाए?
0: ऐसे स्थान पे हमारा पोल्ट्री फार्म को हम खोलें जहां पर कि हमारा चिकन जो है तुरंत सेल हो जाए। रेस्टोरेंट में हम कांटेक्ट करें, होटलों में
1: हाँ
0: कांटेक्ट करें, हम
1: हाँ
0: टेंडर दे दें किसी को,
1: अच्छा
0: तो वो तुरंत आकर के हमारे चिकन को इकट्ठा स्लॉट की स्लॉट खरीदेगा।
1: अच्छा
0: अंडे जो है, अंडे के लिए हम बेकरी वगैरह में जो है, बेकरी वगैरह में हम कांटेक्ट कर सकते हैं, तो सारे
1: हाँ
0: अंडे हमारे बेकरियों में है और बाजार में जो है नज़दीकी बाजार को हम देख करके कि हमारा सामान नज़दीक में तुरंत बिकने के लिए पहुँच सके।
1: अच्छा, मतलब एक मतलब यह है कि हमारे जो उन ट्रांसपोर्टिंग खर्चा है
0: हाँ
1: वो कम हुए। डॉक्टर साहब आप पाएन और इतनी बढ़िया जानकारी दें किसान भैया बहनी हरण के, ऐसे उन जरूर लाभ ली हैं और एक
0: बिल्कुल,
1: अनुसरण करी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू सो मच।
2: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुन रहे थे श्री राहुल शाह से रानू जायसवाल की बातचीत, मुर्गी पालन को कैसे बनाएं आय का साधन।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर राधेश्याम मौर्य की वार्ता, हड्डियों में संक्रमण की सामान्य समस्या, कारण और उपचार।
1: हड्डियों में संक्रमण की समस्या काफ़ी आम परेशानी है। हड्डियों के संक्रमण को चिकित्सकीय भाषा में ओस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। साधारणतः हड्डियों के इन्फ्लेमेशन तथा उसकी मज्जा गुहा के इन्फ्लेमेशन, जो कि किसी भी कारण, जीवाणु, तपेदिक के जीवाणु, सिफिलिस या विषाणु, कोई ठोस बाहरी वस्तु के कारण हो सकती है। संक्रमण हड्डियों के मज्जा स्थान हेवेसियन कैनाल पेरियोस्टियम के नीचे की जगह में होती है। यह दो प्रकार की होती है, नया यानी एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस तथा क्रॉनिक यानी पुराने तरीके के ओस्टियोमाइलाइटिस। यह तेज़ी से विघटित होने वाले जीवाणुओं से होता है। यह ज़्यादातर छोटे बच्चों या बड़े बच्चों में भी होते हैं, और हड्डियों में जो जहाँ पर वृद्धि होती है वहाँ से होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। जो कारण होते हैं हड्डियों के संक्रमण की, उसमें है 1 साल से कम उम्र के बच्चों में चोट के कारण, और जहाँ पे हड्डियों की वृद्धि होती है वहाँ पे होने का मुख्य कारण होता है। कुपोषण और कम साफ वातावरण के साथ साथ शरीर में कहीं फोड़ा और चर्म का जो संक्रमण होता है वो होता है। जो मुख्य जीवाणु हैं जो कि ओस्टियोमाइलाइटिस में पाए जाते हैं, उसमें स्टेफाइलोकोकस आरियस, स्ट्रिप्टोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ई कोलाई, क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस होते हैं। लक्षण जो कि हड्डियों के संक्रमण में पाए जाते हैं, उसमें होते हैं कमजोरी होना, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, सरदर्द, उल्टी, ऐठन तथा ठंड लगना, बुखार ज़्यादा ताप का होता है, नाड़ी की गति तेज होती है तथा श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है। जोड़ों पर अत्यधिक पेन होता है और वो चलने में अवरुद्ध होती हैं। हड्डियों में संक्रमण की वजह से कुछ जटिलताएं होती हैं। ये हैं टेनोसाइनोवाइटिस, हड्डियों के जो जोड़ होते हैं उनमें मवाद का बनना सपोरेटिव आर्थराइटिस कहते हैं। खून की नसों में भी संक्रमण होता है। इनके उपचार में मुख्यतः इंट्रावीनस या मुंह द्वारा दी जाने वाली एंटीबायोटिक औषधियाँ होती हैं, जैसे पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, और जब मवाद ज़्यादा हो तो ऐसी दशा में इंसीजन एंड ड्रेनेज जो कि सर्जरी होती है उसमें करते हैं। हड्डियों की जो टीबी होती है वो मुख्यतः होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर बेसिलस के कारण होती है। यह प्राथमिक तौर पर नहीं होती है, यह अक्सर द्वितीयक होती है। इनके जो लक्षण होते हैं उसमें धीमी शुरुआत होती है, एक हड्डी या एक जोड़ में होते हैं, प्रभावित अंग जो पहले हुए रहते हैं जैसे फेफड़े, आहार नाल तथा गुर्दे में होता है, परिवार में किसी और की टीबी होने की संभावना भी होती है, और कभी कभार चोट के कारण भी ऐसे उभार हो सकता है। इसका उपचार जो मुख्यतः किया जाता है उसमें सामान्यतः सामान्य रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसमें पूर्ण विश्राम की जरूरत होती है, उच्च कैलोरी का आहार एवं उच्च विटामिन युक्त भोजन दिया जाता है। प्रतिजैविक एवं रसायन चिकित्सा में एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी दी जाती है, और जब हड्डियों में दिक्कतें ज़्यादा होती हैं तो ऐसी दशा में सर्जरी की भी सलाह दी जाती है। हड्डियों की सिफिलिस के संबंध में बताया जा सकता है कि इसका रोगजनक जीवाणु स्पायरोकीट होते हैं। ट्रिपोनीमा पैलिडम नाम की जीवाणु जो होता है उसकी वजह से हड्डियों की सिफिलिस होती है। कभी कभार कवक के द्वारा भी संक्रमण होता है हड्डियों में, उसको माइकोटिक इन्फेक्शंस कहते हैं। इसमें एंटीफंगल औषधियाँ दी जाती हैं। अन्य कवक जनित बीमारियाँ जो होती हैं उसमें मदुरा माइकोसिस और स्पोरोट्राइकोसिस होती हैं। एक अन्य प्रकार की हड्डियों की बीमारी होती है जिसको साल्मोनेला ऑस्टियोमाइलाइटिस भी कहते हैं। यह साल्मोनेला पैराटाइफी बी जीवाणु की वजह से होती है। यह रोग अक्सर सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित रोगियों में पाया जाता है।
0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राधेश्याम मौर्य की वार्ता, हड्डियों में संक्रमण की सामान्य समस्या, कारण और उपचार। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की।

रात 8 बजे संसद समीक्षा और 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 7 बजे से सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ, फिल्मों से भजन 7:10 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे 7:30 पर और 12:15 पर श्रीमती कमला बोस का ख्याल गायन, और 10:30 पर श्री गुरु प्रसाद शर्मा का वायलिन वादन। नमस्कार प्रयागराज 8:45 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 9:11:30 पर और 8:15 पर।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर ज्योति मिश्रा से और शाम 7:45 पर श्रेया श्रीवास्तव से भजन और गीत सुनिएगा। वॉइस ऑफ प्रयागराज 10:05 पर सुनिएगा। लोकगीतों के कार्यक्रम में लोक माधुरी में 10:30 पर कलाकार होंगी प्रतिमा मिश्रा, राम कैलाश और रंजना त्रिपाठी। और दोपहर और 11:00 कार्यक्रम होगा एक ही कलाकार से। आपके पत्रों पर आधारित अपनी पसंद के फिल्मी गाने सुनिएगा कार्यक्रम आपकी पसंद में 12:30 पर। 1:15 गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी अधिवक्ता विनिशा जायसवाल की वार्ता, महिलाएं, महिला सुरक्षा कानून, जागरूकता और चुनौतियां।

प्रायोजित कार्यक्रम NCERT 2:30 पर होगा। शाम 5 बजे नन्हे मुन्नों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया होगा। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी 5:15 पर, इसमें सुनिएगा संस्कृति कुशवाहा की वार्ता। युवाओं के कौशल विकास हेतु किए जा रहे शारीरिक सरकारी प्रयास। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे शोभनाथ से लोक भाषा कविता पाठ, साथ ही दीनानाथ यादव और साथियों से लोकगीत। शाम 7:30 पर हिंदी कार्यक्रम में अंजनी कुमार सिंह की वार्ता होगी गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में लोक चेतना। और 8:30 पर कानून और हम कार्यक्रम में हर्ष बिहारी श्रीवास्तव की वार्ता होगी नए आपराधिक कानून एवं उनकी उपयोगिता। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा 9:30 पर होगा। तो ये थे हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है। आकाश।

0: इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

देवताओं, संतों और दुष्टों की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी प्राणी मात्र की वंदना करना भी नहीं भूले हैं। 84 लाख योनियों से स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज, ये 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी तथा आकाश में रहते हैं और उनसे भरा हुआ यह समस्त जगत भक्त कवि को सीता राममय प्रतीत होता है। हवा के साथ धूल आकाश पर चढ़ जाती है और फिर वही नीचे बहने वाले जल की संगत में कीचड़ बन जाती है। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, किंतु वही सुसंग पाकर सुंदर स्याही वन धर्मशास्त्र लिखने के काम में आता है। जड़ और चेतन सभी को राममय जान तुलसीदास जी हाथ जोड़ उनकी वंदना करते हुए अपने अल्प बुद्धि तथा अक्षमता प्रकट करना भी मर्यादा के अनुकूल पाते हैं। मानव की बुद्धि छोटी है और श्री राम का चरित्र अतः श्री राम का चरित्र गायन अपनी ढिठाई मान वो सज्जनों से क्षमा याचना करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। स्वर था महेंद्र कपूर का और संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, लीजिए सुनिए फिल्मों से भजन। पहला भजन हमने लिया है फिल्म चार धाम से, आवाज़ है हरिहरन की।

वीर शमशीरों से चले आयो धारा पलट के वीरों से रणधीरों से अधरों पे मुस्कान धरी भुजा पे अपनी बाण धरा जय जय जय जय राम हुई और लंका में लंकेश मरा राम चले तो सेव कबराता साथ चले गांव गांव में राम सिया की बात चले।

अभी आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह को फिल्म आक्रोश में। इसके साथ ही फिल्मों से भजन ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर 7:20 होने को हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यालय के नए भवन का किया लोकार्पण। कहा, मानव वन्य जीव द्वंद्व को आपदा की श्रेणी में रखने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य। आज से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। 13 अगस्त तक प्रस्तावित सत्र के दौरान चर्चा और मंजूरी के लिए सूचीबद्ध हैं कई महत्वपूर्ण विधेयक। प्रदेश के 826 ब्लॉक प्रमुखों को बनाए गए प्रशासक। पंचायती राज विभाग ने जारी किया आदेश। और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश स्थानों के लिए जारी किया 2 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 200 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनाए गए उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस बात के लिए संकल्पित है कि हर आपदा से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश को एक ऐसा राज्य बनाया जाए जहाँ प्रत्येक नागरिक ये विश्वास लेकर जीवन जी सके कि संकट की घड़ी में सरकार के साथ वो भी तैयार है।
2: आपदाएं कई प्रकार की होंगी। एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा हुआ है, बाढ़ है, कहीं पर लाइटनिंग की घटना है, अतिवृष्टि के कारण होने वाली जनधन की हानि का हो, या फिर मानव की असावधानी से होने वाली आपदाएं अग्निकांड की घटनाएं हैं, या किसी भवन के गलत डिजाइनिंग के कारण या किसी दुर्घटना के कारण भवन का धराशायी हो जाना है। कुछ ऐसी भी आपदाएं हैं जिन्हें आप एक प्रकार से आधी भौतिक आपदा के रूप में सकते हैं, यानी किसी जीव के द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने मानव वन्य जीव द्वंद्व को भी आपदा की श्रेणी में लेकर के उससे लोगों को राहत देने का कार्य किया।
1: इस अवसर पर प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
3: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने NCPI को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी DMK, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट NCPI को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। NCPI हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
4: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार

0: समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _JKP पर भी उपलब्ध है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 826 ब्लॉक प्रमुखों को कल प्रशासक बना दिया। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया।
1: प्रदेश में ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों के बाद ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक बना दिया गया है। सामान्य तौर पर कार्यकाल खत्म होने के बाद खंड विकास अधिकारी को प्रशासक बनाया जाता है, लेकिन सरकार के इस फैसले से ब्लॉक प्रमुख आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने तक अपने पद पर बने रहेंगे। ब्लॉक प्रमुख कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे, लेकिन सामान्य रूटीन काम करते रहेंगे। ब्लॉक प्रमुख किसी नीतिगत मामले से संबंधित प्रस्ताव DM के माध्यम से शासन को भेजेंगे। शासन स्तर पर ही अंतिम मोहर लगाई जाएगी। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
0: केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय के चौथे क्षेत्रीय चिंतन शिविर का कल लखनऊ में समापन हो गया।
2: शिविर के समापन अवसर पर केंद्रीय युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा कि देश के युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की मुख्य प्रेरणा शक्ति हैं। श्री खड़से ने जिला युवा अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को सेवा, समर्पण और सामूहिक प्रयास की भावना से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने शिविर में हुई चर्चाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए सशक्त बनाने का आह्वान किया। यह शिविर युवा नीतियों को और प्रभावी बनाने तथा नशा मुक्ति जैसे अभियानों में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहा। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष की उपलब्धियों से जनता को अवगत कराने के लिए कल सिद्धार्थनगर के इटवा में जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों से सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश के लोगों को मिला है। अमरोहा जिले के बछरायु थाना क्षेत्र में गजरौला मार्ग पर कल शाम हुए एक सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब ओवरटेकिंग के दौरान बाइक सवारों और कैंटर के बीच टक्कर हो गई। हमारे अमरोहा प्रतिनिधि ने बताया कि टक्कर के बाद कैंटर भी अनियंत्रित होकर विद्युत पोल को क्षतिग्रस्त करते हुए खेत में पलट गया, जिसमें कैंटर सवार 3 लोग घायल हो गए। मुजफ्फरनगर जिले के फुगाना थाना क्षेत्र के हबीबपुर सीकरी गांव में कल रात मूसलाधार बारिश के चलते एक कच्चा मकान गिरने से उसके मलबे में दबकर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में करीब 5 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित राज्य के अधिकांश जिलों में कल सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं गोरखपुर सहित कई पूर्वी जिलों में आज सुबह हुई तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लखनऊ स्थित क्षेत्रीय मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों तथा तराई क्षेत्रों एवं बुंदेलखंड में बारिश का ये क्रम 2 दिनों तक जारी रहेगा।
3: उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो जैसा कि एक अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड और बिहार के ऊपर मौजूद है, साथ ही में जो मानसून ट्रफ है हरदोई और बनारस से पास हो रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश में अच्छी वर्षा हुई लखनऊ समेत, और ये सिलसिला अगले 3 दिनों तक इसी तरीके से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में स्पेशली जो तराई बेल्ट है वहां पर भारी वर्षा की संभावना है। जो बुंदेलखंड रीजन है वहां पर भारी वर्षा की भी संभावना है।
0: इस बीच जम्मू कश्मीर में भी खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा कल से रोक दी गई। मौसम ठीक होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। अमरनाथ यात्रा का समापन अगले माह 28 अगस्त को होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यालय के नए भवन का किया लोकार्पण। कहा, मानव वन्य जीव द्वंद को आपदा की श्रेणी में रखने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य। आज से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। 13 अगस्त तक प्रस्तावित सत्र के दौरान चर्चा और मंजूरी के लिए सूचीबद्ध हैं कई महत्वपूर्ण विधेयक। प्रदेश के 826 ब्लॉक प्रमुखों को बनाया गया

0: शासक पंचायती राज विभाग ने जारी किया आदेश और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश स्थानों के लिए जारी किया 2 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इसमें सुनिए श्रीमती कमला बोस का ख्याल गायन। राग है नट भैरव, तबले पर संगत की है श्री अनूप कुमार बनर्जी ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्रीमती कमला बोस का ख्याल गायन, राग था नट भैरव। तबले पर संगत की थी श्री अनूप कुमार बनर्जी ने। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमरीका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
1: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से ये अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश किया जाएगा।
3: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में UCC विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
4: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी, और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
3: UCC विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गाँव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन 3 देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
2: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार 8वीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
3: हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
4: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
5: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी,

0: आकाशवाणी समाचार लखनऊ।
1: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले पांचवे ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्य ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिंस टुडे। गवर्नमेंट सीक्स कोऑपरेशन ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with the Moldovan counterpart Maya Sandu in Chisinau today. मध्य प्रदेश कैबिनेट अप्रूव्स यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ट्राइब

मोल्दोवा की अपनी हम मनसब माई संधू से वफ्द की सतह की बातचीत करेंगी। मध्य प्रदेश काबीना कमेटी ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है। कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरे कार से बाहर रखा गया है। जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में ताज़ा सैलाब और ज़मीनी तोदे खिसकने से 11 अफराद हलाक हो गए, 8 अफराद अब भी लापता हैं। अमरीका ने ईरान पर फजाई हमले किए हैं। हमलों की ये नवी रात है जिसकी वजह से आबनाए हुरमुस से मुतालिक कशीदगी में मजीद शिद्दत आ गई है। और स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को

0: ने ईरान पर फजाई हमले किए हैं। हमलों की ये नवी रात है जिसकी वजह से आबनाए हुरमुस से मुतालिक कशीदगी में मजीद शिद्दत आ गई है, और स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को इजाफी वक्त में 1-0 से हरा कर 2026 का फीफा आलमी कप जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। 25 दिन के इस इजलास में 19 नशिस्तें होंगी। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: उम्मीद है कि इजलास के दौरान बहुत से अहम बिल बहस व मुबाहिसे और मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। आज लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया जाएगा। उधर राज्यसभा में कौमी एहतराम को नज़रअंदाज करने की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया जाएगा। इन बिलों के अलावा पैदाइश और मौत के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी बिल, इनकम टैक्स के तरमीमी बिल, बहुत छोटे छोटे और औसत दर्जे के कारोबार को तरक्की देने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किए जाने की भी उम्मीद है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: मानसून इजलास के मौके पर हुकूमत ने कल पार्लियामेंट हाउस में एक कुल पार्टी मीटिंग बुलाई थी जिसकी सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। 40 सियासी पार्टियों के 50 से ज्यादा रहनुमाओं ने मीटिंग में शिरकत की। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने मीटिंग के बाद नामा निगारों से खिताब करते हुए सभी सियासी पार्टियों से जोर देकर कहा कि वो पार्लियामेंट का कामकाज खुशउसलूबी से जारी रहने को यकीनी बनाएं और बुनियादी मामलात पर तामीरी बहस मुबाहिसा करें।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
0: लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कल लोकसभा की मुशावरती कमेटी के कामकाज से मुतालिक एक मीटिंग की सदारत की। इसी दौरान सरकार और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी करने वाले अरकान ने इस इजलास के दौरान कानून साजी और दीगर मुजवजा कामकाज के बारे में तबादले ख्याल किया। जनाब बिरला ने तामीरी बहस मुबाहिसे, बामाना शिरकत और आला तरीन पार्लियामानी अख्तार का ख्याल रखने की अहमियत पर जोर दिया। दिल्ली पुलिस ने वजाहत की है कि पार्लियामेंट के इजलास के पेश नज़र जो आज से शुरू हो रहा है, नई दिल्ली ज़िले में किसी भी एहतजाजी मार्च या जुलूस की इजाज़त न तो मांगी गई है और ना ही दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि मस्कूरा इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की दफ़ा 163 नाफिज है, लिहाजा जंतर मंतर को छोड़कर बकिया इलाकों में एहतजाजी मार्च, जुलूस, मुजाहरे और 5 या इससे ज्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चेसिनाऊ में मालदोबा की अपनी हमबनसब माया सांदू के साथ वफ्द की सतह की बातचीत करेंगी। सदर मुर्मू मालदोबा की पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मालदोबा भारत पार्लियामानी दोस्ती ग्रुप के अरकान से भी बातचीत करेंगी। इसके अलावा वो एक तजारती फोरम से खिताब करेंगी और भारतीय बिरादरी के अरकान से बातचीत करेंगी। किसी भारतीय सदर का मालदोबा का ये पहला दौरा है। सदर जमहूरिया 3 मुल्कों मालदोबा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे पर हैं। मालदोबा के अपने दौरे के बाद सदर जमहूरिया दूसरे मरहले में कल शिमाली मकदूनिया पहुँचेंगी। मध्य प्रदेश काबीना ने जगदीशपुर में, जो भोपाल के नज़दीक एक तारीखी कस्बा है, एक खसूसी मीटिंग के दौरान यकसा सिविल कोड UCC बिल को मंजूरी दे दी है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरे इख्तियार से बाहर रखा गया है। एक रिपोर्ट।
3: मध्य प्रदेश ने यकसा सिविल कोड UCC पर अमल दरामद के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया है। कल भोपाल के ज़िले जगदीशपुर में काबीना की एक मीटिंग मुनक़िद की गई जिसकी सदारत वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने की। इस मीटिंग में UCC बिल 2026 के मसौदे को इत्तेफाक़ी राय से मंजूरी दे दी गई। अब इस बिल को रियासती असम्बली के मानसून इजलास में पेश किया जाएगा। ये इजलास आज से शुरू हो रहा है जो 24 जुलाई तक जारी रहेगा। काबीना मीटिंग के बाद वज़ीर आला यादव ने नामानिगारों को बताया कि UCC से रियासत में इस यकसा सिविल कोड से रियासत के हर शख्स को बराबर की हैसियत फराहम होगी। उन्होंने कहा कि अब रियासत में कई शादियों की इजाज़त नहीं होगी। यकसा सिविल कोड के मुताबिक जो लोग लिव इन ताल्लुकात में रहेंगे उन्हें एक महीने के अंदर अंदर इंदराज कराना होगा। शादी का रजिस्ट्रेशन गांव की सतह पर भी लाजमी होगा। अलबत्ता

0: बिरादरियों को इस कानून के दायरे कार से बाहर रखा गया है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में कल बारिश की वजह से अचानक सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने से 11 अफराद हलाक और 8 लापता हो गए। राहत और बचाव टीमों ने सैकड़ों अफराद को बचाकर उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है, जबकि राहत से मुतालिक कार्रवाइयां जारी हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस हादसे के बाद सूरत हाल का जायजा लिया और जम्मू और कश्मीर सरकार को यकीन दिलाया कि मरकज की तरफ से हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: राजौरी और पुंछ जिलों के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते की रात आने वाले तबाहकुन सैलाब ने कीमती इंसानी जानों के इतलाफ के साथ निजी और सरकारी इमलाक, सड़क और बुनियादी ढांचों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। दोनों जिलों में सैकड़ों गाड़ियां या तो सैलाब में बह गईं या उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा है। पूरे जिले में बिजली की फराहमी बुरी तरह मुतासिर हुई है, जबकि राजौरी जिले के तकरीबन निसफ इलाके में बिजली मुनकता हो गई है। जम्मू कश्मीर से गुलशन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: जुनूब मगरबी मानसून हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर सरगर्म हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज और कल के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने रियासत के बहुत से हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश की इंतबाह जारी किया है। एक रिपोर्ट।
0: हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कांगड़ा जिले के धर्मशाला में 82.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शिमला में महकमे मौसमियात के मरकज ने बताया कि चंपा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए ऑरेंज अलर्ट और बिलासपुर, कुन्नूर और लाहौल स्पीति जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि मौसम की मौजूदा सूरत हाल की वजह से अचानक सैलाब और बादल फटने के अलावा मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात पेश आ सकते हैं। इसी दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट के पेश नज़र कांगड़ा, चंपा और सिरमौर जिले की इंतजामिया ने आज सभी तालीमी इदारे बंद रहने का हुक्म दिया है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: उत्तराखंड में कल सुबह से बारिश हो रही है, जिससे मैदानी और पहाड़ी इलाकों में जिंदगी मुतासिर हुई है। रियासत के कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद हैं और इंतजामिया अलर्ट के पेश नज़र हर किस्म की परेशानी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तफसील हमारी नामा निगार से।
3: भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, खोड़ी और उधमपुर नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के रेड अलर्ट के पेश नज़र पहली से बारहवीं जमात के स्कूलों के लिए एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने सभी महकमों को चौकस रहने की हिदायत दी है। राहत और बचाव टीमों को तैयार रहने को कहा गया है। वजीर आला ने आवाम और यात्रियों से अपील की है कि वो महकमे मौसमियात और इंतजामिया की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी पर अमल करें। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस।
1: उत्तर प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में मुतदिल से शदीद बारिश हो रही है, जिससे रियासत में मामूलत जिंदगी मुतासिर हुए हैं। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: मुजफ्फरनगर जिले में शदीद बारिश के सबब एक पुरानी इमारत के मुनदिम होने से 4 बच्चों समेत 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि 5 दीगर अफराद भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है। इस दौरान संत कबीर जिले में एक प्राचीन मंदिर भी मुनहदिम हो गया है, लेकिन किसी जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं है। शदीद बारिश ने रियासत के कई जिलों, जिनमें राजधानी लखनऊ शामिल है, मामूलात जिंदगी को मुतासिर किया है। मुतादिद इलाकों में सड़क पर पानी जमा होने और ट्रैफिक के आमोदरफ में खलल पड़ने की इत्तलात हैं। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: अमरीका की मरकजी कमान सेंटकॉम ने कहा है कि उसने ईरान पर ताज़ा फौजी हमले किए हैं और ये हमलों की लगातार नवी रात है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सेंटकॉम ने कहा कि ईरान के खिलाफ ये ताज़ा हमले कल रात किए गए, जो ईरान की फौजी सलाहियतों को कमज़ोर करने के मकसद से जारी रहेंगे, जिन्हें ईरान आबनाए हुरमुस से गुजरने वाले कमर्शल जहाज़ों और शहरी मल्लाहों पर हमले करने के लिए इस्तेमाल करता रहा है, जिनमें अमरीकी फौजों ने ईरान के बहुत से फौजी असासों को निशाना बनाया है, जिनमें साहिली निगरानी और फजाई दिफाई ठिकाने, समंदरी तनसीबात और मिज़ाइल और ड्रोन के जख़ीरों की जगह भी शामिल हैं। अमरीकी फौज ने इस्लामी पासदारा ने इनकलाब की फौजों को

0: को भी निशाना बनाया है, जिन्होंने उर्दुन में 17 जुलाई को अमरीकी फौजियों पर हमले किए थे। ईरान में भारतीय सफारतखाने ने अदम इस्तेकाम और तनाज़े की हालिया शिद्दत के पेश नज़र भारतीय शहरियों के लिए एक ताज़ा हिदायत जारी की है। उसने किसी भी मकसद से ईरान का सफ़र करने वाले भारतीय शहरियों के लिए हिदायत जारी की है कि वो अपना सफ़र मुलतवी कर दें जब तक के सलामती की सूरत हाल में बेहतरी ना आ जाए। हिदायत में कहा गया है कि जो भारतीय शहरी ईरान में मौजूद हैं वो आरजी तौर पर ईरान से निकलने पर गौर खोज करें और इसके लिए वो जो भी परवाज़ें दस्तयाब हैं उनका इस्तेमाल करें। सफारतखाने ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय शहरियों को ये हिदायत भी दी है कि वो अपनी ज़ाती मालूमात सफारतखाने में जल्द अज जल्द दर्ज कराएँ। उसने ये बात भी जोर देकर कही है कि सफारतखाने की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार नज़र रखें ताकि वो ताज़ा जानकारी और मज़ीद हिदायत से बाखबर रहें। किसी भी तरह की मदद के लिए सफारतखाने ने ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं +98 9128 10915 +98 9128 10915 +98 9128 10902 और +98 99 32 17 9359। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में कल देर रात स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा आलमी कप 2026 का चैंपियन बन गया है। स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ जीत का वाहिद गोल खेल के 106वें मिनट में किया। ये गोल स्पेन के फेरन टॉरेस ने किया। इससे पहले दोनों टीमों की तरफ से 90 मिनट के खेल के दौरान सख्त जद्दोजहद के बावजूद कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई थी। स्पेन ने दूसरी बार मर्दों का फीफा आलमी कप जीता है। इससे पहले उसने 2010 में पहली मर्तबा आलमी कप जीता था। स्पेन के कप्तान को टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया है, जिन्हें गोल्डन बॉल अवार्ड से नवाजा गया है, जबकि स्पेन के ही उनाई सिमोन को गोल्डन ग्लोव का अवार्ड दिया गया है और पाउ कुबारसी को नौजवान खिलाड़ी का अवार्ड अता किया गया है। फ्रांस के खिलाड़ी लियान मबापे को फीफा आलमी कप 2026 का गोल्डन बूट अवार्ड नवाजा गया है। मर्दों की क्रिकेट में कल रात लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने तीसरे एक रोज़ा बैन अलाक्वामी मैच में भारत को 27 रन से हरा दिया। रोहित शर्मा के शानदार 138 रन, शुभमन गिल के 77 रन और विराट कोहली के 74 रन के बावजूद भारत की टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी, जिसे जीत के लिए 388 रन का निशाना मिला था। इस तरह इंग्लैंड ने यह सीरीज 2-1 से जीत ली है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शायद होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप और इनकलाब समेत आज के सभी अखबारों ने आज से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसूनी इजलास की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू के इस बयान को नुमाया किया है कि सभी पार्टियां इस बात को यकीनी बनाएं कि पार्लियामेंट का कामकाज खुश उसलूबी से जारी रहे ताकि बिलों पर मुकम्मल बहस हो सके।
0: और आखिर में खास खास खबर एक बार फिर, पार्लियामेंट का मानसूनी इजलास आज से शुरू हो रहा है। हुकूमत ने सभी सियासी पार्टियों से कहा है कि वो पार्लियामेंट के कामकाज को खुश उसलूबी से जारी रखने के लिए तआवुन करें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मालदोवा की अपनी हमनसब माइया सांदू से वक्त की सतह की बातचीत करेंगी। मध्य प्रदेश काबीना कमेटी ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है। कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरे इख्तियार से बाहर रखा गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में ताज़ा सैलाब और ज़मीनी तोदे खिसकने से 11 अफराद हलाक हो गए, 8 अफराद अब भी लापता हैं। अमरीका ने ईरान पर फजाई हमले किए हैं। इसी के साथ ये खबरनामा ख़त्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं कहते हैं जिस मनुष्य के पास सोचने की शक्ति है उसके लिए हर समस्या एक नई संभावना है, और जब बात सोच रणनीति धैर्य और दूरदृष्टि की हो तो सबसे पहले जिस खेल का नाम मन में आता है वो है शतरंज। जब मानव की असीम जिज्ञासा और सपनों का पंख लगाने की बात होती है तो नजर उठती है उस चांद की ओर जिसे कभी दूर का सपना माना जाता था और जिसे मानव ने अपने साहस और विज्ञान के बल पर छूकर इतिहास रच दिया।

आज 20 जुलाई का दिन दुनिया के लिए अत्यंत विशेष है। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं उस खेल से जो केवल खेल नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और जीवन प्रबंधन की पाठशाला है। 20 जुलाई 1924 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई। इसी ऐतिहासिक घटना की याद में हर वर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इस दिन को आधिकारिक मान्यता दे दी ताकि शतरंज के माध्यम से शिक्षा, शांति और समानता और सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा दिया जा सके। शतरंज की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों का मानना भी है कि इसका प्रारंभिक रूप चतुरंग भारत में लगभग 1500 वर्ष पहले विकसित किया। बाद में ये खेल फारस पहुंचा जहां इसे शतरंज नाम दिया गया। वहीं से अरब देशों और फिर यूरोप पहुंचा और धीरे धीरे आधुनिक शतरंज का रूप विकसित हुआ। भारत को इस खेल की जन्मभूमि माना जाना हमारे लिए गर्व की बात है। शतरंज केवल मोहरों की चाल नहीं, ये सिखाता है निर्णय लेने की क्षमता, धैर्य बनाए रखना, हर चाल से पहले दूर तक सोचना, असफलता से सीखना और विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहना। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि जीवन भी शतरंज की बिसात की तरह है, यहाँ जीत उसी की होती है जो हर चाल सोच समझ कर चलता है। और जब भारतीय शतरंज की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है विश्वनाथन आनंद का। वे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने और 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन रहे। उन्होंने भारत में शतरंज को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। आज भारत विश्व के सबसे तेजी से उभरते शतरंज देशों में गिना जाता है। हाल के वर्षों में युवा खिलाड़ियों ने दुनिया भर में भारत का गौरव बढ़ाया। डॉक्टर गुकेश 2024 में विश्व शतरंज चैंपियन बनकर इतिहास रचा और सबसे कम उम्र के निर्विवाद विश्व चैंपियन बने। इसी प्रकार आर प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगेसी, कोनेरू हम्पी, आर वैशाली और अनेक भारतीय खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया। आज भारत में हजारों बच्चे शतरंज सीख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन कर रहे हैं।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। अब हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक दिन की जब मानव ने पहली बार चंद्रमा की धरती पर कदम रखा, असंभव को संभव बना दिया। इसी उपलब्धि की स्मृति में मनाया जाता है आज अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस। अभी हमने बात की उस खेल की जिसने दुनिया को रणनीति, धैर्य और विवेक का महत्व सिखाया। अब हम बात करते हैं उस चंद्रमा की। कवि ने चांद को कभी प्रेम का प्रतीक बताया तो कभी आशा का, बच्चों ने उसे चंदा मामा कहा, वैज्ञानिकों ने उसे शोध का विषय बनाया और अंतरिक्ष यात्रियों ने उसे अपने साहस का साक्षी। 20 जुलाई 1969 का वो दिन था जिसने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपोलो 11 मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बस एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। उनके साथ ही माइकल कॉलिंस चंद्रमा की कक्षा में कमांड मॉड्यूल में थे। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखते हुए जो शब्द कहे इतिहास में अमर हो गए। ये एक व्यक्ति का छोटा सा कदम है लेकिन पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है।

इस ऐतिहासिक उपलब्धि की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2021 में 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस घोषित किया। इसका उद्देश्य ही था कि अंतरिक्ष विज्ञान, शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषण और आने वाली पीढ़ियों को विज्ञान के प्रति प्रेरित करना। भारत ने भी इसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया। इसी मिशन ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर जल होने के प्रमाण खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये खोज अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। इसके बाद 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 प्रक्षेपित हुआ और 23 अगस्त 2023 को उसका विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक उतरा। इस उपलब्धि के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक पहुंचने वाला वो पहला देश बना। ये उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा, परिश्रम और आत्मविश्वास का उत्कृष्ट उदाहरण है। चंद्रमा हमें सिखाता है कि चांद स्वयं प्रकाश

आसमान नहीं होता, फिर भी पूरी रात दुनिया को रोशन करता है। उधार की रोशनी भी दुनिया को उजाला दे सकती है। ऊंचाइयां केवल सपने देखने से नहीं, उन्हें पूरा करने के साहस से मिलती है। और विज्ञान का हर नया कदम मानवता के भविष्य को बेहतर बनाता है। महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। श्रोता, ये सुनते हैं एक मधुर गीत जिसमें चांद की खूबसूरती और जीवन की कोमल भावनाएं झलकती हैं।

श्रोताओं, आज के दोनों विशेष दिन हमें दो अनमोल संदेश देते हैं। शतरंज हमें सिखाता है कि सफलता पाने के लिए धैर्य, रणनीति और सही निर्णय आवश्यक है, और चंद्र दिवस हमें प्रेरित करता है कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो चांद भी दूर नहीं है। बुद्धि सही दिशा देती है और विज्ञान नए क्षितिज खोलता है। जब दोनों साथ चलते हैं तब इतिहास बनता है। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, जिज्ञासु बनिए और ज्ञान की नई ऊंचाइयों को छूते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
5: RBI कहता है
6: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
0: लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पहला गाना हमने लिया है फिल्म धुरंधर से, आवाज है शाश्वत सचदेव की। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत दिया है इरशाद कामिल ने।

अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और शर्वा पारुल की आवाज़ में ये गाना। अब फिल्म थी सितारे जमी पर, गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने। अब आइए सुनते हैं लापता लेडीज़ की।

अभी आप अरिजीत सिंह को सुन रहे थे। फिल्म लापता लेडीज में गीत लिखा था प्रशांत पांडे ने और संगीत दिया था राम संपत ने।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए चंदौली और बलरामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चंदौली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार त्रिपाठी का।
1: गत दिनों चंदौली के राजकीय आईटीआई कॉलेज रेवसा में भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के स्टार्टअप पहल के अंतर्गत एक दिवसीय स्टार्टअप कार्यशाला तेजस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन इन्वेस्टमेंट यूपी, स्टार्टअप इन यूपी, अटल इनक्यूबेशन सेंटर BHU और जिला प्रशासन चंदौली द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ बतौर मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साई ने दीप प्रज्वलित कर माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। जिला सेवा योजना

0: अधिकारी गौरव सिंह ने कार्यशाला की रूपरेखा और इसके उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने जनपद में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने और युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नवाचार की आवश्यकता पर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को साझा किया। कार्यशाला में स्टार्टअप इन यूपी की ओर से आए प्रशांत रंजन ने उत्तर प्रदेश सरकार के स्टार्टअप नीतियों पर विस्तृत चर्चा की और युवाओं को मिलने वाले लाभों के बारे में बताया। विगत दिनों चंदौली दौरे पर आए सूबे के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने 3,55,00,000 की लागत से नव निर्मित उप निबंधक एवं AIG निबंधन कार्यालय का लोकार्पण किया। इस नए और अत्याधुनिक सुविधा युक्त कार्यालय भवन के बन जाने से अब आम जनता को रजिस्ट्री और स्टाम्प संबंधी कार्यों में बड़ी सहूलियत मिलेगी। गत दिनों चंदौली में पूर्व मध्य रेल महिला कल्याण संगठन पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल द्वारा ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंटर कॉलेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 2 पर स्थित महिला उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय में सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन का लोकार्पण अध्यक्षा चित्रा सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि महिलाओं एवं बालिकाओं में मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जरूरत पर नैपकिन की सहज उपलब्धता के लिए सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन का लोकार्पण किया गया। विगत दिनों चंदौली में सूबे के कैबिनेट मंत्री श्रम एवं से आयोजन विभाग अनिल राजभर ने चकिया के जलेबिया मोड़ के पास वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने जनपद वासियों से इस महत्वपूर्ण अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री ने पौधरोपण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं। उन्होंने पीपल, पाकड़ और बरगद के 3 पौधे का एक साथ रोपण कर इस वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत। उन्होंने कहा कि केवल पौध लगाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उनका संरक्षण करना भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसी क्रम में राज्यसभा सांसद व भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दर्शना सिंह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत चंदौली के नियंताबाद में स्थित तालाब पर पेड़ लगाकर लोगों को पर्यावरण का संदेश दिया। वन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद ने आम अमरूद का पेड़ लगाया। इस दौरान राज्यसभा सांसद ने सभी कर्मचारियों व आमजन से प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की भी अपील की। उन्होंने जिले के सभी स्कूलों, हॉस्पिटल, आंगनबाड़ियों में अभियान चलाकर वृहद वृक्षारोपण कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई को एक दिन में 35 करोड़ पौधरोपण के लक्ष्य के सापेक्ष उससे अधिक पौधों को लगाया गया है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताया है। चंदौली में उर्वरक की किल्लत को लेकर सोशल मीडिया में आ रहे मामले पर जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि जनपद में उर्वरक का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि
1: एक एक किसान को उनकी जमीन के आकार पर जरूरत वही के आधार पर खाद उपलब्धता कराना हमारी जिम्मेदारी है और हम उपलब्ध कराएंगे। और सभी किसान भाइयों से और रिटेलर्स को भी मैं कह रहा हूँ कि वो निर्धारित दर पे ही उर्वरक की बिक्री करें और अपने अभिलेखों पे उसका जो है अंकित करें और जिस फसल के लिए ले रहे हैं उस फसल को अपने अभिलेख पे अंकित करें। इस एक सीजन के लिए 1 हेक्टेयर पे 7 बोरी यूरिया और 5 बोरी DAP एक किसान के लिए अनुमन्य, इसलिए कोई भी किसान भाई किसी भी भ्रम में न रहे। जनपद में पर्याप्त उपलब्धता है, कहीं कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। हम लोग इसको बराबर निगरानी बनाए हुए हैं।
0: उन्होंने किसानों से अपील की कि जैव विविधता व मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हरित खाद का अपने खेतों में इस्तेमाल करें।
2: चंदौली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बलरामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राम कुमार मिश्र का।
3: जनपद बलरामपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला शिक्षा एवं अनुसरण समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनपद के माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं छात्रों के बेहतर शैक्षणिक विकास को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए जनपद के राजकीय इंटर कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियों को और अधिक प्रभावी एवं उन्मुख बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में केवल पाठ्यक्रम पूरा करना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए बल्कि छात्रों के सीखने की क्षमता, विषयों की समझ एवं शिक्षा परिणामों में निरंतर सुधार सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार जनपद की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में जनपद में औद्योगिक विकास, व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन, उद्यमियों एवं व्यापारियों की समस्याओं के समाधान तथा निवेश अनुकूल वातावरण वातावरण तैयार किए जाने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। जनपद मुख्यालय के आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर का 155

0: स्थापना दिवस समारोह MLK PG कॉलेज ऑडिटोरियम में मनाया गया। समारोह में सांस्कृतिक, साहित्य, सामाजिक सरोकार एवं प्रतिभा सम्मान से जुड़े विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के उद्देश्य से 1 जुलाई को मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय परिसर से जन जागरूकता वाहन रैली का शुभारंभ किया गया। रैली को जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि संचारी रोगों की रोकथाम के लिए जन सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। जिले में स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ PM श्री कंपोजिट विद्यालय धुसाह में जन प्रतिनिधिगण एवं अधिकारियों की उपस्थिति में उत्साहपूर्ण वातावरण में किया गया। प्रदेश में यह अभियान 1 जुलाई से 15 जुलाई तक संचालित किया गया, जिसका उद्देश्य 100% नामांकन सुनिश्चित करना एवं ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। जनपद में पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण विस्तार एवं जन जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण एवं पौध वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं 12 जुलाई को उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार सुहेलवा वन्य जीव प्रभाग द्वारा बृहद वृक्षारोपण महाअभियान 2026 का आयोजन किया गया। इस वर्ष अभियान का मुख्य संदेश उठो बढ़ो, हाथ मिलाओ, माँ के नाम पेड़ लगाओ तथा एक पेड़ माँ के नाम रहा। जिले में गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड बलरामपुर द्वारा 13 जुलाई से 15 जुलाई तक बीमा, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर आधारित 3 दिवसीय कृषक गोष्ठी एवं मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ सदर विधायक पलटू राम ने किया। उन्होंने किसानों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।
1: सामाजिक सुरक्षा कवच ये सीधे सीधे हम किसानों को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं से कवर्ड करके उनके सीधे सीधे परिवार को लाभ दिलाने की योजना है। बहुत कम प्रीमियम में हम किसान परिवार को लाभान्वित करने का काम करते हैं।
0: जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में वायलेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे विकास खंडों के चयनित 44 ग्रामों के समग्र एवं सतत विकास हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक कैंप कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में इन ग्रामों को विभिन्न विकास मानकों पर आगे बढ़ाने के लिए निर्धारित 10 प्रमुख इंटरवेंशन क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा करते हुए विभागवार कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। जिले में संभावित बाढ़ एवं जल भराव की स्थिति से जनसामान को सुरक्षित रखने तथा राहत एवं बचाव व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन, अपर जिलाधिकारी ज्योति राय ने बाढ़ के दृष्टिगत तहसील बलरामपुर सदर में संवेदनशील क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का व्यापक जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाढ़ खंड सिंचाई विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण रखने के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी ज्योति राय ने बताया कि
2: हमारे यहाँ टोटल 19 कार्ड बनाने हैं और 32 कार्ड चौकी है। इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी है 1077। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की सहायता किसी भी समय, न सिर्फ बाढ़ के टाइम में, अन्यथा किसी भी स्तर पे अगर उनको आवश्यकता महसूस होती है आपदा से संभावित, तो वो उस पर सीधे बात कर सकते हैं और वो हम तक पहुँचेगी। हम शीघ्र उनको सहायता।
0: जनपद में सड़क सुरक्षा के प्रति आम जन को जागरूक करने तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जनपद के प्रमुख चौराहों पर विशेष जन जागरूकता एवं सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के तहत वीर विनय चौक, बलरामपुर सहित विभिन्न प्रमुख स्थानों पर जिला स्तरीय अधिकारियों ने स्वयं उपस्थित होकर वाहन चालकों एवं आम जन को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: श्रोताओं, अभी आपने सुनी चंदौली और
5: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: सीनियर प्रोफेसर जनाब अब्बास रजा नैयर साहब।
1: सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि उर्दू जबान के फरोग में आज के नौजवान किस तरह अपना किरदार अदा कर सकते हैं।
2: बहुत शुक्रिया शाजिया। एक तो नौजवान नस्ल का मैं इस्तकबाल करता हूँ और आप नौजवान नस्ल की तर्जुमानी करती हैं और आपका सवाल भी नौजवानों के लिए है। मुझे अपनी गज़ल का एक मतला याद आ रहा है कि इनकी राहों में मोहब्बत के उजाले कर दो, इनकी राहों में मोहब्बत के उजाले कर दो, गुलसिता अब नई नस्लों के हवाले कर दो। तो हमें अपनी नई नस्लों का इस्तकबाल करना चाहिए, नए रास्ते उनके लिए बनाने चाहिए, नई आवाज़ें, नए चराग, नए चाँद, नए सूरज, नए जुगनू, नए सितारों का हम इस्तकबाल करते हैं। नई नस्ल जो है वो ज़माने के तकाज़ों के तहत बहुत बाशऊर है और वो इमोशनल भी है और रेशनल भी है, यानी इमोशंस विद इंटेलेक्ट, दानिश्वरी भी उसके अंदर मौजूद है। इसलिए वो अपने मकसद को ज़्यादा सामने रखती है, अपने जो उसलूब है और जो आहंग है उसको भी तरजीह देती है, मगर उतना नहीं। मसलन जो मुश्किलें हमारे यहाँ संस्कृत के साथ हुई कि इस कदर उसको दुश्वार बना दिया गया कि हमारी समझ से वो ज़बान आगे चली गई। तो दानिश्वरी की ज़बान है, बहुत रिच ज़बान है, इसी तरह से अरबी बहुत रिच ज़बान है, लेकिन फारसी जिस तरीके से मकबूल हुई थी वो अपनी शीरीनी, अपनी सलासत, अपनी रवानी और अपनी मिठास की वजह से। तो उर्दू की भी ये खूबी है कि उर्दू किसी भी ज़बान के लफ्ज़ों को अपने दामन में समेटने की ज़्यादा सलाहियत रखती है और किसी भी ज़बान में ज़म हो जाने की भी ज़्यादा सलाहियत रखती है, यानी उर्दू का दामन भी बहुत बड़ा है और उर्दू का दिल भी बहुत बड़ा है। तो किसी भी ज़बान के लफ्ज़ों को जिस तरह से ये ले सकती है और एक मोम की तरह पिघल के किसी भी ज़बान के दामन में जैसे अपनी जगह बना सकती है, दूसरी ज़बानें नहीं हैं। मसलन अंग्रेज़ी में बहुत सारी ऐसी आवाज़ें हैं जो अरबी वाले नहीं भूल सकते, मसलन इंडिया डाल की आवाज़ है। तो इसी तरीके से अरबी में बहुत सारी आवाज़ें हैं जो अंग्रेज़ी में वाज़े नहीं हो सकती हैं, मसलन वाद, वोए और ज़े की मुख्तलिफ आवाज़ें। और इसी तरीके से अरबी वाले बहुत सा तलफ़ुज़ नहीं कर सकते, मसलन डाल का तलफ़ुज़ नहीं कर सकते, अंग्रेज़ी वाले बहुत से अरबी का तलफ़ुज़ नहीं कर सकते, बहुत से संस्कृत का तलफ़ुज़ नहीं कर सकते, लेकिन उर्दू वाले के यहाँ ये सलाहियत मौजूद है कि वो हिंदुस्तान भी बोल सकता है, इंडिया भी बोल सकता है, भारत भी बोल सकता है, वाद भी बोल सकता है, फाद भी बोल सकता है, किसी भी लहजे में, किसी भी आवाज़ में वो गुफ्तगू कर सकता है। उसी के साथ उर्दू इतनी दुश्वार भी नहीं है, इतनी सख्त भी नहीं है कि वो अपने लफ्ज़ को, जब तक कि हम मौलवी अब्दुल कुद्दूस का जो है वो माजून ना बनाए, ये उर्दू इस मिजाज को नहीं बर्दाश्त करती। काफ है लेकिन इतना गाढ़ा नहीं कि जो बर्दाश्त से बाहर हो जाए। तो उर्दू एक आहंग के साथ चलती है, अरबी की तरह से नहीं है। तो उसके यहाँ तलफ़ साफ हो लेकिन इस कदर रवा दवा हो, जैसे लखनऊ का जो तलफ़ होता है कि जो मसलन लखनऊ में बेगमात आप एक खातून हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वक़्त जैसे कहती हैं। तो क्यों वक़्त कहती हैं कि चूंकि वक्त में काफ भी साकिन है, ते भी साकिन है, तो दो साकिन एक साथ, या दरख्त दाल में भी ज़बर है, रे पे भी ज़बर है, खे भी साकिन है, ते भी साकिन है, तो वो एक हर्फ को यानी कि एराब के साथ और एक हर्फ को साकिन कर लेती हैं यहाँ की औरतें, दरख्त बोल देती हैं, ये बोलने में आसान हो जाता है। तो आम आदमी सोचेगा ये तलफ़ गलत हो रहा है, लेकिन ये उर्दू का एक लहजा है, बेगमती लहजा है, अवधी लहजा है। तो बहुत आसान लहजे में, बहुत आसान ज़बान में, बहुत आसान उसलूब में आज नस्ल बात करना चाहती है, जिससे बात जो है वो पहुंच जाए राबिते की ज़बान, बाजार की ज़बान, अवाम की ज़बान। खवास का अपना एक लहजा है लेकिन वो ज़बान तरक्की करती है जो अवाम तक पहुंचती है। इसीलिए जिस ज़माने में हम अदब आलिया में दरबार आलिया की बात करते थे, उसी ज़माने में नज़ीर अकबर आबादी बाज़ार की बात करते थे, अवाम की बात करते थे, मेले ठेलों की बातें करते थे, ईद और होली की बात करते थे, शबरात और दिवाली की बात करते थे। इसीलिए उनके यहाँ जो रीछ, बंदर, भालू जैसे अल्फाज आते हैं, उससे वो मुकम्मल हिंदुस्तान हमारे यहाँ, वो जो हज़रत अमीर खुसरो से चला था, नज़ीर अकबर आबादी तक आया था, और नज़ीर अकबर आबादी से लेके आज की अवामी शायरी तक आया, अवामी अफसानों तक आया, वो हमारी ज़बान होनी चाहिए, यह हमारी नई नस्ल चाहती है, जैसा मैंने महसूस किया। और दूसरे हम जो नई नस्ल के लिए चाहते हैं ये कि उर्दू में भी रोज़गार पैदा हो। जब हम बहुत ज़्यादा गाढ़ी और मेयारी उर्दू बोलेंगे तो वो अदब आलिया तक तो रहेगी, अच्छी बात है, लेकिन अब उर्दू اردو تو اب بازار کی بھی زبان ہے، عوام کی بھی زبان ہے، میلے ٹھیلوں کی بھی زبان ہے، تو وہ اردو جو رکشہ چلانے والا بھی سمجھ سکے، جو ٹریکٹر چلانے والا بھی سمجھ سکے، یہ والی بھی اردو کی ضرورت ہے۔ اور ایسی اردو کہ فلموں میں بھی ضرورت ہو، علم میں بھی ضرورت ہو اور فلم میں بھی ضرورت ہو اس کی، یعنی وہ مارکیٹ میں بھی کمائی کر سکے اور فلم میں بھی جا کے روزگار پا سکے، صحافت میں بھی روزگار پا سکے، آپ کے ریڈیو میں بھی اس کو جگہ مل سکے، ٹیلی ویژن میں بھی اس کو جگہ مل سکے۔ تو ایسی اردو ہونی چاہیے جو

0: रोज़गार दे सके, यही हमारी नई नस्ल की ज़रूरत है और यही हम नई नस्ल के लिए चाहते हैं।
1: सर, आप हमें ये बताएं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू में खासकर बच्चों की किस तरह की सरगर्मियाँ रहती हैं?
0: लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो शोबे उर्दू है, एक तो 100 साल से ज़्यादा ये यूनिवर्सिटी हो गई, और जब से यूनिवर्सिटी है तब से शोबे उर्दू है। तो यहाँ जो बच्चे हैं उनके यहाँ इल्म और कॉन्फिडेंस का सबूत यह है कि मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी जो शोबे उर्दू हमारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में हैं उनमें जो असातिज़ा हैं या जो निसाब है उनमें कहीं ना कहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई तालिब इल्म ज़रूर है। प्रोफेसर मसूद हसन रिज़वी अदीब 1930 में इसके सदर शोबे उर्दू हुए थे, और उसके बाद प्रोफेसर आले अहमद सरूर, प्रोफेसर सैयद एहतशाम हुसैन, प्रोफेसर सैयद शबील हसन, यानी एक पूरा एक गलेक्सी है, कहकशां है। तो यहाँ के तालिब इल्म ही तो सब थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू ने हिंदुस्तान को कितने गवर्नर दिए। सैयद सिफ्त रज़ी साहब गवर्नर हुए और यहाँ के तालिब इल्म थे। जनाब सैयद अहमद साहब गवर्नर हुए झारखंड के और यहाँ के तालिब इल्म थे। तो मुझे लग रहा है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के बगैर हिंदुस्तान और गैर मुनकसिम हिंदुस्तान की भी कोई तारीख जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाएगी। और आज भी यहाँ तलबा आते हैं, उनकी तालीमी सरगर्मियाँ भी होती हैं, उसके साथ हमारी कोशिश होती है कि हमारे कई जितने भी हिंदुस्तान के बाहर से कोई भी आता है तो उसका हमें खुतबा रखते हैं, तो उसी खुतबा सवाल जवाब का सिलसिला रखते हैं। बच्चों की एक्टिविटीज़ है, रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन यहाँ पर मौजूद है, वो खुद अपनी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, और दाखिला होने के बाद में बच्चों का इस्तकबालिया होता है, रुख्सत के वक्त उनकी अलविदाई तकरीब होती है। तो ये सब बड़े मौके होते हैं और हमारी बैतबाजी यहाँ हम कराते हैं, बाहर भी बच्चे जाते रहते हैं। तो जितनी भी तालिब इल्म के लिए सरगर्मियाँ हो सकती हैं वो सब हम करते रहते हैं। अभी ड्रामा किया हमने, ड्रामे में मुश्तरक तौर पर बच्चे काम करते हैं, और इसी के साथ साथ हमारी कोशिश होती है जैसे आपके यहाँ दूरदर्शन में जो सिलेक्शन होता है एंकर का, या रेडियो पर भी अक्सर, या और हमारी जो गैर सरकारी तंजीमें हैं जैसे ई टी वी का सिलेक्शन हुआ, तो उसको हम अपने यहाँ कर लेते हैं तो हमारे बच्चों को भी मौका मिल जाता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम समाज से भी जुड़ें, सोसाइटी से भी जुड़ें, और जो हमारे सरकारी और गैर सरकारी दोनों हवालों से हमारे बच्चों की शिरकत ज़्यादा हो, इससे हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है।
1: सर, हमारे सामईन को ये भी बताएं कि शोबे में होने वाले सेमिनार्स और वर्कशॉप तलबा के लिए किस तरह फ़ायदेमंद साबित होते हैं? क्या इससे सिर्फ उनके इल्म में इजाफा होता है या कॉन्फिडेंस बिल्डअप में भी मदद मिलती है?
0: दोनों तरह से हम दो सतहों पर काम करते हैं। एक तो अपने यहाँ के जो सेमिनार वर्कशॉप में उनमें भी कोशिश करते हैं कि एक सेशन हम तलबा का ज़रूर रखें। जैसे अभी हमने बैनुल अक़वामी उर्दू रुबाई पर सेमिनार किया, तो एक दिन उर्दू एकेडमी के हाल में किया और एक दिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में किया। उसमें पूरा एक सेशन जहाँ हमारे पास गैर मुल्की यानी प्रोफेसर तकी आब्दी, प्रोफेसर कनाडा से, प्रोफेसर अमीर हैदर लंदन से, प्रोफेसर वला जमाल अल असीली मिस्र से, और इसी तरीके से अमेरिका से सारे लोग थे। तो यहाँ हिंदुस्तान भर में प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन, प्रोफेसर सगीर अहमद अलीगढ़ से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, प्रोफेसर शाहविनायत मलिक जम्मू यूनिवर्सिटी से लोग थे। वहीं पे पूरा एक सेशन हमने अपने तलबा का भी किया, रिसर्च स्कॉलर्स का, उनकी शिरकत हो। और दूसरा, हम कोशिश करते हैं कि बाहर भी जो रिसर्च स्कॉलर्स के सेमिनार हों उनमें भी, और जो अवामी सेमिनार होते हैं उनमें भी हमारे रिसर्च स्कॉलर शिरकत करें। हम यहाँ से दिल्ली, जम्मू, हैदराबाद अपने बच्चों को भेजते रहते हैं कि बच्चे ये भी जाने के सेमिनार में मकाला कैसे पढ़ा जाता है, मकाले पर जो सवाल आते हैं उनके जवाब कैसे दिए जाते हैं। तो ये एक तरबियती प्रोग्राम हो जाता है। तो तालीम के साथ जब तक तरबियत नहीं होती है, जब तक प्रैक्टिकल में बच्चा खुद अपने आप डेवलपमेंट में नहीं रखता है, तब तक वो तरक्की नहीं कर सकता है। तो सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में, वर्कशॉप में, तर्जुमे में हमारे बच्चे शिरकत करते हैं, और शायद इसीलिए पूरी दुनिया की, जो मैं खाली हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी को नए एक्रेडिटेशन में भी AA+ मिला है। और इसी के साथ साथ जब भी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की कोई फहरिस्त बनती है तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की शिरकत ज़रूर होती है। और उर्दू में भी जब भी नुमाया काम, मुझे लग रहा है कि जितने मेयारी तहकीकी मकाले, जितनी PhDs यहाँ लिखी गई, जितने बड़े अवार्ड यानी साहित्य अकेडमी अवार्ड, या आप देखें कि अली सरदार जाफरी यहाँ से पढ़ के गए, के इफ्तिखार आरिफ यहाँ से पढ़ के गए, तो जो भी सफ़े अव्वल के नाम है उनका कोई ना कोई रिश्ता लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ नज़र आता है। शाहिर दौलवी साहब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुए, मगर तालिब इल्म तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के ही थे ना। शमीम नखत दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहीं, मगर तालिब इल्म तो हमारी ना। सदीकुर रहमान पैदवाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से और जामिया से, जितने भी बड़े लोग आप देखेंगे इस वक्त भी गालिब इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी हैं, मगर सदीकुर रहमान कदवई हमारे यहाँ से ही पढ़ के गए। फॉरेन में भी जब आप देखते हैं तो जो बड़ा एक सिलसिला है, जिन्होंने बड़ी किताबें लिखी हैं सिलेबस में, जिनका नाम है, वो सब हमारे तालिब इल्म रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक शानदार रिवायत रही है शोबे।

0: इसी उम्मीद के साथ कि हमारा ये ओबी शुमारा आपके लिए मालूमात अफजा और दिलचस्प साबित हुआ होगा। मुझे यानी शाजिया खान को अब इजाज़त दीजिए। आदाब।
1: अभी सामीन समात फरमा रहे थे उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश थी। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं पर प्रस्तुत है
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं ज्योति मिश्रा।

ज्योति मिश्रा के गाय इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में संसद की 19 बैठक होंगी। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की।

0: सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने आशा व्यक्त की है कि संसद सदस्य संविधान की गरिमा और संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं का पालन करते हुए सहयोग की भावना से कार्यवाही में भाग लेंगे। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनज़र नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और ना ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि सुरक्षा कारणों से जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक को मंजूरी दे दी है। कल भोपाल के निकट जगदीशपुर में हुई विशेष बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि समान नागरिक संहिता सभी समुदायों को समान अवसर और अधिकार उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि UCC विधेयक से किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाऊ में मालडोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मालडोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मालडोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मालडोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भरतवंशियों से भी मुलाकात करेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मालडोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू तीन देशों मालडोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि बटुकेश्वर दत्त ने अंग्रेजों के खिलाफ समूचे देश में स्वतंत्रता की अलख जगाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बटुकेश्वर दत्त को एक राष्ट्रवादी साहसी व्यक्तित्व बताया जिन्होंने अन्याय और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले 2 दिन में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इधर दिल्ली में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम वॉयस ऑफ प्रयागराज। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं मधु और आज आपके लिए लेकर आई हूं ये कार्यक्रम। श्रोताओं, आज का हमारा विषय है बचपन दर बदर। श्रोताओं, रोज सुबह जब हम और आप अपने बच्चों को स्कूल बस के लिए तैयार कर रहे होते हैं, उनके टिफिन में उनका मनपसंद खाना रख रहे होते हैं, शहर के किसी चौराहे पर कोई नन्हा सा हाथ किसी गाड़ी का शीशा खटखटा रहा होता है, एक ऐसा हाथ जिसे इस उम्र में पेंसिल और कॉपी थामनी चाहिए, लेकिन वो हाथ भीग के चंद सिक्कों के लिए फैल जाता है। तपती धूप हो, कड़कड़ाती ठंड हो या मूसलाधार बारिश, इन बच्चों का ना तो कोई घर होता है ना ही कोई ठिकाना। इनका बचपन गलियों में, फुटपाथ के ऊपर दर बदर भटकता।

रहता है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हम कोशिश करेंगे इनके इस दर्द को समझने की। लेकिन कार्यक्रम के आरंभ में जिंदगी का एक मासूम सा सवाल, पहले ये सुनिए।

श्रोता, अभी आपने जो गीत सुना, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, इसके बोल इन बच्चों पर कितना सटीक बैठते हैं। ये जिंदगी से नाराज नहीं है, ये अभी भी फुटपाथ पर उसी तरह खेलते हैं जैसे हमारे और आपके बच्चे। इनमें भी वो मासूमियत होती है, इनके भी वो छोटे छोटे मासूम से सवाल होते हैं, क्योंकि इनको ये नहीं पता कि एक सामान्य जिंदगी क्या होती है। बस ये हैरान हो जाते हैं कि हर कोई हमें दुत्कार क्यों देता है, क्यों इन्हें कोई समझाता नहीं, कोई इनके सर पर प्यार से हाथ नहीं रखता। सड़क पर रहने वाले इन बच्चों का कोई कल नहीं होता, कोई भविष्य नहीं होता। इनके लिए सुबह का मतलब होता है स्कूल जाना नहीं, बल्कि कचरे के ढेर से बोतलें चुनना या फिर ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों के पीछे भागना। लोग इन्हें देखते हैं तो कभी कभी तरस खाकर एक दो रुपए दे भी देते हैं, तो कभी गाड़ी का शीशा आगे चढ़ा के

बढ़ जाते हैं। लेकिन हम सब ये कभी नहीं सोचते कि इन गंदे कपड़ों और बिखरे बालों के पीछे भी एक मासूम सा दिल है जिसमें कुछ सपने हैं। ऐसे ही एक बार मेरे साथ हुआ कि मैंने एक बच्चे से पूछा, तुम यहाँ सड़क पे भीख मांगते रहते हो, पढ़ाई क्यों नहीं करते, बड़े आदमी कैसे बनोगे? तो जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा, बड़ा तो तब बनूंगा ना जब आज रात भरपेट खाना खाऊंगा। ये जवाब कलेजे को चीर देता है। इनमें से कई मासूम बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें माँ की गोद भी नसीब नहीं होती, माँ की लोरियाँ भी नसीब नहीं होती। ये फुटपाथ के किनारे तपती हुई फर्श पर बेफिक्री से सो जाते हैं। इनके बालों को सहलाने वाला कोई हाथ नहीं होता। इनकी मीठी नींद इन्हें एक दूर सपनों में ले जाती है, जहाँ शायद ऐसे ही कुछ भाव उमड़ते होंगे।

दोस्तों, इन दर बदर भटकते हुए बच्चों में कई कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपना माँ बाप खो दिया है या जिन्हें गरीबी ने अपनों से दूर कर दिया है। फुटपाथ की इस बेरहम दुनिया में ये बच्चे अकेले हैं। इन्हें ना तो प्यार मिलता है, ना ही सुरक्षा। उल्टा, ये अक्सर शोषण और अपराध की दुनिया के जाल में फंस जाते हैं। हम अक्सर व्यवस्था को कोसते हैं, लेकिन सच तो यह है कि समाज के तौर पर हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं। हम इन्हें देखकर अपनी आंखें मूंद लेते हैं। भीख देना समस्या का समाधान नहीं है दोस्तों, समाधान है इन्हें समझाना। एक ऐसे बच्चे को शिक्षा देना जिसको वाकई इसकी बहुत जरूरत है। एक बार मैंने सिग्नल पर भीख मांग रही एक औरत से पूछा कि क्या तुम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहोगी, इसका खर्चा हम उठा लेंगे। तो उसका जवाब ये था, अगर हम इसको स्कूल भेज देंगे तो जो रोज़ हमें पैसे मिल रहे हैं वो कौन लाएगा। इसलिए बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा हमारी भूख बड़ी है। तो दोस्तों, ये है उन प्रश्नों के जवाब जो हमें अक्सर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, ये है कुछ संवेदनशील जवाब जिनका सामना हमें भी करना पड़ता है। आप कभी उनसे पूछ कर तो देखिए, आपको लगेगा तरक्की के इस दौर में आज भी कुछ कोने ऐसे हैं जो अनछुए रह गए हैं। अगर हम अपने स्तर पर एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा भी लें या किसी एक ऐसी संस्था की मदद करें जो इन बच्चों को पढ़ाती है, तो शायद ये बचपन सड़क पर दम नहीं तोड़ेगा। लेकिन साथ में समस्या खड़ी हो जाती है उनके साथ के अभिभावकों की, जो उनको पढ़ाना ही नहीं चाहते। तो प्रश्न वहीं का वहीं रह जाता है कि पहले तो उन्हें समझाएं।

दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम के जरिए हमारी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है। अगली बार अगर आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पर किसी बच्चे को भीख मांगते हुए देखें तो उसे भिखारी न समझें। उसमें देश का एक खोया हुआ भविष्य है। नफरत या दुत्कार की जगह अपनी आंखों में उसके लिए थोड़ी सी हमदर्दी लाएं। मुमकिन हो तो पैसे देने की बजाय कुछ खाने को दें। उसकी शिक्षा का जरिया बनने की कोशिश करें। बचपन भगवान का दिया सबसे खूबसूरत तोहफा है, इसे सड़क की धूल में मत मिलने दीजिए। आइए हम और आप मिलकर इन बेघर बच्चों को एक आसमान दें, एक भविष्य दें।

आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए विषय के साथ। तो दीजिए मधु को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। आज का ये कार्यक्रम पेश कर रही थी मधु कुमार, प्रस्तुति थी अभयकांत तिवारी की। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रतिमा मिश्रा, राम कैलाश और रंजना त्रिपाठी से लोकगीत। पहले सुनते हैं प्रतिमा मिश्रा से ये देवी गीत।

प्रतिमा मिश्रा से अभी आप सुन रहे थे गंगा गीत। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से सुन रहे हैं आप लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी, और अब आइए सुनते हैं राम कैलाश और साथियों से ये देवी गीत।

अभी आप सुन रहे थे राम कैलाश और साथियों से देवी गीत। अब आइए सुनते हैं राम कैलाश और साथियों से कहरवा।

अभी आप सुन रहे थे राम कैलाश और साथियों से ये कहरवा। अब आइए सुनते हैं रंजना त्रिपाठी से ये देवी गीत।

लोक माधुरी कार्यक्रम में के अंत में सुनते हैं कजरी। गायिका हैं आश्रय द्विवेदी, रंजना त्रिपाठी और संगीता राय।

अभी आप सुन रहे थे आशा द्विवेदी, रंजना त्रिपाठी और संगीता राय से कजरी। इसी के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के एक कलाकार हैं नसीरुद्दीन शाह।

आज मुझे भारतीय सिनेमा के ऐसे महान अभिनेता के बारे में बोलने का अवसर मिला है जिन्होंने ये साबित किया कि एक कलाकार की असली पहचान उसके अभिनय से होती है, ना कि केवल उसकी लोकप्रियता से। मैं बात कर रही हूँ नसीरुद्दीन शाह की, अभिनय की दुनिया के बेमिसाल कलाकार। नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई यानी आज के दिन 1950 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हुआ। बचपन से ही उन्हें अभिनय में रुचि थी। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और बाद में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST तथा फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII पुणे से अभिनय का प्रशिक्षण लिया। यही प्रशिक्षण उनके शानदार अभिनय की नींव बनी।

नसीरुद्दीन शाह ने अपने कैरियर की शुरुआत ऐसे समय में की जब हिंदी सिनेमा में व्यावसायिक फिल्मों का दबदबा था, लेकिन उन्होंने समानांतर सिनेमा को नई पहचान दिलाई। उन्होंने अपने अभिनय से ये दिखाया कि बिना बड़े बड़े एक्शन दृश्यों और भव्य सेटों के भी एक फिल्म दर्शकों के दिल को छू सकती है। स्पर्श, आक्रोश, मासूम, मिर्च मसाला, ए वेनसडे, इशकिया और द डर्टी पिक्चर, जिसका गीत अभी आपने सुना, जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को याद किया जाता है।

उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे हर किरदार में पूरी तरह ढल जाते हैं, चाहे एक संवेदनशील शिक्षक की भूमिका हो, एक सख्त पुलिस अधिकारी की, एक साधारण पिता की या एक रहस्यमय व्यक्ति की। हर चरित्र में वे इतनी सच्चाई से निभाते हैं कि दर्शक उसे वास्तविक मानने लगते हैं। यही कारण है कि उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली अभिनेताओं में नाम लिया जाता है। उनकी प्रतिभा की अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया। उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से पुरस्कृत किया गया। ये सम्मान केवल उनकी सफलता का प्रमाण नहीं बल्कि भारतीय कला और संस्कृति में उनके अमूल्य योगदान की पहचान है। फिल्म के अलावा नसीरुद्दीन शाह रंगमंच से भी गहरा जुड़ाव रखते थे। उनका मानना यह है कि रंगमंच एक कलाकार को अनुशासन, संवेदनशीलता और आत्मविश्वास सिखाता है। उन्होंने अनेक युवा कलाकारों को प्रेरित किया और यह संदेश दिया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता।

निरंतर अभ्यास, मेहनत और सीखने की इच्छा ही व्यक्ति को महान बनाती है। नसीरुद्दीन शाह का प्रभाव केवल अभिनय तक सीमित नहीं है, उन्हें भारतीय सिनेमा में यथार्थवादी अभिनय को नई ऊंचाइयां दी। उन्होंने ये साबित किया कि कला का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि समाज को सोचने और समझने की प्रेरणा देना भी है। आज अनेक युवा अभिनेता उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और उनके अभिनय से सीखने का प्रयास करते हैं। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि नसीरुद्दीन शाह केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि समर्पण, सादगी और उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि यदि हमारे भीतर प्रतिभा, मेहनत और अपने काम के प्रति ईमानदारी हो तो सफलता अवश्य मिलती है। आइए हम सब भी उनके जीवन से प्रेरणा लें और अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयत्न करें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के कलाकार थे नसीरुद्दीन शाह। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में 1942 ए लव स्टोरी फिल्म का ये गीत।

और आइए आप सुनते हैं शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म बेताब में। बादलों का शोर भी कितना हसीन होता है जब दिल में किसी अपने का जिक्र होता है।

और आइए अब सुनते हैं गीता दत्त और मोहम्मद रफी को फिल्म काला बाजार में। बादल भी आज कुछ यूं बरसे हैं जैसे तेरी यादों ने।

और आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और विनोद राठौर को फिल्म चांदनी में। भीगी हुई राहों पर चलते चलते समझ आया, कुछ सफ़र मंजिल से नहीं एहसासों से पूरे होते हैं।

और आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को फिल्म कश्मीर की गली में। सावन की फुहारों में एक अजीब सी बात है, जो भीग जाए उसके दिल में छुपी कोई याद साथ आ जाए।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले में सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले सदस्यों ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की बैठक 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि जब दोनों उत्पादक होते हैं तो इससे राष्ट्र का कल्याण और सभी जीवों की सुख शांति सुनिश्चित होती है।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की वैश्विक छवि को सार्वभौमिक मान्यता और स्वीकृति मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष

0: सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं के साहस और दृढ़ता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा अपने साहस, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम के बल पर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं और यही विकासशील भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले दो दिन अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 की जीत दिलाई। और घरेलू शेयर बाजार सूचकांक लगभग 0.7% की गिरावट के साथ आज कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The monsoon session of Parliament began today when the Lok Sabha met at 11 a.m. The House paid tributes to six of its former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. When the Speaker tried to take up the question hour, the opposition members, including from Congress and Samajwadi Party, raised the issue of paper leak of NEET examination. Mr. Birla urged the opposition to cooperate in running the house and maintain decorum, but the opposition members continued their protest, which led to adjournment of the Lok Sabha till 12 noon. In the Rajya Sabha, the proceedings began with the oath of the newly elected and re-elected members. During the proceedings, Leader of the Opposition Mallikarjun Kharge tried to raise the issue of NEET examination paper leak. However, due to uproar, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan adjourned the house till 12 noon. When the House met after the first adjournment at the noon, the opposition members continued their protests against NEET paper leak. The Rajya Sabha adjourned till 12:30 p.m. Prime Minister Narendra Modi has said that be it the monsoon or the monsoon session, if both are proactive, they prove to be highly productive. Speaking to the media before beginning of the monsoon session of Parliament, he said when both are productive, it leads to the welfare of the nation and the well-being of all living beings. Mr. Modi said it is a powerful message that the potential and aspirations of the country's youth are boundless as space itself.
2: Monsoon ho ya monsoon satra, agar dono proactive ho, to bahut hi productive hote hain. Aur dono ko productive hote hain, to desh ka kalyan hota hai, jeev matra ka kalyan hota hai. Aur isliye hum yahi prarthana karte hain ki monsoon bhi proactive rahe. Monsoon 70 bhi productive rahe.
1: President Draupadi Murmu will hold delegation level talks with their Maldivian counterpart Maya Sandhu in Chisinau today. President Murmu will also meet the President of the Parliament of Moldova, Igor Grosu, and will interact with members of the Moldova-India Parliamentary Friendship Group. Further, the President will address a business forum and interact with the members of the Indian community. Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has informed that the interchange facilities and gates are now open at Rajiv Chowk and Central Secretariat Metro stations. Earlier, DMRC said that Janpath, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Central Secretariat and

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे दोपहर 12:15 पर कमला बोस का ख्याल गायन। 12:30 पर कार्यक्रम होगा आपकी पसंद, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की।

1:15 पर गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी अधिवक्ता विनिशा जायसवाल की वार्ता महिला सुरक्षा कानून जागरूकता और चुनौतियां। दोपहर 2:30 बजे NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम होगा।

शाम 5 बजे नन्हे मुन्ने का कार्यक्रम होगा नन्ही दुनिया। 5:15 बजे युवजन कार्यक्रम सुनेंगे युवाणी। आज हम आपको सुनाएंगे संस्कृत कुशवाहा की वार्ता, युवाओं के कौशल विकास हेतु किए जा रहे सरकारी प्रयास।

सुनेंगी लोक भाषा कविता पाठ शोभनाथ से और दीनानाथ यादव और साथियों के स्वर में लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में अंजनी कुमार सिंह की वार्ता होगी गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में लोक चेतना। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में श्रेया श्रीवास्तव के गाए भजन और गीत सुनवाए जाएंगे। 8:30 कानून और हम कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे हर्ष बिहारी श्रीवास्तव की वार्ता नए आपराधिक कानून एवं उनकी उपयोगिता।

शाम 5:15 युवाणी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे संस्कृति कुशवाहा की वार्ता, युवाओं के कौशल विकास हेतु किए जा रहे सरकारी प्रयास। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कमला बोस का ख्याल गायन राग भीम पलासी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रही थी कमला बोस का ख्याल गायन राग भीम पलासी। इनके साथ तबले पर संगत की श्री अनूप कुमार बनर्जी ने, हारमोनियम पर श्री शमशाद अहमद खान ने, विलंबित रचना रूपक ताल में निबद्ध थी और बोलते अरज मानिए साई मोरी तुमरो नाम गरीब नवाज। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। प्रस्तुति है मधु कुमार की।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। ऐ जिंदगी और कितने तजुर्बे कराएगी, कोई तो अपना रहने दे, क्या सबके चेहरे से पर्दा हटाएगी। जी हाँ, कुछ ऐसा ही विषय लेकर आ गए हैं हम आज के इस कार्यक्रम में। ये एक ऐसा विषय है जो हम सबके जीवन से जुड़ा है, बदलते चेहरे। जी हाँ, वक्त के साथ सिर्फ मौसम ही नहीं, इंसान और उसके जज्बात भी बदलते हैं। चेहरे हमारी पहचान है, हमारे अनुभवों का आईना है। कभी खुशी से दमकते तो कभी गम की परछाई लिए, बचपन की मासूमियत से लेकर बुढ़ापे की झुर्रियों तक हर चेहरा एक कहानी कहता है। अक्सर हम कहते हैं ना कि इंसान बदल गया, क्या सिर्फ उसकी सूरत बदलती है या उसके भीतर का भी कुछ बदलता है। इस बारे में हम करेंगे बातचीत और पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। और इस गाने की फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं की है उनके नाम है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से वारिस अली खान, इस्मालुन निशा शकील अहमद शहनाज खान और बेबी नुसरा खान, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर शाह कुशल नीति सुरभि अश्विनी मंगला पेन शाह और राजेंद्र जी शाह, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना। आप सब जिस गीत को सुनना चाहते हैं उस फिल्म का नाम है हंसते जख्म। आइए सुनते हैं ये गीत।

बात कर रहे थे समय के साथ बदलते चेहरों की। मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया बदलता जाता है, और इसी से हमारे चेहरे पर भी एक परिपक्वता आ जाती, एक मैच्योरिटी आ जाती है। और कई बार कुछ हालात ऐसे आते हैं जो इंसान को बदल देते हैं। कोई बहुत हंसमुख था, लेकिन ज़िंदगी की ठोकरों ने उसे एकदम शांत कर दिया। तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि चेहरा सच्चा होता है, जो हमारे भीतर जो भी चल रहा है उसको बयान कर देता है। तो ये बातें हैं वक्त और हालात की, दोनों ही चेहरा बदलने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। वक्त के साथ चेहरे बदल जाते हैं, कुछ रिश्ते भी अनजाने हो जाते हैं। लेकिन क्या हर बदलाव बुरा होता है? नहीं, कई बार ये बदलाव हमें मजबूत भी बनाता है, हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। एक मासूम चेहरा जब संघर्षों से गुजरता है ना, तो उस पर अनुभव की एक नई चमक आ जाती है। बातें अभी और भी हैं, लेकिन पहले सुनते हैं अपने श्रोताओं की पसंद का ये गाना, और इस गाने की फरमाइश जिन्होंने की है उनके नाम है बिहार से हमारे श्रोता आर्यन राज, रोहित राज, हैप्पी आनंद और पीयूष कुमार। साथ ही पश्चिम सिंहभूमि चाईबासा झारखंड से श्रोता हैं हमारे शिवा गोप, कपिल गोप, प्रेम गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। साथ ही इस गीत की फरमाइश जिन्होंने की है ये है महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और दुर्गेश्वरी जायसवाल। आप सब सुनना चाहते हैं बहुत ही खूबसूरत सा गाना हीरा पन्ना फिल्म से, तो आइए सुनते हैं ये।

इस गीत के बाद अब हम लौटते हैं अपने विषय पर, बदलते चेहरे। जी हाँ, चेहरे तो बहुत देखे हैं दुनिया में हमने, कुछ दिल के करीब, कुछ अजनबी से लगे। हर चेहरा एक कहानी सुनाता है अपनी, कोई खुशी से भरा, कोई दर्द से बुझे। कई बार हम ये भी देखते हैं कि लोग अपने चेहरे पे एक मुखौटा सा ओढ़ लेते हैं, अपने असली जज्बातों को छुपाते हैं। खुशी में भी गम और गम में भी खुश दिखने का दिखावा करते हैं। क्या ये सही है या हमें अपने असली चेहरे को ही अपनाना चाहिए? सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। चेहरा तेरा था, निगाहें मेरी थी, बदलते रहे मौसम, तू भी बदल गया। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और इस गीत की फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं ने की है उनके नाम है आर्यनगर छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघैल, मोरस जंघैल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघैल, नंदनी जंघैल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघैल और अमित जंघैल। साथ ही हमारे ये श्रोता हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक कुमार सिंह, सुनीता सिंह, कृषव और इनके परिवार के अन्य सदस्य, सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, योगेश मालाकार, मुस्कान मालाकार, बाबूलाल चौधरी, निर्मला बाई चौधरी और इनके परिवार के अन्य सदस्य। श्रोताओं, गीत सुनने से पहले हम अपने सभी श्रोताओं को जिन्होंने अनुरोध किया है कि एक बार फिर से बता दें कि ये प्रोग्राम कब कब प्रसारित होता है, तो श्रोताओं, संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आप सुनते हैं प्रत्येक सोमवार और बृहस्पतिवार को दिन में 12:30 पर, और इसके लिए हमारा नंबर है 8004926250। अपने संदेशों के संग अपने पसंद के गानों को सुनने के लिए हमें आप लिख सकते हैं। याद रखिएगा, इस पर आपको कॉल नहीं करनी है, सिर्फ संदेश भेजने हैं। तो चलिए चलते हैं अगले गीत की तरफ, लेकिन गीत तो अभी हमने आपको बताया ही नहीं, ये गीत है प्यासा सावन फिल्म का। आइए सुनते हैं।

इस रंग बदलती हुई दुनिया में कुछ तो ओरिजिनल रहने दीजिए, अपने जज्बातों को, अपनी चाहतों को और अपने चेहरे के बदलते रंगों को। अगर आपके मन में कोई भाव उठ रहा है, चाहे वो खुशी का हो या गम का, तो छुपाइए मत। आप उस भाव को बता सकते हैं, बेझिझक अपनों के संग बांट सकते हैं उन खुशियों को। तो बदलते चेहरे पर हम आ गए हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। आशा करती हूँ आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और आप इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचारों को ज़रूर बताइएगा हमें, ताकि हम और विषयों पर भी आपसे बातचीत कर सकें। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की तरफ। और इस गीत की फरमाइश हमें की है मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, त्रिपुरा से अविनाश तेली, आशुतोष देवनाथ, संगीता देवनाथ, असम से अनूप भट्टाचार्य, सुप्ता भट्टाचार्य, चौधरी महेंद्र सिंह, भजनलाल, राजू लवानिया और इनके परिवार के अन्य सदस्य, कौशल सिंह प्रजापति, नीलम प्रजापति, सिद्धार्थ प्रजापति और श्रीजी, बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। और हमारे एक श्रोता ने छोटा सा मैसेज भी लिखा है और पहले इनका नाम सुन लीजिए। ये हैं प्रयागराज से दीपा प्रजापति, ऋषभ, कुसुम देवी, ऋतिक प्रजापति और इनके परिवार के अन्य सदस्य। आप सब सुनना चाहते हैं वारिस फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं ये गीत और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुत थी मधु कुमार की। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 25 दिन तक चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे को उठाया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोपहर में पहले स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा, जिसके बाद राज्यसभा को 2 बार स्थगित किया गया। अभी लोकसभा की कार्यवाही जारी है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। 3,74,000 से अधिक पांडुलिपियां पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे, आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे।
1: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक, सेवा तीर्थ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट भी खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज

0: नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मॉल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगी और मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत भी करेंगी। श्रीमती मुर्मू तीन देशों मॉल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है, जिससे ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल कर अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The monsoon session of Parliament began today when the Lok Sabha met at 11 a.m. The House paid tributes to six of its former members who passed away recently. They were Nadendra Bhaskara Rao, Omvati Devi, Sudhanshu Seel, Major General Bhuvan Chandra Khanduri, retired, K.P. Dhanapalan and Pyarelal Sankwar. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. When Lok Sabha Speaker Om Birla tried to take up the question hour, the opposition members, including from the Congress and Samajwadi Party, raised the issue of paper leak of NEET examination. Mr. Birla urged the opposition to cooperate in running the House and maintain decorum, but the opposition members continued their protest, which led to adjournment of the Lok Sabha till 12 noon. When the House met after the first adjournment at 12 noon, the opposition members continued their protest. Amid ruckus, the chair adjourned the House till 12:30 p.m. When the House met after the second adjournment at 12:30 p.m, the opposition members again continued with their protest over NEET paper leak issue. The presiding officer, Dilip Saikia, tried to take up the zero hour, but the opposition members continued their protest. Mr. Saikia said there should be healthy debate in the House and people have sent their representatives to raise important issues. The opposition members did not pay heed to the chair's advice. It led to adjournment of the House till 2 p.m. In the Rajya Sabha, the proceedings began with the oath of the newly elected and re-elected members. Leader of the opposition, Mallikarjun Kharge, tried to raise the issue of NEET examination paper leak. However, due to uproar, the protest continued. The chair adjourned the House till 2 p.m. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal today introduced the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha. The bill aims to further amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance to increase the number of Supreme Court judges from 33 to 37. Prime Minister Narendra Modi has said, be it the monsoon or the monsoon session, if both are proactive, they prove to be highly productive. Speaking to the media before beginning of the monsoon session of Parliament, he said, when both are productive, it leads to the welfare of the nation and the well-being of all living beings. Mr. Modi said it is a powerful message that the potential and aspirations of the country's youth are as boundless as space itself.
2: Monsoon ho ya monsoon satra, agar dono proactive ho, to bahut hi productive hote hain. Aur dono ko productive hote hain, to desh ka kalyan hota hai, jeev matra ka kalyan hota hai. Aur isliye hum yahi prarthana karte hain कि मॉनसून भी प्रोएक्टिव रहे, मॉनसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे।

0: Union Minister Dr. Mansukh Mandavia has said over 8 crore manuscripts have been digitized under the Gyan Bharatam mission. Replying to supplementaries in the Lok Sabha today, Dr. Mandavia said the Modi government has launched the Gyan Bharatam mission to preserve and digitize manuscripts to facilitate research and make them accessible to the public. Special traffic arrangements have been put in place in New Delhi during the monsoon session of Parliament 2026, which began today. In a social media post, the Delhi Traffic Police said heavy vehicular movement and traffic restrictions are expected in and around the Parliament complex. According to the advisory, the public have been advised to avoid roads such as Rafi Marg, Motilal Nehru Marg, Maulana Azad Road, Parliament Street, Ashok Road, Talkatora Road, Rajendra Prasad Road, Janpath and adjoining stretches, as traffic diversions and congestion are likely in these areas. In Assam, the flood situation has worsened as incessant rain continues across the state, affecting thousands of people in several districts of Upper Assam. Several rivers in Upper Assam are reported to be flowing above the danger level. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्तवानों से इलाकाई खबरें सुनिए। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो गया है। मानसून इजलास से कबल नामा निगारों से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौजूदा आलमी सूरत हाल मुसलसल जंग की कैफियत पैदा करती है। मगरबी एशिया में जंग हिंदुस्तान में बहरान का एक बड़ा जरिया रही है, जिसने हर पहलू से बेशुमार रुकावटें खड़ी की हैं। इसके बावजूद हिन्दुस्तान ने 7.7% की शरह नमू हासिल की, जो हिन्दुस्तान की ताकत का सबूत है।
2: साथियों, हम भले भांति जानते हैं और पूरी दुनिया चिंतित भी है, लगातार कहीं न कहीं युद्ध की स्थितियां बनती रही है। पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण भारत जैसे देश जो एनर्जी के लिए यूरोप पर डिपेंडेंट है, उनके लिए ये पश्चिम एशिया का युद्ध एक बहुत ही बड़ा संकट का कारण रहा। उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा। ये भारत के सामर्थ्य का परिचय है।
1: मानसून इजलास 13 अगस्त तक जारी रहेगा। 25 रोजा इजलास के दौरान 19 नशिस्तें होंगी। मानसून इजलास से कबल हुकूमत ने कल पार्लियामेंट में कुल जमाती मीटिंग की। राजनाथ सिंह ने मीटिंग की सदारत की। इजलास में 40 सियासी जमातों के 50 से ज्यादा रहनुमाओं ने शिरकत की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज बाराबंकी जिले में 542 करोड़ रुपए से ज्यादा के 82 तरक्याती प्रोजेक्टों को इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों को इस्तफादा कुंदगान में चेक, सर्टिफिकेट और घर की चाबियां भी तकसीम की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव का आशीर्वाद मिलता है। हिन्दुस्तान के विरसे की शिनाख्त के तौर पर आज लोधेश्वर महादेव के कॉरिडोर का संगे बुनियाद रखा गया है।
3: हमने भारत के विरासत के प्रतीक बाराबंकी की पहचान भगवान लोधेश्वर महादेव के इस पवित्र मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि स्वीकृत कर दी है। और आज मैंने देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई, कितना भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर। जो भी आएगा अभिभूत होकर के जाएगा।
1: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के अवाम को मुखातिब करते हुए एक खत लिखा है, जिसमें लिखा कि हुनर से जुड़ने से हमारी रियासत, जिसके पास मुल्क की सबसे बड़ी नौजवान कुव्वत है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश की तरक्की करेगी बल्कि $1 ट्रिलियन की मईशत के कयाम की राह भी हमवार करेगी। रवायती हुनर और जदीद टेक्नोलॉजी के दरमियान तवाजुन कायम करते हुए हुकूमत ने गुज़िश्ता 9 सालों में उत्तर प्रदेश को एक महारत रियासत में तब्दील कर दिया है। रियासत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने आज आगरा में सड़क की तामीर का संगे बुनियाद रखा। जनता चौपाल के दौरान उन्होंने मकामी बाशिंदों से बराह रास्त बातचीत की और उनके मसाइल और तजावीज सुनी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ के काबिल क्यादत में डबल इंजन वाली हुकूमत मुसलसल तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन लीग सीजन 4 के मैचों के T20 टिकटों की लॉन्चिंग आज लखनऊ के काना क्रिकेट स्टेडियम में होगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के मुशीर अवनीश अवस्थी इस तकरीब में मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि यूपी टी20 लीग सीजन 4 का इनेकाद 14 अगस्त से 6 सितंबर 2026 तक होगा। इस बार लीग

0: लखनऊ और कानपुर में मुनक़िद होगी। अयोध्या के जिला जेल इंतजामिया ने उन खबरों की तरदीद की है कि अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे के गबन के मामले में मुलजमान को जेल में खसूसी सहूलियात दी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट जेल सुप्रिंटेंडेंट मुकेश कुमार ने वाजे किया कि इस मामले में कुल 8 मुलजमान कैद में हैं और उन्हें कोई खास सहूलत फराहम नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश के तकरीबन तमाम अजला में दरमियानी से भारी बारिश हो रही है। हमारे नामा निगार ने इत्तला दी है कि रियासत भर में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम है। मुजफ्फरनगर जिले में शदीद बारिश की वजह से एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 अफराद हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए हैं। रियासत दारुल हुकूमत लखनऊ समेत कई अजला में मूसलाधार बारिश से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। महकमा मौसमियात ने रियासत कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया और कहा है कि मौसम के मौजूदा सूरत हाल अगले 3 दिन तक बरकरार रहने के इम्कान है। आइंदा 24 घंटों में तराई इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के इम्कान है। दरी असना जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा को खराब मौसम की वजह से कल रोक दिया गया था। मौसम के बेहतर होने और रास्तों को महफूज करार देने के बाद यात्रा दोबारा शुरू हो जाएगी। अमरनाथ यात्रा अगले माह 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब बहनें अपने कार्यक्रम सुनेंगी गृहलक्ष्मी।

0: नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी सखियों का आपके चहेते कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। मैं हूँ रोशनी बंसल।
1: और मैं हूँ शारदा सिंह।
0: किसी ने क्या खूब कहा है, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाह जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख।
1: आज की इस गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सिर्फ घर की चार दीवारियों की नारी को नहीं संभालती, बल्कि अपनी उम्मीदों और हौसलों से आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है। बीते दौर में स्त्री सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ अधिकारों की बात करना था, लेकिन आज इसकी परिभाषा बदल चुकी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, आज की नारी आत्मनिर्भर है, स्वाभिमानी है और अपनी नियति खुद लिखने का मादा रखती है। वो अब सिर्फ सहना नहीं बल्कि अपनी पहचान के साथ खुलकर जीना जानती हैं।
1: तभी तो आज के बदलते दौर की इस खूबसूरत सोच पर दिल कहता है कि पंखों की अब जरूरत नहीं हमें उड़ने के लिए, हमारी तो उड़ान ही हमारी खामोश जिद से शुरू होती है, है ना?
0: तो चलिए इस जिद को, इस खूबसूरती को और इस नए दौर की नारी के जज्बे को सलाम करते हैं इस खूबसूरत से गाने के साथ।

0: भाई गीत तो बहुत सुंदर था है ना, पर आज की चर्चा बेहद ही खास है बहनों। भाई रोशनी, आज हम बात कर रहे हैं स्त्री सशक्तिकरण की बदलती अवधारणा पर।
1: बिल्कुल शारदा दीदी, और इसकी शुरुआत हम आज से नहीं बल्कि अपने उस गौरवशाली इतिहास से करेंगे जहां से हमारी जड़ें जुड़ी हैं। क्योंकि सशक्तिकरण आज का मॉडर्न कोई गिफ्ट नहीं है बल्कि सदियों पुराना हमारा हक है जो इतिहास से गुजरकर आज डिजिटल आसमान छू रहा है।
0: बिल्कुल भाई, कितनी खूबसूरत बात कही तुमने कि हम अगर हम हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों को पलटे तो वैदिक काल में स्त्री का रूप बेहद ही सशक्त था है ना, और सम्मानजनक भी था। गार्गी, मैत्री और लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं ने वेदों की रचना में योगदान दिया, शास्त्रों पर बड़े बड़े विद्वानों ने शास्त्रार्थ किया। उस दौर में महिलाओं को जो शिक्षा, संपत्ति और अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार था।
1: सचमुच दीदी, ये सुनकर ही क्या लगता है ना कि उस वक्त की महिलाएं संपत्ति का, शिक्षा का और सोचिए अपने जीवन साथी चुनने तक का पूरा अधिकार था। मुझे लगता है कि वो वक्त इस वक्त से ज्यादा मॉडर्न रहा होगा है ना, हमारी ताकत का कह सकते हैं वो स्वर्ण युग रहा होगा। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता ना। मध्यकाल आते आते बाहरी आक्रमणों, असुरक्षा और रूढ़िवादी सोच के कारण चीजें बिगड़ने लगी।
0: और रोशनी, वो एक ऐसा भी अंधकारमय दौर था जहाँ स्त्री की स्थिति कमजोर होती चली गई। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह और जौहर जैसी कुप्रथाओं ने औरतों को घर की चार दीवारी में कैद कर दिया। जो स्त्री कभी समाज का नेतृत्व करती थी वह सिर्फ एक निर्भर पहचान बनकर रह गई। सशक्तिकरण की अवधारणा यहाँ आकर लगभग थम सी गई।
1: पर दीदी, भारतीय स्त्रियों का हौसला कभी नहीं टूटा। आधुनिक काल की शुरुआत में जब राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर और सावित्री बाई फुले जैसे नायकों ने आवाज उठाई तो महिलाओं ने फिर से करवट ली। आजादी की जंग में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर सरोजनी नायडू तक ने साबित कर दिया कि वो कमजोर नहीं है। आजादी के बाद महिलाओं ने घरों से बाहर निकलकर दफ्तरों, स्कूलों और अस्पतालों में अपनी जगह बनाई, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई।
0: बिल्कुल सही कहा। लेकिन रोशनी, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के बाद भी महिलाओं पर एक अलग तरह का दबाव आ गया है।
1: क्या
0: आ गया था? कि सुपर वुमन या परफेक्ट बनने का दबाव है ना, कि घर घर भी संभालें भाई, बाहर भी संभालो और हर काम में अव्वल रहो। इस चक्कर में कहीं पूरा दारोमदार जो उनका मतलब कि जो उनका व्यक्तित्व है और जो उनका दायित्व है वो सारी जिम्मेदारियों को उन्होंने अपने कांधे पर उठा ली है ना।
1: आपने बिल्कुल दुखती रख पर हाथ रखा दीदी। इतिहास के एक लंबे दौर में महिलाएं खुद को भूल ही गईं, दूसरों की खुशियों की परवाह करते करते वो अपने लिए समय निकालना भूल गईं। लेकिन आज की सशक्तिकरण की अवधारणा में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बदलाव आया है, क्योंकि अब महिलाएं हर वक्त परफेक्ट दिखने के इस जाल से बाहर निकल चुकी हैं।
0: बिल्कुल, और भाई इस पे तो मैं कहूँगी कि वाह क्या बात है, बहुत सही कहा तुमने। ये वाकई एक बहुत ही ज़रूरी बदलाव है। आज की नारी ये समझ चुकी है कि वह मतलब कोई सुपर वुमन नहीं है और ना ही उसे किसी को भी साबित करने के लिए परफेक्ट होने की

0: ज़रूरत है। आज वह पूरे घर का बोझ अकेले अपने दम पर उठाने की जिद छोड़कर काम और जिम्मेदारियाँ बांटना सीख गई है।
1: जी
0: है ना।
1: और सबसे बढ़कर वो अपने लिए मी टाइम निकाल रही हैं, वो समय जो सिर्फ उसका अपना है, जहाँ अपनी किसी हॉबी को जी रही है, चाय की चुस्की शांति से ले सकती है या बस बिना किसी गिल्ट के आराम कर सकती है। खुद को प्यार करना और अपने लिए खुश रहना आज का असली सशक्तिकरण है।
0: बिल्कुल रोशनी, जब मन भीतर से खुश और शांत होगा तभी तो बाहरी दुनिया में भी असली उड़ान भरी जा सकेगी। और इसी मानसिक आज़ादी ने आज के डिजिटल युग को एक नया आयाम दिया
1: बिल्कुल
0: है।
1: दीदी, आज इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इस आज़ाद सोच को और हवा दे दी है। आज देखिए, गांव और छोटे कस्बों की जो महिलाएं हैं वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और डिजिटल बैंकिंग के जरिए घर बैठे ही और अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने हुनर को बिजनेस में बदल रही हैं। कोई हस्तशिल्प बेच रही है, कोई ऑनलाइन ब्लॉगिंग कर रही है। अब उन्हें पहचान के लिए अपनी शांति से समझौता करने की भी जरूरत नहीं।
0: इतिहास के उस गौरवशाली वैदिक काल से मध्यकाल की बेड़ियों को तोड़ते हुए और परफेक्ट बनने के दबाव को पीछे छोड़ते हुए आज की नारी अपने हक के डिजिटल आसमान में मुस्कुरा रही है।
1: बिल्कुल सही
0: है ना?
1: कह रही है, क्या बात है दीदी, आपने कह दिया। जो तो श्रोताओं, स्त्री की यह यात्रा सिर्फ अधिकारों की नहीं थी बल्कि खुद से प्यार करने और खुद को जीने की यात्रा भी बन चुकी है।
0: और इस सुहाने बरसाती मौसम में अब आसमान से बूंद बरस रही है ना? तो क्यों ना हम अपनी अपनी बहनों को हर चिंता से भूल करके खूबसूरत से गीत सुनाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा दीदी, तो इसी खूबसूरत जज्बे, अपनी शर्तों पर जीने की इस चाहत और इस रूमानी बारिश के नाम करते हैं उमंग से भरा ये गाना। सुनिए और अपनी जिंदगी की बूंदों को खुलकर महसूस कीजिए।

0: बूंद बूंद में क्या बात है। और इस सुहाने मौसम में जहाँ मन मल्हार गा रहा है, वहीं एक सजग नागरिक और समाज के रूप में हमें कुछ बेहद जरूरी जमीनी हकीकत पर भी बात करनी होगी, है ना रोशनी? आज हम जब डिजिटल युग में स्त्री की आज़ादी और उसकी मी टाइम की बात कर रहे हैं, तो इसके समानांतर एक सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा होता है और वो है उसकी सुरक्षा की।
1: आपने बिल्कुल सही कहा और सही बात उठाई है। आज का हमारा विशेष सेगमेंट इसी बेहद गंभीर और ज़रूरी विषय पर आधारित है, महिला सुरक्षा कानून, जागरूकता और चुनौतियाँ। जो हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता विनीशा जायसवाल और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति कर रहे हैं अभयकांत तिवारी। तो आइए सुनते हैं महिला सुरक्षा कानून, जागरूकता और चुनौतियाँ। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं एडवोकेट विनीशा जायसवाल और हम इनसे बात करेंगे महिला सुरक्षा कानून के बारे में। तो सबसे पहले विनीशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद। मैं आकाशवाणी प्रयागराज का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का अवसर दिया।
0: तो सबसे पहले बात की शुरुआत जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं इस बात से करना चाहती हूँ कि महिला सुरक्षा कानूनों की आवश्यकता क्यों महसूस हुई?
2: देखिए, जब हमारा संविधान बना तब हमारे संविधान के निर्माताओं ने ये समझ लिया था कि महिलाओं को केवल समान अधिकार देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उन्हें वास्तविक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। इसीलिए संविधान ने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया है। जैसा कि आर्टिकल 15 में कहा गया है कि महिला होने के कारण भेदभाव करने से ये आर्टिकल रोकता है और सरकार को महिलाओं के हित में विशेष कानून बनाने की भी अनुमति देता है। प्रत्येक महिला को गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। आज महिलाएं डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, न्यायाधीश हैं, वैज्ञानिक हैं, पुलिस अधिकारी हैं, सेना में कार्यरत हैं, राजनीति में हैं, व्यापार भी कर रही हैं। यदि वह हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं तो उन्हें सुरक्षित वातावरण देना केवल सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है।
0: जी,
2: यही सोच महिला सुरक्षा कानूनों की आधारशिला है।
0: जी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारे देश में प्रमुख कौन कौन से कानून बनाए गए हैं?
2: देखिए, महिलाओं के लिए बहुत कानून हैं। मैं 5 महत्वपूर्ण कानूनों का बताना चाहूंगी कि एक तो है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। ये 2005 में ये अधिनियम आया। उसके बाद ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न पॉश अधिनियम 2013 का, जिसको पॉश का मैं पूरा नाम बता दूं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट है ये, 2013 में ये अधिनियम आया। फिर मातृत्व लाभ अधिनियम है और हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में आया, जिसने बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार प्रदान किए।
0: जैसा कि आपने बताया कि इतने तरीके के कानून महिलाओं के लिए बने हुए हैं, तो जब मैं अपने आसपास के माहौल को देखती हूँ तो मैं ये पाती हूँ कि जब कार्यक्षेत्र की बात आती है तो बहुत ही कम परसेंटेज है जो वर्किंग वुमेन है। ज्यादातर जो हमारे समाज में, हमारे देश में जो महिलाएं हैं वो घरेलू महिलाएं हैं और बहुत सारे जो केसेस महिलाओं से संबंधित आगे आते हैं वो घरेलू हिंसा को लेकर ही आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे इस घरेलू हिंसा की डेफिनेशन जानना चाहती हूँ कि किन किन चीजों को घरेलू हिंसा की श्रेणी में लाया जाता है।
2: जी बिल्कुल ठीक है आपने। घरेलू हिंसा का अर्थ है कि परिवार या डोमेस्टिक रिलेशनशिप में जो संबंध होते हैं उसमें किसी महिला के साथ किया गया शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक या यौन उत्पीड़न, ये सब उस श्रेणी में आता है। ज्यादातर लोग इसको समझते हैं कि महिलाओं को मारना ही केवल घरेलू हिंसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।

0: हैं,
1: जी,
0: इसमें शारीरिक हिंसा जैसे किसी महिला को मारना, थप्पड़ मारना, जलाना, चोट पहुंचाना, ये सब तो है ही। इसके अलावा जो मेंटल टॉर्चर है, मानसिक या भावनात्मक हिंसा, जैसे किसी को बार बार अपमानित करना, महिलाओं को, उनको गाली देना, उनके कैरेक्टर पे शक करना, मायके जाने से रोकना कि आपको नहीं जाना है, अपने घर पे नहीं जाना, आपको यहीं रहना है, यहीं पे, बच्चों को छीन लेने की धमकी देना, आर्थिक हिंसा करना उनके साथ, घर खर्च न देना, जो वर्किंग है उनकी कमाई को छीन के रख लेना, उनको खर्चा नहीं देना
1: जी।

0: यहीं पे बच्चों को छीन लेने की धमकी देना, आर्थिक हिंसा करना उनके साथ, घर खर्च न देना, जो वर्किंग है उनकी कमाई को छीन के रख लेना, उनको खर्चा नहीं देना
1: जी,
0: उसके बैंक खाते पे कब्जा कर लेना, दवा या भोजन के जो बेसिक नीड्स है उसकी उसको न देना और संपत्ति से वंचित करना, ये सभी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है।
1: बहुत बार होता है कि कोई महिला बहुत परेशान है लेकिन वो समझ नहीं पा रही है कि मैं इस परिस्थिति में क्या कर सकती हूँ, तो उसे कहाँ अप्रोच करना चाहिए और किस तरीके से उसे मदद मिल सकती है?
0: कोई भी महिला अगर घरेलू हिंसा की शिकार होती है तो मैं उसे कहूंगी कि चुप मत बैठिए। चुप रहना समस्या का समाधान नहीं है।
1: जी,
0: अगर आपको तत्काल खतरा होता है तो सबसे पहले आप अपने स्वयं और अपने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और जरूरत हो तो किसी सुरक्षित स्थान पे जाएं। इसके बाद आप अगर साक्ष्य अपने सुरक्षित कर सकती हैं, जैसे आपकी कोई मेडिकल रिपोर्ट है, चोट लगी है आपको, उसकी फोटो खींच लीजिए, व्हाट्सएप कोई चैट है इस तरह का, ऑडियो वीडियो या कोई गवाह है उसको आप सुरक्षित करें, एज अ प्रूफ आपके बहुत काम आएगा। फिर अपनी परिस्थिति के अनुसार आप पुलिस को अप्रोच कर सकती हैं, महिला थाना है, महिला सेल्स हैं, महिला हेल्पलाइन नंबर है, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, लीगल एड की भी सुविधा बहुत प्रदान की गई है, वहाँ निःशुल्क लीगल एड आपको मिलती है और आप किसी अधिवक्ता से भी संपर्क कर सकती हैं, तो ये सब आपको फैसिलिटी को अवेल करना चाहिए।
1: आपकी इस बात से यही मेरे मन में सवाल आ रहा है कि आपने कहा कि चुप ना रहें, आगे आएं। ठीक है, जब कोई महिला आगे आती है तो सबसे बड़ी समस्या उसके साथ ये होती है कि वो समाज में अकेली पड़ जाती है। उस वक्त देखा जाता है प्रैक्टिकली कि कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा है और अगर वो आर्थिक रूप से डिपेंडेंट है तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला फ्री लीगल एड है, लेकिन आज अगर वो अपने परिवार के अगेंस्ट खड़ी हो गई है तो उसे आश्रय भी चाहिए, हो सकता है उसे मेडिकल एड भी चाहिए हो, तो इन सब चीजों के लिए क्या कोई कानून है, क्या वो कहीं अप्रोच कर सकती है?
0: देखिए, मैंने आपको बताया कि जो घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत महिला को प्रोटेक्शन का ऑर्डर दिया जाता है, उसको रेजिडेंस का भी ऑर्डर दिया जाता है कि कोई उसको घर से ना निकाले, उसको मॉनेटरी रिलीफ भी प्रोवाइड की जाती है
1: जी,
0: बच्चों की कस्टडी का ऑर्डर और कॉम्पनसेशन जैसी राहत वो प्राप्त कर सकती है अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत फाइल करती है। बाकी जैसे आपने कहा कि महिलाओं को निशुल्क कानूनी सहायता कहाँ से मिल सकती है, तो बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी DLSA ऐसे कार्यरत हैं, वहाँ पे जो एलिजिबल महिलाओं को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी कि एवरी वुमेन इज एलिजिबल फॉर फ्री लीगल एड इररिस्पेक्टिव ऑफ हर इनकम, तो ये मायने नहीं रखता कि आप कमाती हैं या आपकी इनकम क्या है, आपको निशुल्क फ्री लीगल एड वहां से आपको प्रोवाइड हो जाएगी। कोई महिला आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसको अधिवक्ता भी उपलब्ध कराया जाता है, कानूनी सलाह दी जा सकती है, मध्यस्थता की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।
1: और जब हम बात करते हैं कार्यस्थल पे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, तो मैंने इस चीज को अनुभव किया है कि कार्यस्थल पे ज्यादातर जो चीजें लेडीज को फेस करनी पड़ती हैं वो डायरेक्ट नहीं होती हैं। सपोज मैं यहाँ पर एक सीन बताना चाहती हूँ कि एक लेडी है, वो अपनी सीट पे बैठ के आराम से काम कर रही है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन दो चार लोग ऐसे हैं जो बगल में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी फाउल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, और वो जानबूझ के इस वॉल्यूम पे कर रहे हैं कि उसके कान तक वो बात जा रही है तो ये हैरेसमेंट ही। इस केस को कैसे जस्टिफाई करेगी और वो कहाँ पे जाके इस चीज की शिकायत करके या इस चीज से कैसे खुद को बचा सकती है?
0: यदि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या सेक्सुअल हैरेसमेंट जिसको कहते हैं महिला के ऊपर हो तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि उसको अपने आप को दोषी बिल्कुल ना माने और घबराए नहीं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट जो होता है वो केवल फिजिकल कांटेक्ट तक ही सीमित है। देखिए, ऐसा ये बिल्कुल नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपको अशोभनीय टिप्पणी करता है आपके ऊपर, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स पास करता है, या कोई प्राइवेट मैसेज करता है आपको व्हाट्सएप पे या किसी के थ्रू प्राइवेट मैसेजेस आपको भेजता है, अनुचित आपको स्पर्श करता है, या पोर्नोग्राफिकल फोटो या वीडियो दिखाने की कोशिश करता है, या फिर आपसे कोई सेक्सुअल फेवर मांगता है, आपके प्रमोशन या सर्विस से रिलेटेड आपसे कोई फेवर मांगता है
1: जी,
0: तो, और या कोई परेशान करता है या कोई ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करता है जिससे आप असुरक्षित महसूस करती हैं, तो ये सब परिस्थितियों के अनुसार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा व्यवहार महिला की इच्छा के विरुद्ध होता है, ये अनवांटेड है
1: जी।
0: तो इसके लिए एक पॉश एक्ट बनाया गया है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट। ये 2000

0: 2013 में आया है। इस कानून का उद्देश्य केवल शिकायतों का निपटारा करना नहीं बल्कि ऐसा कार्यस्थल बनाना है जहां महिलाएं सम्मान और सुरक्षा के साथ कार्य कर सकें। और ये कानून गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों संस्थाओं पर लागू होता है।
1: तो जैसा कि आपने बताया कि महिला को अगर घरेलू हिंसा से प्रोटेक्शन चाहिए तो एक प्राधिकरण बना हुआ है, वो वहाँ पे जा सकती है। तो क्या ऑफिसेज में भी कोई इस तरीके का सेल या कोई ऐसी चीज़ें हैं, वो कहाँ जा सकती हैं, कहाँ पे बात कर सकती हैं इस विषय पर?
0: एक ICC सेल होता है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, जिसको आंतरिक शिकायत समिति भी कहा जाता है, जिसके अनुसार 10 से या उससे अधिक कर्मचारी जहाँ पे भी कार्यरत होते हैं वहाँ प्रत्येक एम्प्लॉयर के लिए ICC का गठन करना अनिवार्य होता है। यदि किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होता है तो वह ICC के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकती है। ICC दोनों पक्षों की बात सुनती है, साक्ष्यों की जांच करती है, शिकायतकर्ता की पहचान यहाँ पे गोपनीय रखी जाती है, डिस्क्लोज नहीं होता है, और अंत में अपनी रिपोर्ट एम्प्लॉयर को देती है। और यदि संस्था में ICC नहीं है अथवा शिकायत स्वयं नियोक्ता के विरुद्ध है तो महिला जिला स्तर के गठित लोकल कमिटी के समक्ष भी शिकायत कर सकती है।
1: जी विनीशा जी, यहाँ पे हमने बात करी कि एक एस्टेब्लिश्ड ऑफिस है या कोई एक वर्क प्लेस है। लेडीज ऐसी जगहों पे सिर्फ काम नहीं कर रही हैं जहाँ पे एक एस्टेब्लिश्ड वर्क प्लेस है, परचून की दुकान पे भी काम कर रही हैं, वो किसी की पर्सनल असिस्टेंट भी हैं, या किसी ने घर में ऑफिस खोला है तो वहाँ पे भी काम कर रही हैं। तो इस तरीके की महिला को अगर असुरक्षा की भावना हो तो वो कहाँ पे जाके शिकायत कर सकती है और कहाँ से कानूनी मदद पा सकती है?
0: जी, ये पॉश एक्ट जो है ये सभी तरीकों की महिलाओं के लिए बना हुआ है। इसमें क्लाइंट, कस्टमर्स सब आ सकते हैं और अच्छा, आप सब इसमें शिकायत कर सकते हैं।
1: यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? ये मतलब फिजिकल है, कहीं पे ऑफिस बना है या ऑनलाइन है, ये क्या चीज है ये?
0: देखिए, अगर आप किसी संस्था में हैं तो आप ICC में, आप इंटरनल कंप्लेंट कमिटी में अपनी लिखित शिकायत दे सकती हैं।
1: जी।
0: यदि घटना किसी गंभीर आपराधिक अपराध की श्रेणी में आती है तो पुलिस में भी शिकायत की जा सकती है।
1: जी,
0: महिलाओं को ये समझना होगा कि सम्मान पूर्वक कार्य करना उनका अधिकार है, किसी की कृपा नहीं है ये। और मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगी कि यदि संभव हो सके तो आप ऐसे ईमेल, व्हाट्सएप चैट या ऑडियो वीडियो जो भी हो, ऐसे साक्ष्य को सुरक्षित करके रखें जिससे कि आपके प्रूफ के लिए काम आए।
1: विनीशा जी, आप एक अधिवक्ता हैं और आए दिन आपके सामने इस तरीके के केसेस आते रहते होंगे। इन केसेस में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होती हैं, क्या औरतों को फेस करनी पड़ती हैं, क्या उसका आउटकम होता है, क्या वाकई उन्हें न्याय मिल पाता है?
0: मेरे विचार से सबसे बड़ी चुनौती कानून की कमी नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं, मैंने आपको कुछ कानूनों के उल्लेख भी किए हैं। सबसे बड़ी चुनौती है जागरूकता की कमी। कई बार महिलाएं अपने अधिकारों को जानती ही नहीं है।
1: जी,
0: कई बार वो परिवार की बदनामी के डर से या फिर आर्थिक डिपेंडेंसी उनकी होती है अपने परिवार के ऊपर, समाज के दबाव के कारण, बच्चों के भविष्य की चिंता करके, ये सब कारण की वजह से महिलाएं शिकायत ही नहीं कर पाती। दूसरी ओर समाज को भी ये समझना होगा कि महिलाओं का सम्मान केवल कानून का विषय ही नहीं बल्कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है।
1: बिल्कुल, कहा जाता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यहाँ पर भी मैं वही बात कहना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहेंगी कि किस समय महिलाओं को सचेत हो जाना चाहिए और अपना पहला कदम उठा देना चाहिए?
0: मैं महिलाओं से कहना चाहूंगी कि उनको शुरू से ही सचेत ही रहना चाहिए, उनको अपने अधिकारों की जानकारी जरूर रखनी चाहिए। अन्याय को आप नॉर्मल मत समझिए, यदि आपके साथ कुछ गलत व्यवहार होता है तो कभी भी चुप मत रहिए, समय पर उचित मंच पर शिकायत कीजिए। कानून और सुरक्षा सम्मान के लिए बना हुआ है। और समाज से भी मैं ये कहना चाहूंगी कि बेटियों को मजबूत बनाइए, लेकिन बेटों को महिलाओं का सम्मान करना भी सिखाइए। महिला सुरक्षा केवल कानून से नहीं आएगी, जब परिवार, विद्यालय, आपका कार्यस्थल और समाज मिलकर महिलाओं के सम्मान की संस्कृति को विकसित करेंगे तभी हमारे देश वास्तव में सुरक्षित और सशक्त बन पाएगा।
1: और विनीशा जी, ज्यादातर महिलाएं जानती ही नहीं हैं कि वो किस कानून में हेल्प ले सकती हैं या किस कानून में जो उनकी प्रॉब्लम है वो आती है। एक नॉर्मल जो महिला है, वो जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उसको एक जनरल अवेयरनेस कहाँ से हो?
0: तरीके तो यही, आपने जैसे मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और कुछ मैंने आपको कानूनों के बारे में जानकारी दी, उस तरह से न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी आता है और आजकल तो बहुत सारी आपको सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत सारा ज्ञान मिलता रहता है। हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आपको कोई दिक्कत होती है आप महिला हेल्पलाइन नंबर पे, आप थाने में जाइए, आप अपनी अधिवक्ता से संपर्क करिए। आपके यहाँ पे हाईकोर्ट भी है, सिविल कोर्ट भी है, तो आपको कोई इस तरीके की प्रॉब्लम होती है हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, आप वहाँ पे जाके अपनी शिकायत

0: को दर्ज कराइए। चुप
1: जी
0: बैठ के रहना कोई चीज का निवारण अपने आप स्वयं तो नहीं होगा, आपको आगे आना पड़ेगा, अपनी परेशानियों को बताना पड़ेगा, आपको उचित मंच पे अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा।
1: जी।
0: जब तक आप ये नहीं करेंगे आपको हल नहीं मिल पाएगा।
1: बिल्कुल।
0: तो मैं यही कहना चाहूंगी कि न्याय की शुरुआत अदालत से ही नहीं होती बल्कि जागरूकता से होती है। जब महिलाएं अपने अधिकार को जानेंगी समझेंगी, समाज उनका सम्मान करेगा और कानून का सही उपयोग होगा, तभी एक सुरक्षित, समान और न्यायपूर्ण भारत का निर्माण होगा।
1: बिल्कुल विनेशा जी, हमारी आज की इस बातचीत में जो बात मेरे समझ में आई और जो बात मैं यहाँ से सबके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है कि बिल्कुल मत घबराइए। अगर आप जरा भी तकलीफ महसूस करती हैं तो आवाज उठाइए। अगर आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं जा पा रही हैं, चल के सहायता लेने कहीं पे नहीं जा पा रही हैं, तो जो आपके पास है उससे बात करिए, वो आपको रास्ता दिखाएगा।
0: तकलीफों के बारे में बताइए, अगर आपके साथ कोई वायलेंस हो रहा है, कोई सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, तो उसके बारे में खुल के आगे आए, आप चुप ना बैठे।
1: और इन्हीं शब्दों के साथ में आज की इस बातचीत को समाप्त करती हूँ। आपका यहाँ आने के लिए विनीशा जायसवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी बहने सुन रही थी महिला सुरक्षा कानून जागरूकता और चुनौतियाँ, इसमें बातचीत कर रही थी विनीशा जायसवाल जी और तनु आर्या जी, और इसके प्रस्तुति करता थे अभय कांत तिवारी जी।
3: महिला सुरक्षा की जो बातें हो रही थी, इनके कानूनी पहलुओं, हमारी जागरूकता और समाज के सामने खड़ी चुनौतियों पर कितनी सटीक और सरल जानकारी दी, इसके लिए हम विनीशा जायसवाल जी के बहुत बहुत आभारी हैं।
2: वाकई रोशनी, आज की इस पूरी चर्चा ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि स्त्री सशक्तिकरण केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाली यात्रा है।
3: बिल्कुल,
2: है ना?
3: और इस कहानी को मुकम्मल तभी बनाया जा सकता है जब हमारी बेटियां और महिलाएं अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक हों, अपने कानूनी अधिकारों को जान लें और समाज उन्हें एक बिना डर वाला सुरक्षित माहौल दे।
2: भाई तो श्रोताओं, बस यही कहूंगी कि सशक्तिकरण की शुरुआत आपके अपने घर और आपकी अपनी सोच से होती है ना, और अपनी बेटियों को उड़ने के लिए आसमान भी दीजिए और उन्हें खुद की सुरक्षा भी ढाल दीजिए, है ना? और इन्हीं सब बातों की खूबसूरत बातों और अंदाज से आई सुनाते आप सबको एक सुंदर सा गीत।

0: पूरी जो चर्चा करी है वो सशक्तिकरण की बात की है, और हम जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान बाहरी दुनिया, अधिकारों और कानूनों पर होता है, लेकिन असली सशक्तिकरण की नींव हमारे भीतर छिपी ऊर्जा में होती है। हमारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें थामती है, और एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें आगे बढ़ने की रफ्तार देती है। आज के भोर सेगमेंट में हम इसी आंतरिक शक्ति की बात करेंगे। जब तक हमारे भीतर की ये ऊर्जाएं आपस में नहीं मिलेंगी ना, तब तक जीवन में ठहराव नहीं आएगा। आइए इस रिकॉर्डेड चर्चा के माध्यम से समझते हैं कि एनर्जी का संतुलन हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है।
1: तो इस खूबसूरत चर्चा में बात करेंगे हम सशक्तिकरण तभी पूरी। आइए सुनते हैं एनर्जी का संतुलन। बात कर रही हैं नेहा गुप्ता जी से, तनु आर्या।

0: तनु, आपने इन दिनों एक बात बहुत सारे लोगों को कहते हुए जरूर सुना होगा
1: क्या?
0: कि भाई इनसे मिलो तो खुशी मिलती है और इनसे मिलो तो इनकी वाइब बहुत खराब है, गिरफ्त में आ जाते हैं या हम भी वैसा ही महसूस करने लगते हैं, या फिर एनर्जी लेवल की बात सुनी होगी। मैंने भी इस तरह की बातें सुनी। मैं एक और बात से रूबरू हुई।
1: क्या?
0: ब्रूसली को मैं सुन रही थी, बहुत अच्छे मार्शल आर्टिस्ट रहे। उन्होंने एक बात कही, क्या आप जब चाहें अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं या रोक सकते हैं? अगर आप ये करने में सफल होते हैं तो आप कहाँ हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप दुखी लोगों के बीच बैठे हुए हैं कि सुखी लोगों के बीच बैठे हुए हैं, या क्रोधी लोगों के बीच बैठे हुए हैं, या वो आपका एनर्जी लेवल डाउन कर देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है, या वो आपको छींटाकशी करते हैं या डीमीन करने की कोशिश भी करेंगे, यकीन मानिए आप पर उनका कोई असर नहीं होगा। ये बात आपने इधर बीच कभी सुनी?
1: सुनी भी है नेहा जी, और महसूस भी करी है। जब किसी के साथ आप मिलके लौटिए तो वो लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा गया, और किसी के साथ आप खड़े रहिए तो लगता है कि जल्दी भागो यहाँ से। या तो शायद हम उतना ज़्यादा खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं उससे, और या तो शायद उस इंसान की एनर्जी लेवल बहुत हाई है। तो यहाँ पे देखिए, समझने वाली बात यह है कि हम अपनी एनर्जी लेवल को ऐसा रखें कि हमारे सामने वाला हाई हो लो ना हो, है ना?
0: यस, देयर इज टू थिंग्स। जैसे आपने कहा कि अगर हम सामने वाले से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो दैट मीन्स कि उसका एनर्जी लेवल हाई है, और आपने फिर ये बात कही कि हम अपना एनर्जी लेवल हाई रखें ताकि हम इन्फ्लुएंस ना हो।
1: हाई मीन्स पॉजिटिव।
0: पॉजिटिव,
1: हाँ।
0: यस यस, पॉइंट टू बी नोटेड। अब बहुत लोग क्रोधी होते हैं, बहुत लोग उदास भी होते हैं।

0: एंग्जाइटी इसे ग्रसित भी होते हैं, उनका भी एनर्जी लेवल नेगेटिवली बहुत हाई होता है।
1: हमें यहां पॉजिटिवली उनको सुपरसीड करना है।
0: यस, पॉइंट टू बी नोटेड कि यहां पे सुधीर श्रोताओं, सबसे पहले तो मुझे लगता है सहज होना बहुत जरूरी है कि लोग कहते हैं इनसे बात करो, उनसे बात मत करो, इनका हाई है या लो है या जो भी। जब हम बहुत सहज हो जाते हैं, देखिए उस ईश्वर की संतान आप भी हैं, वो भी हैं, हम भी हैं, सब हैं। अगर हम ये मान लें कि ईश्वर इनमें भी निवास करता है और हम उनसे दूर भागने की बजाय टू द पॉइंट बात करें, टू द पॉइंट, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें एनर्जी का संग्राम कभी होने वाला है।
1: बिल्कुल नेहा जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए, एनर्जी इंटेंगलमेंट की शुरुआत कहाँ से होती है? जब हम किसी के संपर्क में आए, तो एनर्जी एक्सचेंज करने से पहले हम एक सुधी श्रोता बन के समझने की तो कोशिश करें कि सामने वाला किस मेंटल स्टेट में है, या वो क्या बात करना चाहता है, या वो हमसे रिटर्न में क्या चाहता है, हम किस तरीके से उसको हील कर सकते हैं, या अगर हमें खुद हीलिंग की जरूरत है तो हम किस तरीके से सामने वाले को सहजता से अपनी बात समझा सकते हैं ताकि वो हमें सही राय दे सके। मतलब एनर्जी लेवल का एक परफेक्ट बैलेंस पहले बनाएं, उसके बाद कॉन्वर्सेशन में जाएं।
0: आपकी बातों से मुझे एक बात मिली है, बहुत महत्वपूर्ण लग रही है।
1: हाँ?
0: जैसे सपोज करिए कि दो लोग मिले, ए और बी, एक कॉमन है, उनका न एनर्जी लेवल बहुत हाई है न लो है, और एक जिनका एनर्जी लेवल हाई है लेकिन नेगेटिवली, क्या हम बात करते समय जरूरी है कि जज करें?
1: बिल्कुल नहीं।
0: क्या जरूरी है कि हम एनर्जी को एक्सचेंज करें? अगर हम सहज होकर टू द पॉइंट अपना काम करते हैं, हमारे मन मस्तिष्क में अपना पाथ निर्धारित है, हम उस पाथ के अकॉर्डिंग ही अगर काम करते हैं, यकीन मानिए कोई भी ऊर्जा आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। इनफैक्ट जब आप जज करना छोड़ेंगे तो शायद सामने वाले के भी बात इनडायरेक्टली ये कन्वे हो जाती है कि कोई ऐसा इंसान है जो मुझे जज नहीं कर रहा, वो भी सहज होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा है?
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: हाँ,
0: तो जरूरी है सुधीर श्रोताओं, जब कभी इस तरह का माया जाल आपको सुनने को मिले, वहीं पे मन को थोड़ा शांत करना है, ऊपर वाले का ध्यान करना है। ठीक है, हम किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, कई बार हम अच्छा महसूस करते हैं, कई बार अच्छा नहीं भी महसूस करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कोई बात नहीं। तो जब ऐसा हो, ऊपर वाले को याद करिए, एकदम सहज हो जाइए, और जज करना लोगों को मन मस्तिष्क में ये बात भी मत रखिए,
1: बिल्कुल,
0: कि इनके एनर्जी लेवल बहुत हाई है, इनकी लो है, इनकी मीडियम है, क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता
1: बिल्कुल,
0: है।
1: ऊपर वाले को याद करना है अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी। साक्षी भाव से होकर अपनी भी बात कहनी है, सामने वाले की भी सुननी है। कुछ करने लायक है, आप कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो आप उसको कंसोल करो, प्रार्थना करो, ऊपर वाले से जुड़ो और उसको भी वही रास्ता दिखाओ।
0: बिल्कुल।

श्रोता सुन रही थी भोर सेगमेंट के अंतर्गत एनर्जी का संतुलन, बात कर रही थी नेहा गुप्ता जी और तनु आर्या। इस खूबसूरत चर्चा से तो एक बात साफ है, सशक्तिकरण तभी पूरा होता है जब कानून हमारे हाथों को मजबूत करे और आंतरिक ऊर्जा का संतुलन हमारे मन को शांत रखे। अपनी ऊर्जा को पहचानिए, उसे संतुलित कीजिए और अपने जीवन में एक नई भोर की शुरुआत कीजिए। और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, इसके लिए आप हमें मैसेज कर सकती हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। आपको हमारे कार्यक्रम में क्या कुछ और नई चीज़ें चाहिए वो भी आप हमें बता सकती हैं। आज जो बातें की हम लोगों ने, महिला जो सुरक्षा की चुनौती, जागरूकता, विनीशा जायसवाल जी की जो बातें हुई उस पर आपने कितना कुछ जाना समझा, अपनी राय भी ज़रूर दे सकती हैं, ऑडियो अपनी दे सकती हैं और उस कार्यक्रम को, उस ऑडियो को हम अपने कार्यक्रम में

0: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधु के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन

0: के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
0: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
1: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: To put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
1: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: I appeal to members across all sides of the house to uphold the dignity, discipline and decorum of this august institution. While differences of opinion are integral to parliamentary democracy, they must be expressed in a manner that preserves the sanctity of the house.
1: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
4: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in

0: स्क्रीन पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित चार अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440,42,00,000 रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: मोल्दोवा की पहली राज्य की यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: अमेरिका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमेरिका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई 3 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज 4 धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और 4 धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत

0: भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले 2 दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: शब्द तभी अमर होते हैं जब वे केवल लिखे नहीं जाते बल्कि जिए भी जाते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश काले इस सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
1: और बड़ोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का संदेश आया है, लिखते हैं,
2: नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प जानकारी प्रदान की, सुनकर हम अभिभूत हो गए। आपसे एक विनम्र निवेदन।

0: है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख पुलों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
1: जी, सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
0: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
1: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं?
0: इसका उत्तर है साथियों, कंगारू के चार पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पांच पैरों से चल रहा हो। इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के पांच पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
1: जी, तो श्रोताओ अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
0: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पटियाओं पर पेंसिल नुमा नुकीली कील से लिखते थे, जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर यानी कीलों से लिखे हुए अक्षर।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं?
0: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं, जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
1: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
0: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओं, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
1: तो श्रोताओं अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। शीर्षक है

0: पर भी आप CIT NCERT को फॉलो करना न भूलें।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर, कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है। अति सुंदर। और तनिक उधर देखो, उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
2: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है।
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
6: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
4: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
6: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
4: क्यों दे दो?
6: क्यों दे दो, ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। भाई, इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
4: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
6: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब

0: राज दरबार में ही होगा।
1: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
2: महाराज की जय हो,
3: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
1: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
4: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
5: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
4: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
6: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
4: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
6: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
5: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
6: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
4: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
7: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
4: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
7: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
1: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
8: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा गद्दी पे बैठ कर
9: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
8: इसके पास नहीं जा रहा है।
7: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
5: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
1: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
7: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
6: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
1: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
4: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात

0: देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
1: महाराज की जय हो,
2: महाराज की जय हो,
3: महाराज की जय हो।
4: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता, रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए हैं। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि, अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहद अरण्यक उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अहम् ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम् असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरुपिता और शिष्य पुत्र के बीच।

पौराणिक उपनिषद चांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है।

पिता उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेतकेतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।

0: वत्स श्वेत केतु।
1: आज्ञा तात।
0: क्या तुम उस ज्ञान से अवगत हो जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं और जो हमें जानना आवश्यक है?
1: तात, मैं उस ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगा

0: उद्दालक श्वेत केतु को फूलों के एक उद्यान में ले जाते हैं।
1: श्वेत केतु जी, पिताजी, क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
2: हाँ हाँ तात।
1: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं?
2: नहीं तात।
1: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
2: जी तात, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
1: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है।
2: जी तात।
1: उसी ब्रह्म को तत्वमसी कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है।
2: जी,
1: उसी से उसका अनुभव होता है, किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है।
2: जी पिताजी।
1: वो उससे दूर है, वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उससे

0: वत्स श्वेत केतु।
1: जी तात।
0: क्या तुम जानते हो हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वो विद्यमान है?
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: राह पलतात।
1: वत्स, अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो।
0: जी पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
1: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
0: जी
1: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो?
0: अब नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
1: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है?
0: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
1: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वं तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है, तत् त्वम् असि।
0: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि।
1: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बजने को हैं। हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है। अगली सभा में 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए हमारे विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। नन्हे मुन्ने सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

0: बच्चों जय हिंद। बच्चों आज हमारे साथ है रोशनी दीदी
1: और मेरे साथ है शारदा दीदी।
0: दीदी देखो ना, आज हम फिर आ गए अपनी नन्हे दुनिया कार्यक्रम में अपने नन्हे मुन्ने साथियों से।

0: मिलने, है ना।
1: दीदी एक बात तो है, हमारे नन्हे साथियों को कहानियां बहुत पसंद है, खास तौर से नानी और दादी की, और ऐसी ही एक कहानी हमारे पास भी है।
0: हाँ बच्चों, एक बार की बात है कि एक गांव में एक परिवार रहता था, लेकिन बच्चों को सबसे ज्यादा अपनी दादी और नानी से प्यार होता है ना रोशनी
1: दादी
0: दीदी।
1: और नानी बच्चों को अपने पोते पोतियों की कहानियां सुनाया करती थीं और साथ बैठकर पुरानी यादों को साझा करती थीं और उन्हें अद्भुत कहानी आती भी थी।
0: और बच्चों, एक दिन छोटे छोटे पोते पोतियों के साथ दादी माँ बैठी थी और उनकी आंखों में बड़ी ही उत्सुकता थी कि वे अपने बच्चों को कुछ बताना चाहती थी कि उनके बचपन में कौन सी खास खास यादें हैं। और बच्चों, दादी मुस्करा रही थी और अपने नन्हे साथियों को, नन्हे बच्चों को, अपने पोते पोतियों को वो कहानी सुनाना चाहती थी। फिर तो उनके एक छोटी सी वो बताने लगी अपने नन्हे बच्चों से, मतलब उनके जो पोती पोती थे उनको बताने लगी कि बच्चों, जब मैं छोटी थी तो मेरी एक छोटी सी सहेली थी जिसका नाम था किरण, और हम दोनों स्कूल साथ साथ जाते और साथ साथ लौटते थे, और लौटते समय वो रास्ते में खेला करती थी। एक बार उनके आते आते रास्ते में एक बड़ा सा बागीचा पड़ता था और वहीं पास में झील बहता था, जहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर से छोटे से नन्हे से फूल का पौधा लगाए थे, जिसे वे दोनों देख करके बहुत खुश होती थी कि हाँ, वे पौधे लगाए हैं और देखो उसमें फूल आ गया। और वे सोचते थे कि सच्ची दोस्ती हमारी कैसी है, अपनी दोस्ती को याद करती थी कि कभी हम भी छोटे थे और हमारी नन्ही सहेली थी जिससे हम कितनी घनिष्ठ मित्रता रखते थे, और उन्हीं के साथ हम छोटे पौधे भी फूल का लगाए थे। दादी की बातों को सुन करके बच्चे बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि वे भी अपने दोस्तों को हमेशा ईमानदारी से अपने दोस्त बनाए रहेंगे और उनसे उनकी दोस्ती मजबूत बनाए रखेंगे। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, वो बताने लगी दादी कि जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरे पास एक सपना था, मेरा एक सपना था कि मैं हमेशा आसमान में उड़ना चाहती थी, लेकिन गांव में उड़ने के लिए कोई हवाई जहाज़ नहीं था। एक दिन मैंने अपने दोस्तों के साथ एक छोटा सा कागज़ का पतंग बनाया और उसे आसमान में उड़ाया। मैंने पाया कि छोटे सपने भी अगर सच्चे दिल से पूरे किए जाए तो वे बड़े ही बन जाते हैं। बच्चों, दादी से बच्चों ने ये सीखा कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता और मेहनत से उसे वो सपना पूरा किया जा सकता है। जैसे कि दादी माँ ने अपने हाथों से छोटा सा पतंग बनाया और आसमान में उड़ाया। बच्चों, दादी माँ बताने लगी कि मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में बहुत काम होते थे। मेरी माँ कहती थी कि अगर सब काम मिलजुल कर करें तो जल्दी से हो जाते हैं। हम सभी लोग मिलकर घर का काम करते थे और एक दिन हम सभी ने मिलकर घर को खूब साफ किया, इतना साफ किया, इतना साफ किया कि दीवारें जैसे चमकने लगी। तब से मैंने सीखा कि अगर सभी लोग मिलकर एक साथ काम करें तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाता है। बच्चों, बच्चों को दादी की ये बात बहुत प्यारी लगी और वो सोचने लगी कि वे भी घर के कामों में अपनी मदद करेंगे। दादी की कहानियाँ सुनकर बच्चों के मन में एक नई प्रेरणा आई, वे सब मिलकर अच्छे काम करने लगे, सपने पूरा करने और सच्ची दोस्ती निभाने का वादा करने लगे। बच्चों, जैसे जैसे दिन ढलने लगे दादी ने बच्चों की ये लगन प्यार देखकर उन्हें अपने हाथों से बड़े ही प्रेम से पकड़कर अपने गले लगा लिया। बच्चों ने दादी को प्यार से देखा और सोचा कि जब तक वे दादी के पास रहेंगे तब तक वे कभी भी हार नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि दादी की कहानियाँ हमेशा उनके साथ रहेंगी। तो देखा बच्चों कि दादी नानी की कहानियाँ कितनी अच्छी होती है। तो चलो बच्चों, इसी कहानी, नन्हे से कहानी के साथ आप सबको सुनाते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: दोस्तों, फिर आ गया वो दिन जब हमारी होती है आपसे बात और होता है आपके पसंदीदा गीतों का साथ।
1: इस बार का शुक्रवार यानी 24 जुलाई होने वाला है बेहद खास, क्योंकि शेर शाह की जाबाजी और बाटला हाउस का सस्पेंस लेकर आ रहे हैं हम आपके पास आपके अपने कार्यक्रम हेलो ग्रीन लक्ष्मी में।
0: तो अपनी फरमाइश के लिए हमें कॉल करिए 0532-2423-649 पर। हमारा एक और नंबर नोट करिए 0532-2970-462।
1: समय याद रखिएगा दोपहर 1:15 से 2 के बीच। तो आपके फोन कॉल्स का रहेगा हमें इंतजार।
2: तो दिन याद रखिए शुक्रवार 24 जुलाई को हेलो गृह लक्ष्मी कार्यक्रम के अंतर्गत फरमाइशी गीतों का ये सफर शुरू हो रहा है 1:15 से 2 तक। इस कार्यक्रम के लिए जब आप कॉल करें तो हमारा नंबर है 0532-2423-649 और दूसरा नंबर है 0532-2970-462। तो याद रखिए 24 जुलाई शुक्रवार को दीप्ति और कंचन के साथ फिर से मौजूद होंगे इस हेलो गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में। और क्योंकि हमारा नन्हे मुन्नों का कार्यक्रम है तो अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे बच्चों से कि दादी नानी की कहानियाँ जो होती हैं वो कितनी अद्भुत होती हैं, तो सच में शारदा दीदी इसकी महिमा तो बहुत ही महान होती है। ये जो दादी नानी होती हैं यही हमें कल्पना करना सिखाती हैं और इनकी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर ही। क्योंकि याद करिए बचपन में जब भी कभी दादी हमें कहती थी कि देखो चांद पर वो बुढ़िया सूत काट रही है या चंदा मामा कहकर जब रिलेट करती थी, तो इन्होंने ही हमारे अंदर ये बीज बोया है कि हम भी चांद पर जाकर कुछ देखें वहाँ पर कौन बैठा है, कैसी बूढ़ी माँ वहाँ पर बैठी है।
3: बिल्कुल।
2: तो ये जो मजबूत इच्छा शक्ति है शायद दादी नानी की कहानियों से हमें मिला जो आज हम इंसान चांद पर

0: पहुंच गए हैं। और शारदा दीदी, क्यों आज हम चांद की बात कर रहे हैं? क्योंकि आज 20 जुलाई है और चंदा मामा के इतिहास का सबसे बड़ा दिन, क्योंकि आज पूरी दुनिया इंटरनेशनल मून डे मना रही है। ये जिस पर यहाँ जहाँ पर जाने पर सिर्फ हम सपने बुनते थे, आज ही के दिन सन 1969 में इंसान ने सचमुच वहाँ पर अपना पहला कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग नाम के अंतरिक्ष यात्री अपोलो 11 रॉकेट से सचमुच चांद पर पहुँच गए थे और दादी नानी की कहानियों वाले चांद को छू लिया था। दादी नानी की कहानियों ने जो कल्पना का बीज बच्चों के दिल में बोया था, उसे विज्ञान ने सच कर दिखाया। और आज तो हमारा देश भारत भी चंद्रयान 3 के जरिए चांद की दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच चुका है। इस डिजिटल युग में हमारे बच्चों के पास दादी नानी की दी हुई कल्पना की ताकत भी है और विज्ञान की भी। इस बात पर देश के वैज्ञानिकों के लिए एक बार फिर से जोर से बोलते हैं हम लोग, जय हिंद। दादी नानी की कहानियाँ केवल टाइम पास नहीं होती हैं, वो बच्चों को संस्कार देती हैं।
1: बिल्कुल दीदी, वैसे कुछ बात और भी है, जो कि नील आर्मस्ट्रांग जब वहाँ गए तो उन्हें सत्य दिखा कि भाई वहाँ तो कोई बूढ़ी दादी नहीं थी जो बैठ के सूत कात रही हो, है ना। हाँ। और ना ही चांदी चंदा मामा थे छोटे गोल मटोल, भाई वहाँ पे तो धूल भरी जमीन थी जो कि बहुत ही ग्रे कलर की धूल थी। और बच्चों, वहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कम होता है, जो कि एक जहाँ का धरती का छठा भाग होता है जिसमें, और वहाँ पर चल आवाज़ तो बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ती क्योंकि वहाँ पर वायु ही नहीं है। और वायु ना होने के कारण केवल सूर्य की रोशनी से चंद्र की सतह तो दिख रही थी, पर उसका आसमान पूरी तरह से काला काला से दिख रहा था। और बच्चों, वहाँ से चंद्रमा से यानी कि हमारी धरती जो है बिल्कुल जैसे कांच का कोई बॉल हो उस तरीके से नीला और सफ़ेद रंग का रंग लिए चमचमाती हुई दिख रही थी। भाई ये कल्पनाएं तो आर्मस्ट्रांग ने उन्होंने जो कि अपने शब्दों में बताया, और उन्होंने कहा कि ये एक मानव मात्र का एक छोटा कदम चंद्रमा तक नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी मानव की छलांग है जो आज सफल हुए हैं।
0: शारदा दीदी, दादी नानी की कहानियां केवल टाइम पास नहीं थी, वो बच्चों को संस्कार देती हैं, जीवन की सीख देती हैं और उनके सपनों को पंख देती हैं ताकि वो चांद तारों तक पहुंच सके।
1: बिल्कुल। और दीदी, नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने बताया कि चांद की सतह का रंग बहुत ही सतह पे मतलब कि जैसे कि धूल पाउडर जैसे हैं और उसका कलर ग्रे कलर का है। वहाँ का आसमान हमेशा काला दिखाई पड़ता है और मतलब पूरी धरती से चंद्रमा पूरी तरह से भिन्न था कि हम जो कल्पनाओं से देखते हैं सोचते हैं कि भाई वहाँ से भी सूरज दिखेगा, यही वहाँ से भी हम वायु है सांस ले सकेंगे, या वहाँ एक छोटी सी बूढ़ी दादी जो बैठ के सूत काटती है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकदम विज्ञान की तो सत्यता ही अलग होती है।
0: बिल्कुल, वहाँ पर निर्वात है, वैक्यूम है, वहाँ पर जब हम क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं है तो वहाँ पर हम चल नहीं पाते हैं ठीक से, और कुछ खाना भी होता है तो वो ना आकाश में उड़ रहा होता है, तो बहुत मुश्किल होती है वहां पर लोगों को चलने में और ये सारी चीजें करने में।
1: बच्चों, आज के दिन ही यानी कि 20 जुलाई आज ही के दिन 1969 को चंद्रमा पर मानव ने अपना पहला कदम रखी, तो वह एक ऐतिहासिक पल पूरी दुनिया के लिए अकाल्पनिक रोमांच से भर गया, गर्व से भर गया। बच्चों, नील आर्मस्ट्रांग के अनुसार उस समय का अनुभव ही एक नई दुनिया के में मतलब कि नई दुनिया के जागने का एहसास था।
0: तो बच्चों, कहानियों, कल्पनाओं और सपनों का यह सुंदर सफर यूं ही चलता रहेगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए
1: जय हिंद।

0: नन्हे मुन्ने सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम नन्ही दुनिया।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

By the studio clock, शाम के बज चुके हैं 5:15 and you have tuned आकाशवाणी प्रयागराज. नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग. मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट आरजे साक्षी और आप सुन रहे हैं आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम युववाणी. दोस्तों, बचपन में जब मम्मी कहती थी ना, वो देखो बेटा चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के, तो दिल को बड़ा सुकून सा मिलता था. लेकिन आज उसी चंदा मामा को देखकर हमारा इसरो कहता है, चंदा मामा दूर के नहीं, अब तो बस एक टूर के. जी हाँ दोस्तों, आज यानी 20 जुलाई को पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस यानी इंटरनेशनल मून डे. तो आज की शाम हम और आप मिलकर चलेंगे चांद की एक वर्चुअल सैर पर, जहाँ होंगे ढेर सारे सीक्रेट साइंस और कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. कहीं जाइएगा मत, बने रहिए मेरे साथ.

वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। क्या आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने साल 2021 में इस खास दिन को ऑफिशियल डिक्लेयर किया था? अगर नहीं पता है तो आज आपको पता चल ही गया है। लेकिन अब एक क्वेश्चन और है कि आखिर 20 जुलाई को ही क्यों चुना गया इंटरनेशनल मून डे के लिए? तो दोस्तों क्योंकि आज ही के दिन 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन के जरिए इंसान ने पहली बार चांद की ज़मीन पर अपने कदमों के निशान छोड़े थे। दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग का वो ऐतिहासिक सेंटेंस तो आपको याद ही होगा, दैट वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। यानी इंसान का वो एक छोटा सा कदम पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। लेकिन बॉस असली मज़ा तो अब आ रहा है। आज दुनिया के कई देश मून रेस में हैं, पर हमारे इंडिया ने जो कर दिखाया उस पर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। यानी इसरो ने, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चंद्रयान 3 मिशन के ने इतिहास रच दिया, जब इंडिया दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने चांद के अनछुए साउथ पोल पर तिरंगा फहराया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मून मिशन इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? दोस्तों यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स यानी UNOOSA के ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग इस दिन को मनाने का सबसे बड़ा मकसद है स्पेस एक्सप्लोरेशन और सस्टेनेबिलिटी में ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना।

दोस्तों, आपके लिए चांद से रिलेटेड कुछ मेरे पास मज़ेदार फैक्ट्स हैं। जैसे कि नासा के स्पिन ऑफ रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो मेमोरी फोम वाले कंफर्टेबल गद्दे और तकिए आज हम घरों में यूज़ करते हैं, या जो वायरलेस ड्रिल मशीन और वैक्यूम क्लीनर्स हमारे पास हैं, वो सब एक्चुअली स्पेस टेक्नोलॉजी की ही देन है। यानी चांद की खोज ने हमारी धरती की लाइफ को और आसान बना दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज रात जब आप बालकनी में जाएं और उस चमकते हुए खूबसूरत चांद को देखें, तो साइंस और इंसानी जज्बे को एक सलाम ज़रूर करिएगा। दोस्तों, इसी बात पर मुझे एक शायरी याद आ रही है। बेचैन इस कदर था कि सोया ना रात भर, पलकों से लिख रहा था तेरा नाम चांद पर। शायर की ये चांद पर नाम लिखने की ख्वाहिश लगता है पूरी ज़रूर होगी, क्योंकि दोस्तों, चांद पर इंसानों को भेजने और वहाँ उनका ठिकाना बनाने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा आर्टेमिस मिशन तैयार कर रही है। तो अब चंदा मामा दूर के तो नहीं रहने वाले, आपको क्या लगता है?

दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हमारे सेगमेंट प्रेरणा पुंज में हम एक ऐसी ही लेजेंडरी पर्सनालिटी की बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने फौलादी हौसले से इतिहास के पन्नों पर अपना नाम हमेशा के लिए रख दिया। एक ऐसी महिला जिन्होंने पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्र में कदम रखा और देश की हर बेटी के लिए तरक्की का एक नया रास्ता खोल दिया। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जस्टिस एम फातिमा बीबी की। जब हम आज की तारीख में देश की सशक्त महिलाओं को देखते हैं तो हमें गर्व होता है, लेकिन सोचिए, आज से दशकों पहले जब महिलाओं के लिए घर से निकलना भी आसान नहीं था,

केरल के एक छोटे से कस्बे पतनमतिट्टा में 30 अप्रैल 1927 को एक बच्ची का जन्म हुआ। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बच्ची आगे चलकर भारत की न्याय व्यवस्था का चेहरा बदलने वाली है। दोस्तों, जस्टिस फातिमा बीबी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अव्वल थी और द हिंदू की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 1950 में वो पूरे लॉ कॉलेज में सभी विषयों में फुल मार्क्स लाकर डिग्री पूरी करने वाली पहली स्टूडेंट बनी और उसी साल बार काउंसिल का गोल्ड मेडल जीतने वाली भी पहली महिला बनी। इसके बाद 14 नवंबर 1950 को उन्होंने बतौर एडवोकेट अपना रजिस्ट्रेशन कराया।

में वो पूरे लॉ कॉलेज में सभी विषयों में फुल मार्क्स लाकर डिग्री पूरी करने वाली पहली स्टूडेंट बनी और उसी साल बार काउंसिल का गोल्ड मेडल जीतने वाली भी पहली महिला बनी। इसके बाद 14 नवंबर 1950 को उन्होंने बतौर एडवोकेट अपना रजिस्ट्रेशन कराया।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: दोस्तों, हम बात कर रहे थे एम फातिमा बीवी के बारे में। उनका असली ऐतिहासिक लम्हा आना भी बाकी था। दोस्तों, तारीख थी 6 अक्टूबर 1989, यानी 1989। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग इसी दिन जस्टिस एम फातिमा बीवी को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया, और इसी के साथ वो भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बन गई। सिर्फ यही नहीं, वो पूरे एशिया में किसी भी देश की सर्वोच्च अदालत की पहली महिला जज बनी। ये हमारे पूरे देश के लिए कितना बड़ा और अनमोल प्राउड मोमेंट था, है ना? और बात करें अगर आगे, तो सुप्रीम कोर्ट से साल 1992 में रिटायर होने के बाद भी उनका सफ़र नहीं रुका। उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC के मेंबर के रूप में काम किया, और बाद में वे तमिलनाडु की गवर्नर भी बनी। उनके इसी बेमिसाल योगदान के लिए भारत सरकार ने साल 2024 में उन्हें मरणोपरांत देश के प्रतिष्ठित सम्मान पद्म भूषण से भी नवाजा। जस्टिस फातिमा बीबी हमेशा कहती थीं कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वो कोई बैरियर तोड़ रही हैं, वो तो बस उस रास्ते पर चल रही थीं जिस पर उन्हें पूरा भरोसा था। वाकई वो हम सभी के लिए एक सच्ची प्रेरणापुंज हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जस्टिस फातिमा बीवी की लाइफ हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो दुनिया की कोई भी दीवार आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और दोस्तों, ब्रेक से पहले मेरा एक सवाल है आपसे, आपकी लाइफ का वो कौन सा बड़ा सपना है जिसे पूरा करने के लिए आप किसी भी दीवार को पार करने के लिए तैयार हैं? बताइएगा ज़रूर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने सपनों को उड़ान देते रहिए।

वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड रहता है और आपके लिए ये इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम रहता है, जहां अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको, जैसा कि ये यूथ ओरिएंटेड प्रोग्राम है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको हम ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन करें ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके, आपको कोई बहुत कुछ सीखने को मिल सके। हम जैसा कि हमारे अलग अलग सेगमेंट, जैसे चर्चा हो गया, प्रेरणा पुंज हो गया, तो हम अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग सेगमेंट्स के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें देने की कोशिश करते हैं और साथ में आप बोर भी ना हो इसलिए हम आपको म्यूज़िक का तड़का भी देते रहते हैं। इसलिए दोस्तों अभी वक्त हो गया है कि हम अपने अगले सेगमेंट पर बढ़ें, जो कि आप जानते हैं वो है प्रश्न का सेगमेंट। और इसमें हम कोशिश करते हैं कि आपसे ऐसे प्रश्न पूछें जो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सके। और हमारा जो कल का प्रश्न था वो था कि पहला ईमेल कब और किसने भेजा था। तो दोस्तों इसका उत्तर है, पहला ईमेल 1971 को रे टॉमिलसन ने भेजा था। ये संदेश एयरपनेट यानी एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क पर भेजा गया था, जो आधुनिक इंटरनेट का शुरुआती रूप था। और अगर हम आज के प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो हमारा आज का प्रश्न है कि दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है जो इतनी साफ है कि 40 मीटर नीचे तक देखा जा सकता है। और आप हमें अपना उत्तर भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, जैसा कि आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं, वो है yuvvani@gmail.com पर। फिर से सुनिएगा, yuvvani@gmail.com पर। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250 पर। तो दोस्तों ये तो रहा हमारा आज का प्रश्न सेगमेंट, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें अपना उत्तर ज़रूर भेजेंगे। अब वक्त हो गया है हमारे प्रोग्राम का एक और म्यूज़िकल ट्रैक।

दोस्तों, इन सुरीली यादों और मीठी मीठी बातों का ये खूबसूरत सिलसिला अब थमने की कगार पर पहुंचा है। कब वक्त पंख लगाकर उड़ गया पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा है जैसे अभी कल ही हमने हेलो कहा था और अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। दोस्तों, हर एक खूबसूरत मुलाकात की तरह इस सफ़र का भी यह अंतिम पड़ाव है, लेकिन कहते हैं ना, अंत सिर्फ एक नई शुरुआत का संकेत होता है। आज के इस सफ़र में हमने हंसाया भी, गुदगुदाया भी, कुछ पुरानी यादें ताज़ा की और कुछ नए गीत भी सुने। उम्मीद है आप सभी को हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा और आपने इसे उतना ही एंजॉय किया होगा जितना मैंने आपके लिए इसे होस्ट करने में किया है। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम जैसा लगा, आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें अच्छा फील होता है और हमारे अंदर एक नई एनर्जी आती है प्रोग्राम को और अच्छा बनाने का। तो हमारी ईमेल आईडी पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़रूर, और अगर आपका कोई सजेशन हो, आप प्रोग्राम में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यादों का ये कारवां यहीं रुकता है, लेकिन हमारा और आपका ये रिश्ता यूं ही कायम रहेगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी फ्रिक्वेंसी पर, आपकी और मेरी अपनी इस महफिल में। जाते जाते बस यही कहूँगी, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और हम सब इस खूबसूरत सफ़र का एक अहम हिस्सा है। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है कि मैं लूँ आपसे इजाज़त। तो मुझे यानी साक्षी पांडे को करिए विदा। नमस्कार।

युवा श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युव वाणी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।

गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवी बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण व्यवहार करने, किसी भी गैर कानूनी और हिंसक गतिविधियों में शामिल न होने और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों तथा कर्मियों द्वारा जारी किए गए कानूनी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। उच्चतम न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को यह निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि क्या अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जा सकता है। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से राम मंदिर चढ़ावा विवाद का राजनीतिकरण न करने को भी कहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि उसका काम सिर्फ उचित जांच सुनिश्चित करना है। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति मुर्मू ने किशिनोव में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि यह यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मॉल्दोवा की यह पहली राजकीय यात्रा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके इस यात्रा के दौरान आयोजित भारत मॉल्दोवा बिजनेस फोरम आर्थिक सहयोग को नई दिशा देगा। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की 8वीं बैठक आज से हो रही है। 2 दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण को आगे बढ़ाती है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में लोगों के साथ है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का विवरण। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। रात 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा, 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे दीनानाथ यादव और साथियों से लोकगीत और शोभनाथ से लोकभाषा कविता पाठ। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर कृपा शंकर पांडे की वार्ता होगी रीतिकालीन कविता के सरोवर। 8:30 बजे कानून और हम कार्यक्रम के अंतर्गत हर्ष बिहारी श्रीवास्तव की वार्ता होगी नए आपराधिक कानून एवं उनकी उपयोगिता। 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम कहकशा। ये थी आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब एक नजर कल के कार्यक्रमों पर। कल रात 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा। रात 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग। ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कल सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर शिशिर कुमार से की गई बातचीत सुनिएगा, दलहनी फसलों में शस्य क्रियाएं। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी की वार्ता होगी, बरसात में होने वाले प्रमुख त्वचा रोग और उनका निदान। सुबह 7 बजे सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन। दिन में 12:15 पर पंडित गोपाल दास का क्लैरियोनेट वादन और रात 10:30 पर पंडित नारायण राव व्यास का ख्याल गायन। सुबह 8:45 पर नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति सुंदरम तिवारी की। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे गीत और भजन। 9:50 पर मोहम्मद फिरोज अहमद के स्वर में और शाम 7:45 पर गार्गी द्विवेदी के स्वर में। 10:30 पर सुनिएगा लोकगीत। कलाकार होंगे जंग बहादुर यादव, संगीता राय और शशि बाला जैन। 12:30 पर हेलो फरमाइश, प्रस्तुति मधु कुमार की। कल दिन में 1:15 पर ग्रामीण बहनें सुनेंगी पनघट कार्यक्रम में सरोज सिन्हा से लोकगीत और अनुराधा कुमारी की वार्ता, वृक्षारोपण आज की आवश्यकता। साथ ही रसोई घर में जानेंगी चौलाई की सकौड़ा कैसे बनाएं। 2:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। शाम 5 बजे धरती के गीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे गुलाब सिंह यादव और साथी। 5:15 युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे दिनेश कुमार और साथियों से लोकगीत और विजय शंकर त्रिपाठी से रामायण पाठ। 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत दीक्षा पांडे का काव्य पाठ सुनिएगा। 8:15 पर चित्रपट संगीत और कल रात 8:30 सबरस। ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

इयं आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य प्रथम दिवसे नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणम् अधिकृत्य विपक्षी सदस्यानां सदने कोलाहलम्। उभयोः सदनयोः कार्याचरणम् आदिवसाय स्थगितम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आरम्भे राष्ट्रकल्याणाय क्रियाशील सत्रस्य आह्वानम् अकरोत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः किशिनौ राजधान्यां स्वस्य मोल्दोवा समकक्षया राष्ट्रपतिना मया संधु इत्यनया सह मण्डलस्तरीय वार्तां व्यदधात्। हॉर्मुज क्षेत्रे उत्पातस्य निरंतर वर्धनेन समीपस्थ देशेषु अस्य प्रकोपेण च ईरान अमेरिका देशयोः मध्ये अद्य नवम दिवसेपि परस्पराक्रमणानां चक्रम् अविरतं प्राचलत्। अपि च भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख उत्तराखंड राज्येषु

0: राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः तस्याः मेल्डोवियन समकक्षया मया संधु इत्यनया सह अद्य व्यापार निवेश कृषि स्वास्थ्य सेवा नवीकरणीय ऊर्जा अंकीय सार्वजनिक संरचना कृत्रिम बुद्धि नवोन्मेष इत्यादिषु प्रमुख विषयेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य दृढ़ीकरणाय ऐक्यमत्यं प्रकटितवती। चिशिनाव नगरे मंडलस्तरीय मंत्रणायाः अनन्तरं भाषमाणा राष्ट्रपतिः मुर्मुः स्वकीयां यात्राम् ऐतिहासिकीम् इति प्रत्यपादयत्। यतो ह्येषा कस्यापि भारतीय राष्ट्रपतेः मोल्डोवा देशाय प्रथमा राजकीय यात्रा अस्ति। द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य च संवर्धनाय सुदृढ संभरण श्रृंखलायाः सशक्तिकरणाय सहैव सान्द्र व्यापारिक संबंधानां प्रोत्साहनाय उभौ अंगीकृतवन्तौ। राष्ट्रपतिः मुर्मुः अवोचत् यत् भारत मोल्डोवा व्यापारिक मञ्चः आर्थिक सहयोगाय नूतनां गतिं प्रदास्यति। अनेनैव साकं राष्ट्रपतिः मुर्मुः मोल्डोवा देशम् आपत् प्रतिरोधी संरचना गठबंधने सहैव वैश्विक जैवेंधन गठबंधने सम्मिलितुं निमंत्रितवती। सामरिक दृष्ट्या अति महत्वपूर्णे होर्मुज जलसंधौ उत्तरोत्तरं प्रवर्धमाने संघर्षावधौ अद्य अविरतं नवम दिवसेपि अमेरिका ईरान देशयोः परस्परं भीषण सैन्य प्रहाराः अभवन्। अमेरिकी सैन्यैः ईरानस्य खोर्मोज नगरं लक्ष्यीकृत्य क्षेपणास्त्र प्रहाराः विहिताः। ईरानस्य अर्धसर्वकारीय वार्ता संस्थया कस्यचित् स्थानीय अधिकारिणः वचनम् उद्धृत्य निवेदितं यत् बुशेह्र प्रान्तस्य दष्टी मण्डलस्य प्राशासनिक केन्द्रे खोर्मोज नगरे अमेरिकी प्रहारेण बहुषु भागेषु विद्युत् प्रवाहः पूर्णतया अवरुद्धः अभवत्। वृत्तांतानुसारं अस्मिन् प्रहार क्षेत्रे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इत्यस्य नौसैन्य प्रतिष्ठानानि आसन्। अनेन सैन्य प्रहारेण खोर्मोज नगरस्य कतिपयेषु भागेषु तत्क्षणमेव विद्युत संभरण श्रृंखला बाधिता अभवत्। अपरत्र जॉर्डन देशस्य सर्वकारीय प्रसारण संस्थया सामाजिकांतरजालीय पटले निवेदितं यत् तस्य देशस्य वायुप्रतिरक्षाप्रणाल्या ईरानदेशात् जॉर्डन भूभागं प्रति प्रक्षिप्तानि त्रीणि क्षेपणास्त्राणि तथैव विनाशितानि। चतुर्थं क्षेपणास्त्रं जॉर्डन देशस्य दक्षिणदूरस्थक्षेत्रे पतितं, येन कापि जनधनहानिः न जाता। समाचारमाध्यमानुसारम् एतानि क्षेपणास्त्राणि जॉर्डन देशस्य दक्षिणतटीयनगरे अकाबा इत्यत्र स्थितान् अमेरिकी विमानस्थानकान् लक्ष्यीकृत्य प्रक्षिप्तानि आसन्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया संचेतना उद्घोषिता इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। ग्रामीण भाई सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम पंचायत घर।

0: राम राम।
1: कहो मनु भैया।
2: भैया ठीक बा हो, मुला देखा हो, दौ राजा भी खूब झमझमाए के बरसत बाट। आवाज तो हम देखे कि तू पंचायती में आवता तो एकदम भीग गए रहा।
1: अरे भैया अब देख हमार जोन बा ना धान जोन बा पछरिया रहा, तो हम आज निपटावा चाहत रहे कि देखो बारिशों का मौसम रहा, तो हमका भाई जितना भी हो सके आज अपन धान कर उपाय कह के तब आऊ हम पंचायती में।
2: भैया काहे नहीं हो, खेती किसानी का काम दुरुस्त रहता तो पंचायती में बैठल भी बढ़िया लागत।
1: हाँ
2: मुला देखा एक बात बताई
1: हाँ।
2: कि

0: अल्लाह देखा पंच भैया लोग भी, भैया काम बा, बुन्नी बरसात हो जात है, भीग जाते हैं लोग,
1: हाँ
0: लेकिन अगर भीग जाएं तो भैया थोड़ा सा सुरक्षित रखें, हैं ऐसा ना कि भैया कपार गील बा और
1: गीले
0: में कुल
1: रहे।
0: काम करते हैं, तो भैया पूछ लें, और थोड़ा सुरक्षित भी अपने आप के रखल बहुत जरूरी बा, हैं।
1: ए मनु भैया, अपन खिदका खेती किसान को मनाई है ही, अगर थोड़ा बहुत भीगब ना, माटी वोटी ना लगे ना, तो समझ में ना आए कि खेती किसानी कैसन होत बा
0: हाँ। नहीं
1: हो।
0: नहीं किसानी का आनंद तो यही में बा।
1: हाँ
0: और देखा जब बात बुन्नी बरसात का बान, तो एक बात बहुत जरूरी बा
1: हाँ
0: कि और जल संरक्षण बड़े भी जरूरी बा, साथे साथे अपने धान के फसल बदे रोपाई बदे भी जरूरी बा, कि भैया मेड़बंदी एकदम चौकस करे के जरूरत
1: तो
0: बा।
1: एकदम सही कहे हो मनु भैया कि अगर मेड़बंदी बढ़िया रहे ना, तो जौन ही बारिश होता, पूरा पानी जौन बा खेते में संरक्षित रहे, और वो पानी जमीन के अंदर रिसर रिसर जाए, अपन जलस्तर भी बढ़िया रहे। हाँ
0: जलस्तर भी बढ़िया रही। मूला का होता ना कि देखा अगर ऊंचाई कम बा मेढ़ का है तो पानी ऊपर ऊपर निकल जाता है।
1: हाँ
0: साथे साथे कुछ लोगों के भैया ये देखे में आओ था ना कि कौन भले छोड़ दी हैं मेढ़ छांट के एकदम पतील कर देते हैं कि एक ठे गोड़ रख के चले लायक नहीं रहते हैं। तो मेढ़ भैया बढ़िया रहे के चाहिए, चौकस रहे के चाहिए, आ खूब हम कहीं कि देखा फरुहा ले के हैं
1: हाँ
0: और गील मिट्टी चढ़ा ही दे चारों ओर से ओकरे,
1: बढ़िया एकदम मेड़
0: एकदम
1: हो जाए।
0: बढ़िया चढ़ा दे तो
1: अच्छा
0: पनिया खूब टिकत हो।
1: ए मनु भैया, पनिया तो जोन टिकत है यही बा, ओकरे अलावा जोन अपन लोग खेत रहाए हैं, पोषक तत्व तो बनाए हैं खेते का, वो भी बरकरार रहे ओकरे खेते में, वो पानी के संगे बहे ना।
0: हाँ पानी से के बहने। और कबो कबो ये देखे में आवत है कि मेड़ तो लोग छोड़े हैं, मेड़ छोड़े हैं भैया और जोतवाए दिए हैं लोग खेत, और राती का खूब झमाझम बरसात भय,
1: बह
0: और
1: गए तो
0: सवेरे लोग जाते हैं कि चला भैया धान रोपवाए दे हमें,
1: हाँ पाने
0: अब
1: नहीं दे
0: पानी ना है, कहे कि पानी तो कहीं से कटल बा मेड़ वहां से बह गए।
1: भाई।
0: तो भैया देखा हम कहीं कि एकदम सचेत रहे के जरूरत बा, बढ़िया मेड़बंदी करें, ओमन पानी टिकत है, वैसे अपन फसल भी बढ़िया हुई, साथे साथे जौन बात बताया ना कि जौन पोषक तत्व तो हैं भैया मृदा में
1: वो भी ये
0: वो
1: बरकरार
0: एकदम
1: रहे।
0: बिल्कुल बरकरार रहता, माटी का कटाव भी ना होता, तो ये पर विशेष ध्यान रखें। और एक बात और भैया,
1: बताओ बताओ भैया।
0: देखा आज का जौन दिन बा ना,
1: हाँ
0: आज बा भैया देखा 20 जुलाई,
1: हाँ और 20 जुलाई हवे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस,
0: शतरंज दिवस भैया देखा हो, भारत का शतरंज से बहुत गहरा रिश्ता रहा है,
1: बहुत प्राचीन समय से
0: बहुत
1: ही
0: प्राचीन
1: चौरस
0: समय से
1: और
0: हाँ शतरंज के कई रूप में यहाँ खेला जात रहा है।
1: हाँ
0: मुला देखा ई एक ऐसन खेल बा ना कि जौने में देह बल का प्रयोग बहुत कम होला। देखा ज़्यादातर जो खेत खेल हैं भैया वह मन शारीरिक गतिविधि ज़्यादा होते हैं, मुला ये खेल में देखा तो भैया जौने की दिमागी का खेल है।
1: दिमागी खेल है, पूरा पूरा दिमाग का
0: हाँ
1: प्रयोग
0: हाँ
1: बाय मन।
0: हाँ पूरा दिमाग का प्रयोग बा भैया यमन। आ हम तो कहीं कि देखा हो कुछ पंच भैया लोग कहिए कि अब वहीं तक शतरंज नहीं खेले तो अब का खेले। मुला हम कहीं कि तू नहीं खेला तो लइकन गदेलन के तो सिखाई सकत है।
1: अच्छा मनु भैया, एक महत्वपूर्ण बात कही हम शतरंज के लिए, कि आपन जोन भारत देश बा ना, शतरंज के खेल में निरंतर अपन प्रगति करता और नया नया कीर्तिमान, नए नए लड़का स्थापित करत हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और
0: भैया।
1: ग्रैंड मास्टर बनत हैं।
0: अरे तो भैया एक तरीके से अगर देखा ना तो
1: हाँ
0: प्राचीन रूप का उत्पत्ति अपने देशे से बाय कर है
1: हाँ
0: शतरंज का। और मुला भैया देखा 20 जुलाई के दिन जो है ना 1924 में भैया ये दिन पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का स्थापना
1: भर
0: भय
1: है।
0: रहा है, और वही के याद में ये मनावा जाता है। साथे साथ ये होता है कि जो भी शतरंज का खिलाड़ी है ना दुनिया भर का खिलाड़ी भैया वो कर आपस में मेलजोल करावा जाए। अब भैया देखा ये खेल में एक बात बताई,
1: बताओ
0: छोटवार
1: बताओ।
0: लेकिन गदेलन के ना शतरंज भी खेले खातिर प्रेरित करे चाहिए, काहे कि दिमागी का कसरत बहुत बढ़िया होते हैं, मन
1: हाँ
0: दिमाग का बहुत बढ़िया कसरत होते हैं।
1: इससे दिमाग भी बढ़े, लड़कन के
0: हाँ
1: सोचे समझे के क्षमता बढ़े, नए नए तरीका सोचे के क्षमता बढ़े, विचारवान हुए हैं लड़का।
0: बिल्कुल हम कही कि देखा जो पढ़ाई लिखाई में कहा जाता ना कि कोनो चीज़ का विश्लेषण करे का क्षमता,
1: हाँ
0: कोनो चीज़ का भैया चिंतन करे का क्षमता है कि कौने ढंग से ओके सोच सकत है, तो कहीं ना कहीं दिमाग जब विकसित हुई तो बुद्धि भी अपन बढ़ी, और
1: बढ़बे
0: वही के
1: करी।
0: साथ साथ भैया जो ना कि जौन जीवन में आवे वाला संघर्ष है भैया, जौन जीवन में आवे वाला चुनौती है, वैसे निपटे के क्षमता का विकास भी हुई है मन।
1: सही बात तो भैया, ये तो
0: तो
1: बहुत
0: भैया
1: सही
0: देखा
1: जानकारी दे आप। लेकिन मनु भैया, लगातार हम आप चंग बात बत कही तो होता, किसानों भैया लोग सोचे तो यार देखे बढ़िया मौसम अब बरखा का, और इन्हें दोनों लोग जो उनका कुछ गीत गनोई
0: ए
1: नहीं सुनाओ
0: भैया
1: थे। हाँ
0: देखा हो बरखा का तो पूरा व्यवस्था कई के लायक बटी है जान ला पंचायती में है
1: तो आज का कब
0: तब।
1: बताए
0: हाँ
1: पहले।
0: भैया हाँ एकदम देखा पूर्वी भी सुनावा जाए, मूला ओकरी पहले भैया एक ठे विकास गीत हो जाए पहले दीनानाथ यादव का आए,
1: हाँ
0: और देखा फिर लोक भाषा कविता पाठ भी बा वो हुई।
1: अच्छा
0: मूला देखा पहले दीनानाथ यादव का एक ठे विकास गीत हो जाए,
1: सुनो
0: ओकर
1: आए दे,
0: बाद
1: सुनो
0: आगे
1: आए
0: का
1: दे।
0: बातचीत हो।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ भैया, देखा गव नहीं हो गए,
4: साथ साथ सनेसा हो गए।
3: अब भैया देखा हो, कहा जाता ना कि खेती किसानी काम तो हमेशा लाग रहा था, हाँ, एक थे बोझा उतरत था, दूसर बोझा आ जाता
4: आ जाता।
3: मुला देखा किसानी के जीवन का यह आनंद बा और आनंद पूर्वक ही जीवन बितावे के चाहिए। यही लिए कहा जा कि गीत गवनई कविता पाठ एकर भी जीवन बड़ा महत्व होते हैं।
4: और मनु भैया अपने सबके जो लोकाचार बना इमन गीत गनोई के इतना महत्व बा और एक एक अपन जो आचार विचार और जो लोक परंपरा बा उ गवनई के माध्यम से जो प्रस्तुत किया जाता ना वो बड़ा ही सुंदर और कर्णप्रिय होता।
3: बिल्कुल बिल्कुल भैया, तो देखा हो लोक भाषा कविता पाठ बा शोभनाथ जी के हम कहीं की हके तुम सुना और पंचों सुने
4: सुनवा दे।
5: धरती के हरियर बनाई के चला सखी पेड़वा लगाई, धरती के हरियर बनाई के चला सखी पेड़वा लगाई, पेड़वा लगाई सखी पेड़वा लगाई, पेड़वा लगाई।

धरती के हरियर बनाई के चला सखी पेड़वा लगाई। लड़िका नाती सब सुख पई हई, आवे वाला कल मुसकई हई। लड़िका नाती सब सुख पई हई, आवे वाला कल मुसकई हई। अंगना मन मिया लगाई, अंगना मन

छैया द्वारा बैठे पीपल सैया, बाबूजी के गाढ़ी कमाई, बाबूजी के गाढ़ी कमाई के चला सखी पेड़वा लगाई, धरती के हरियर बनाई के चला सखी पेड़वा लगाई, धरती के सुघर बनाई के चला सखी पेड़वा लगाई, धरती के हरियर बनाई के चला सखी पेड़वा लगाई। चांदी कै कर धनिया दियाई दिया, चांदी

दियाई दिया चांदी कै कर धनिया दियाई दिया। देखी सहेली सब जरी जई हई, देखी सहेली सब जरी जई हई, गौआ के लोगन बतियाई हई। देखी सहेली सब जरी जई हई, गौआ के लोगन बतियाई हई। हमरो कई तू कदरिया बढ़ाई दिया, हमरो कई तू कदरिया बढ़ाई दिया, चांदी कै कर धनिया दियाई दिया। जब जब डोली

चुप के रनिया, जब जब डोली हैं हमरी कनिया, हमका कई हैं रूप के रनिया। सुन के बतियाई सैया लजाई दिया, सुन के बतियाई सैया लजाई दिया। चांदी कै कर धनिया दियाई दिया, चांदी कै कर धनिया दियाई दिया। लाली

नाचत मोर कमरिया नचाई दिहा, नाचत मोर कमरिया नचाई दिहा, चांदी कै कर धनिया दियाई दिहा।

0: कभी अगर मैं रूठूं तो क्या तुम मुझे मनाओगी, कभी अगर मैं रूठूं तो क्या तुम मुझे मनाओगी, जीवन के अंतिम सांसों तक क्या तुम मुझको चाहोगी। कभी अगर मैं रूठूं तो क्या तुम मुझे मनाओगी, जीवन के अंतिम सांसों तक क्या ऐसे मुझको चाहोगी। हृदय के अंतिम छोरों तक क्या ऐसे मुझे बसाओगी, हृदय के अंतिम छोरों तक क्या ऐसे मुझे बसाओगी। कभी अगर जो हारा तो क्या तुम साथ निभाओगी, कभी अगर मैं रूठूं तो क्या तुम मुझे मनाओगी, जीवन के अंतिम सांसों तक क्या ऐसे मुझको चाहोगी। बंधन सातों याद तुम्हें हो, बचन कहें जो याद तुम्हें हो, बंधन सातों याद तुम्हें हो, बचन कहें जो याद तुम्हें हो। कभी अगर मैं भूल भी जाऊं क्या तुम याद दिलाओगी, कभी अगर मैं भूल भी जाऊं क्या तुम याद दिलाओगी। कभी अगर मैं रूठा तो क्या तुम मुझे मनाओगी, कभी अगर मैं रूठा तो क्या तुम मुझे मनाओगी। एक दूजे को समझा लेंगे कम थोड़ा या ज्यादा हो, एक दूजे को समझा लेंगे कम थोड़ा या ज्यादा हो, कभी कोई ना वादा हो बस संग रहने का इरादा हो। रख कंधे पर हाथ मेरे क्या तुम गले लगाओगी, रख कंधे पर हाथ मेरे क्या तुम गले लगाओगी। कभी अगर मैं रूठा तो क्या तुम मुझे मनाओगी, कभी अगर मैं रूठा तो क्या तुम मुझे मनाओगी। कुछ पल तुम जो साथ चले हो हर पल साथ चलोगी क्या, कुछ पल तुम जो साथ चले हो हर पल साथ चलोगी क्या, जीवन की आपाधापी में मुझसे बात करोगी क्या। कभी गिरूं मैं ठोकर खाकर, कभी गिरूं मैं ठोकर खाकर क्या तुम मुझे उठाओगी, कभी गिरूं मैं ठोकर खाकर क्या तुम मुझे उठाओगी। कभी अगर मैं रूठा तो क्या तुम मुझे मनाओगी, कभी अगर मैं रूठा तो क्या तुम मुझे मनाओगी। धूप में ठंडी छाँव हो तुम, दुख में सुख का भाव हो तुम, धूप में ठंडी छाँव हो तुम, दुख में सुख का भाव हो तुम, सुंदर फूलों के बागों का एक सुगंधित गांव हो तुम, घर आंगन को तुम ऐसे ही हर पल क्या महकाओगी, घर आंगन को तुम ऐसे ही हर पल क्या महकाओगी। कभी अगर मैं रूठा तो क्या तुम मुझे मनाओगी, कभी अगर मैं रूठा तो क्या तुम मुझे मनाओगी। बिखर गए हो रूप भले पर, बिखर गए हो रूप भले पर मुझको सुंदर दिखती हो, बिखर गए हो रूप भले पर मुझको सुंदर दिखती हो, कभी प्रेम तो कभी वेदना इन आँखों में लिखती हो। मेरी लिखी हुई कविता को क्या तुम लय में लाओगी, मेरी लिखी हुई कविता को क्या तुम लय में लाओगी। कभी अगर मैं रूठ भी जाऊं क्या तुम मुझे मनाओगी, कभी अगर मैं रूठ भी जाऊं क्या तुम मुझे मनाओगी। जीवन के अंतिम सांसों तक क्या ऐसे मुझको चाहोगी, जीवन के अंतिम सांसों तक क्या ऐसे मुझको चाहोगी। कभी अगर मैं रूठा तो क्या तुम मुझे मनाओगी।
1: हाँ भैया,
0: देखा
1: देखा भैया,
0: भैया।
1: ये लोक भाषा कविता पाठ रही शोभनाथ का। हम कहें कि देखा हो जौन बुन्नी बरसात का बात चलत रही और खेती किसानी का बात चलत रही, तो देखा यह समय लोग नया बाग भी लगावत हैं, पेड़ भी लगावत हैं, लेकिन बरसात में जौन पुरान बाग हैं भैया,
0: हाँ, उनकर भी अच्छे से संरक्षण करे के आवश्यकता बा।
1: बिल्कुल, अगर सही ढंग से बरसात में होकर देखभाल ना हुई भैया, है ढंग से होकर कटाई छटाई ना हुई, तो एक तरीके से ओकर स्थिति हो जाता खराब और पेड़ भी खराब हो जाते हैं भैया, है, और बाद में चल के ओकर जो फलत होता वो कम हो जाता।
0: तो ऐसे भैया कि जौन पुराने बाग हैं ओकर रख रखाव उचित तरीके से करब आवश्यक बा। ओकरे अलावा जौन कुछ कीट वगैरह लग जाते हैं जड़न में और कुछ पत्तियन में, तो ओकर भी सही से निगरानी करे के आवश्यकता बा, ओकर ढंग से देख रेख करे के आवश्यकता बा। जैसे कि बाग जौन बा पुराना बाग जौन लगा है वही अच्छी अवस्था में रहें।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, तो देखा एक ठे बत कही बा कि बरसात में पुराने बागों की देखभाल,
0: हाँ
1: प्रेमनाथ पांडे से राम प्रकाश सिंह का, हम कहीं कि है के तुह सुना पंचो सुन ले।
0: सुनवा दे। किसान भाई, खेती किसानी के साथ बाग बगीचा का बड़ा गहरा नाता हो, और हम कहब कि जब बाग बगीचा या हम कही पेड़ लगावे के जब समय आवत है, तो उस समय किसान भाई के ध्यान देवे के चाही कि सही समय पर अगर हमें बाग लगावे के तो बाग लगाएं, या कभी हमारे पुरान बाग हुए बाग बगीचा हुआ तो उनका देखभाल करे के भी जरूरत पड़त है। तो आज हम बात कर रहे हैं बरसात के समय में पुराने बागन के कैसे किसान भाई देखभाल करें, ये विषय पर बातचीत करे बदे अपने स्टूडियो में हम आमंत्रित किए हैं श्री प्रेम।

0: पांडे जी के आप जानकार हों। तो पांडे जी, आपसे हम ही जानना चाहब कि ये समय जब बरसात का मौसम अब शुरू होगा बा, तो किसान भाई अपने बागन में का का करें, इस समय कौन काम जरूरी है उनके बदले?
1: किसान भाइयों, बरसात में पुराने बागों की देखभाल बहुत आवश्यक है। इसमें प्रथमतः पानी की निकासी का प्रबंध करना चाहिए।
0: अच्छा।
1: पुराने बागों में चारों तरफ खाई होती है एवं बाग में कहीं कहीं ऊंची नीची सतह हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि चारों तरफ खाई के बीच में एक जगह पानी की निकासी का प्रबंध कर दिया जाए।
0: अच्छा।
1: तो पानी इससे चारों तरफ से सुलभता से निकल जाएगा। अगर पानी इकट्ठा रहने अथवा जल भराव हो जाने पर क्या होता है कि पेड़ की जड़ों में तह तक पानी चला जाता है एवं पकड़ कमजोर होने पर पेड़ गिर सकते हैं। तो और जो सतह ऊंची नीची हो गई है उन्हें भी बराबर कर दिया जाए क्योंकि पानी वहां इकट्ठा रहेगा।
0: तो पांडे जी, बरसात में भाई कहा नहीं जा सकता है, जा सकत है भाई, बरसात कभी कभी ज़्यादा हो जाता है और काफ़ी पानी जो है इकट्ठा हो जाता है,
1: जी,
0: तो पहले से भी कुछ सावधानी करें किसान भाई बागन के आसपास, जो से कि पानी न लगे।
1: तो पहले से तो ये है कि मालूम हो रहा है कि अब बरसात होने वाली है 10 दिन 15 दिन में, तो पहले से ही बाग की पूरी सफाई भी कर दें। पानी कहीं इकट्ठा न होने पावे तो उसका जैसा नाली है या ढलान है इसको कर दें। और खाई से ऐसा होता है कि पानी इकट्ठा रहता है तो उसमें ये भी प्रबंध कर दें कि चारों तरफ से कि जैसे होल बना दें या खोल दें कि जब भी पानी इकट्ठा हो तो चारों तरफ से निकल जाए। तो
0: अच्छा
1: ये पहले करना चाहिए।
0: जी, वही कहे का मतलब
1: अच्छा,
0: कि
1: हाँ, तो ये बहुत ही आवश्यक है पुराने बागों में
0: जी।
1: जी।
0: एक चीज भी होता है कि जब बरसात आवत है तो खरपतवार का भी तादाद बढ़ जाते बागन के अगल बगल,
1: जी,
0: तो खरपतवारन के रोकथाम करे बदे किसान भाई उनके कुछ खास उपाय करे के चाहिए?
1: अब इसको बरसात के पहले भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए बरसात चल रही है, चाहे रुक जाए, तो जो खरपतवार व गिरी हुई पत्तियां इकट्ठा हो जाती हैं उन्हें बाग से सफाई कराकर एक जगह गड्ढे में डलवा दी जाए, तो वह सड़कर बहुत ही अच्छी खाद तैयार हो जाती है। अब आपका बाग साफ भी रहता है तो पानी चारों तरफ से सरलता से अपना रोक नहीं उसकी होती।
0: पांडे जी, ये कभी कभी देखा जाता है कि पुराना बाग हुआ तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोनो पेड़ जैसे कि कुछ वजह से नष्ट हो गए या हम कहीं कोनो रोग बेरामी लग गए तो खाली जगह हो जाते बागन में, तो
1: जी,
0: ये खाली जगह का उपयोग कौन तरीके से किसान भाई करें?
1: अब इसमें पहला ध्यान ये देना चाहिए कि बरसात के पहले आंधी तूफान और चक्रवात भी आ जाता है। इसकी वजह से, कुछ बीमारी से वजह से कुछ पेड़ सूख के गिर जाते हैं या वैसे भी गिर जाते हैं,
0: जी
1: तो उन पेड़ों को हटाकर उनकी जगह जिस फल की बाग हो, मान लीजिए जैसे आम है, आंवला है, नींबू है, कटहल है, कभी कभी इकट्ठा लोग लगाते हैं, कभी अलग उसमें मिक्स भी लगाते हैं,
0: जी
1: तो जो उसमें अच्छा लगे किसान को कि हाँ ये हमको जल्दी फलत मिले, तो उनकी जगह जिस फल की बाग हो के नवीनतम प्रजाति के पौधे रोपित किए जाएं, तो बाग आपकी पूरी भरी रहेगी। अच्छा,
0: अच्छा
1: जो पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए हों उनकी शाखाएं व टहनियां काट कर पेड़ को अच्छे आकार का रूप दे दिया जाए, ताकि उसमें किल्ले निकले और पेड़ अपना पूर्ण स्वरूप ले ले। तो
0: बहुत अच्छी बात।
1: ये इसका होता है,
0: अच्छा
1: किसान इसका जरूर ध्यान दें। इसे पता लगा बाग में गए देखें तो सूखी डाल पड़ी या है पेड़ इसे बा, तो ऐसा नहीं कर, इसी का ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब बरसात में सर्वाइव बहुत तेज करता है,
0: जी
1: पुराने पेड़ भी बहुत तेज किल्ले निकलते हैं, तो इसका ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, आप जैसे कहना है कि भाई मगर क्षतिग्रस्त पेड़ तो ओके ऐसा आकार दे दें जो से अच्छे से उकर विकास होकर,
1: जी,
0: बकिया तो हम कहें कि बरसात में पानी पर्याप्त मात्रा में उनके विकसित होकर बदे मिलत है। पांडे जी, एक बात और आवत है कि बागन में जैसे कि उनकर जीर्णोद्धार कैसे कैल जाए, ओमे कौन कौन काम जरूरी होता है?
1: अब देखिए जो अभी नई मतलब चली है मतलब प्रणाली, तो उसमें यह है कि पुरानी बागों में 50% पेड़ों का टोटल ना करिए, क्योंकि आपको फल नहीं मिलेगा फिर
0: जी
1: हाँ? तो उसमें एक साल 50% पेड़ों का जीर्णोद्धार किया गया, दूसरे साल छोड़ दिए, तीसरे साल फिर करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इन पेड़ों के 15 फीट ऊंचाई की टहनियों को काट कर जीर्णोद्धार।

0: हर करते हैं,
1: हम्म,
0: और इसमें बरसात में बहुत अधिक मात्रा में केले निकलते हैं, तो उनका बेड़ीकरण कर दिया जाए।
1: अच्छा,
0: इससे टहनियां स्वस्थ निकलेंगी एवं पेड़ का स्वरूप और आकार अच्छी तरह विकसित होगा, ताकि जब वो उसकी टहनियां थोड़ा परिपक्व हों तब फिर उसमें अगले साल फूल आएगा, फल भी होंगे। तो
1: अच्छा
0: तने पर जो किले निकले उन्हें पूरी तरह से हटा दिया जाए।
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: जीर्णोद्धार से ये हुआ है कि आपकी बाग का स्वरूप भी अच्छा हो जाता है, दूसरे तीसरे साल तक फिर उसी अच्छी रूप में आ जाती है और फल भी अच्छे निकलते हैं।
1: तो यानी भैया, ये जीर्णोद्धार के रूप में जौन हम कही कि देखा जाता है कि भैया लोग कभी कभी जौन टहनी काट देते हैं, छटाई कर देते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो एक
0: जी
1: मतलब यह है कि एक सही समय यह बरसात के समय होता है भैया।
0: हाँ, बरसात के नहीं, बरसात के पहले होता है, पर बरसात में क्या होता है, किल्ले बहुत निकलते हैं। अगर इस पुरानी बाग में इन किल्लों को ना हटा देंगे तो बहुत बड़ी बड़ी मतलब घनी हो जाएंगी, फिर फल के लिए नुकसानदेह होता है। तो उनका
1: अच्छा
0: बेलीकरण कर दिया जाता है, जैसे कि एक शाखा जो है 1.5 फीट 2 फीट के बाद फिर चले और
1: अच्छा
0: उनका विकास होता है, खूब मोटाई आ जाती है। जी,
1: तो पांडे जी, ये फलदार वृक्षन में कि बिना फल वाले दोनों वृक्षन में काम?
0: दोनों दोनों वृक्षों में होता है।
1: अच्छा
0: पर यह कि पुराने ही पेड़ जो कम से कम 25-30 साल के ऊपर के होते हैं उन्हीं का जीर्णोद्धार होता है, तो पुराने बाग में ही जीर्णोद्धार होगा।
1: अच्छा,
0: जी
1: अब बाग अगर पुराना है तो हमें पेड़ पौधन के उर्वरक या खाद की भी जरूरत पड़त हुई, तो एकरे बारे में थोड़ा जानकारी दें।
0: अब इसमें यह है कि जो जागरूक किसान हैं वो बरसात से पहले अपने मतलब बाग के पेड़ों में सड़ी हुई गोबर की खाद हर पेड़ के थाले में डाले होंगे, या नहीं ये मिले होगी तो जैविक और रासायनिक खाद का प्रयोग किए होंगे। तो उसमें क्या होता है कि पेड़ों के किनारे जो गोलाकार आप थाला बनाते हैं
1: अच्छा
0: 6 इंच की ऊंचाई का, तो उसे ठीक कर दें, क्योंकि जब बरसात में पानी बरसेगा
1: जी
0: तो वो बाहर आ जाएगा तो उसका तत्व खत्म हो जाएगा।
1: हाँ भैया, कह का मतलब ये है कि उर्वरक पेड़ पौधन के देहल थोड़ा मुश्किल काम हो कि ऐसा तरीका से दीन जाए कि जो उनसे कि उनकी पूरी तरह से मिल जाए।
0: जी,
1: हाँ
0: तो इसीलिए इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: और भी कौन तरह के उर्वरक पीड़न की दीन जा सकता है?
0: अब जैसे आपने गोबर की खाद डाला,
1: हाँ
0: सड़ी हुई पत्ती की खाद डाल दिए, वो भी
1: जी
0: अच्छी होती है। अब आजकल जैविक खाद केचुआ की खाद चली है, वो भी बढ़िया है। और उर्वरक में बहुत से लोग यूरिया अकेले डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना
1: जी
0: चाहिए।
1: जी हाँ
0: उसमें NAA, तो मतलब जो
1: का
0: जैसे
1: भैया बतौला, NAA।
0: हाँ एक ये मिक्स मिक्स मिक्स खाद है, तो जिसमें मतलब नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटास भी है,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: बताओ।
0: वो सब मिला करके डालने से उनको पूरा तत्व मिलता है।
1: अच्छा
0: अब मान लीजिए नहीं डाले हैं बरसात के पहले, तो अब क्या करें कि जब पानी रुक जाए, बरसात का पानी
1: जी
0: बरसात रुक जाए, देखें 2-3 दिन खुला है, तब थोड़ा थोड़ा डाल दें, क्योंकि
1: अच्छा
0: उसको खुराक मिलनी चाहिए पानी से, और बढ़िया वो उसमें डाइल्यूट हो जाता है,
1: जी
0: घुल
1: जी
0: जाता
1: जी
0: है।
1: इस समय पुराने बागन में कुछ कृषि रक्षा रसायन का भी प्रयोग जरूरी होता है?
0: बरसात जब होती है तो कीड़े पेड़ पे भागते हैं
1: अच्छा
0: तो कीट अथवा तना छेदक कीड़े बहुत आते हैं,
1: अच्छा
0: या पत्ती खाने वाले, तो इन कीड़ों से बचाव होने पर जब बरसात रुके तो इसके सुरक्षात्मक रसायनों का प्रयोग अवश्य कर दें,
1: अच्छा
0: ताकि आपका पेड़ बचा रहे।
1: जी जी बिल्कुल। तो कुछ और आप खास किसान भाई की सलाह देहल चाहिए पुराने बाग के संबंध में?
0: अब इसमें यह है कि जैसे फल प्रबंधन की भी बात आती है, इस समय
1: हाँ
0: जैसे बरसात में अमरूद बहुत होता है, तो
1: हाँ बताओ।
0: अमरूद के बागों की पुराने अमरूद के बागों की विशेष ध्यान देखभाल रखें, उसमें फल जो पके रहे हैं उनको निकाल लें और नए फल निकलते हैं, चूंकि अमरूद में एक बार अभी फल लेने के बाद फिर फूल आएगा,
1: जी
0: तो बरसात में उसका ध्यान रखें कि फूल नष्ट न होने पाएं, इसका ध्यान रखना पड़ता है। और अब जैसे आम है, आम तो समाप्ति पर है,
1: जी जी अब तो हाँ
0: अब आंवले में भी घुंडियाँ लगना शुरू हो जाएंगी, छोटी छोटी
1: जी
0: जैसे
1: जी
0: दाने पड़ेंगे, तो इसका भी ध्यान रखें, नहीं बरसात में पता लगा बाग छोड़ के घरे चला आए हैं, बैठ गए हैं, तो ऐसा नहीं, ध्यान उसका बराबर ध्यान रखना चाहिए,
1: निरीक्षण करते रहें।
0: निरीक्षण करते रहें।
1: बिल्कुल, हम कहा कि भाई बाग अगर लगाए हैं

0: नियमित निरीक्षण करें और समय के मुताबिक जो जरूरी काम हो में हो, चाहे कीटनाशक के प्रयोग करे के हो, चाहे
1: जी
0: उर्वरक सही समय हो,
1: जी जी
0: तो हम कहब कि जैसे खेती किसानी की फसलन में किसान भाई जागरूकता से काम करते हैं, वैसे बागन बदे भी समय
1: जी
0: दें आ ओहमा जरूरी कामन के समय पर कह दें। तो श्री प्रेमनाथ पांडे जी, आप हमारे कार्यक्रम में अइले, बरसात में पुराने बागों की देखभाल यह विषय पर बहुत ही अच्छी जानकारी किसान भाइयों के दिया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: देखो भैया, ई प्रेमनाथ पांडे जी बड़ा बढ़िया से बताएं कि बरसात में पुराने बागन का देखभाल कैसे करें। जैसे खेती किसानी के लोग अपन रखत हैं, रख रखाव करत हैं, उर्वरक का प्रयोग करत हैं, पानी का समुचित व्यवस्था करत हैं, वही तरीके से बागन का भी कैसे व्यवस्था करें, चाहे का देख रेख करें, चाहे कीटनाशक कैसे प्रयोग करें,
0: बिल्कुल
1: वो
0: भैया,
1: सारी
0: साथ
1: जानकारी दें।
0: हाँ भैया, साथे साथे देखा इस समय विशेष एहलिए ध्यान देवे पड़ते हैं
1: हाँ
0: कि कहीं पानी उमन इकट्ठा ना हो जाए,
1: हाँ
0: ठीक है ना। तो पानी कहीं लग ना जाए, कहें कि बहुत दिन तक अगर पानी लगा रहता था तो उसे जड़ का होता कि उकट जाता। और
1: हाँ
0: साथे साथे देखा बाग में कई और तरह का बरसाती पौधा उगावत हैं, तो
1: हाँ
0: बिल्कुल निराई गुड़ाई भी इस समय जरूरी होता
1: बहुत आवश्यक वो
0: है।
1: बरसात के
0: हाँ, कि
1: समय
0: खरपतवार भी होकर निकालत रहे, जौने से कि जौन पोषक तत्व है वो अपने बाग के
1: भरपूर
0: लिया
1: मात्रा में
0: भरपूर
1: मिले।
0: मात्रा में मिलत रहे भैया। तो देखा मौसम के अनुसार अपने यहाँ का देखा जो चाहे खेती होखे चाहे बाग बागवानी होखे, हर चीज़ पर मौसम का बहुत असर पड़त है। चाहे
1: खाइएगा
0: भैया
1: भैया।
0: बरसात का मौसम होके, चाहे जाड़ा का मौसम होके, चाहे गर्मी का मौसम होके, मौसम और तापमान के अनुसार ही अपने खेती और बागवानी का ध्यान रखल बहुत जरूरी होते भैया।
1: तोने पे बरसात का मौसम भैया तो बहुत ही जरूरी भी अपने खेती किसानी के लिए। हाँ
0: अब कहे ना भैया, हम कहीं बाग बागवानी के साथ साथ पूरा का पूरा खरीफ फसल यही के ऊपर निर्भर करते
1: पूरा
0: हैं।
1: पूरा निर्भर
0: तो यह
1: करता
0: तरीके से भैया हम कहीं कि देखा अगर लोग ध्यान दी हैं तो निश्चित रूप से अपन बाग बढ़िया रही और फिर देखा फलत ओकर बढ़िया रही।
1: बढ़िया
0: अब
1: मिले।
0: तनिको लापरवाही करिए तो फिर दिक्कत आ जाए।
1: अच्छा ये मनु भैया, और जो ने ख्यौर लोकगीत बा संगीता राय जी का पूर्वी,
0: हाँ भैया,
1: आओ
0: तो
1: पहले किसानन के यो सुनवावा जाए
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: फिर।
0: भैया, तू सुना किसानों भैया सुने।
1: हाँ।

0: हाँ भैया,
1: दिखाओ गवनई तो हो गए। अब भैया देखा बारी बार बार बार जो नंबर बतावा जाते है, काहे कि मान ला कि जब तक पंच भैया के लोगन का कुछ प्रतिक्रिया नहीं आवत है, कुछ सुझाव नहीं आवत है, तब तक देखा कार्यक्रम एक रसा लगत है।
0: एकदम सही बात कहो मनु भैया कि सब जौन किसान भैया लोग हमार लोगन के पंचायत घर सुनत हैं, उनसे ये गुजारिश बा, अरदास बा कि हमार लोगन का ये नंबर बा 800-4926-2500, ए पर अपन प्रतिक्रिया दें, अपन सुझाव दें, हम लोग अब शामिल करब और उनकर प्रतिक्रिया अपने प्रोग्राम में
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, देखा फेसबुक का भी जौन पेज बा, ओके भैया लाइक करे और ओहू पर अपन प्रतिक्रिया व्यक्त करे। हम कहें कि देखा भैया बुन्नी बरसात का मौसम बा है, तो समय से घरे चल जाए बढ़िया रही, और पंचन से अब आज्ञा लिया जाए। पंचो
0: पंचो राम
1: राम राम।
0: राम।

ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम पंचायत घर। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में 542 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, एससीआर के विकास से होगा बाराबंकी का विकास। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में संबंधित पक्षों को राजनीतिकरण न करने के दिए निर्देश। 27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मेरठ में मुख्य सचिव एसपी गोयल और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने की बैठक। उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के अधिकारी हुए शामिल। और प्रदेश के अधिकांश जनपदों में रुक रुक कर बारिश से शारदा, घाघरा और गंडक नदी पहुंची खतरे के निशान के करीब। मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक भारी बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाराबंकी में 542 करोड़ रुपए से अधिक की 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, स्वीकृति पत्र और आवास की चाबी भी प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन एससीआर के विकास के साथ बाराबंकी के विकास के भी नए द्वार खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में लोधेश्वर महादेव कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है।
2: हमने भारत के विरासत के प्रतीक बाराबंकी की पहचान भगवान लोधेश्वर महादेव के इस पवित्र मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि स्वीकृत कर दी है। और आज मैंने देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई, कितना भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर। और आने वाला हर श्रद्धालु अभिभूत होकर के जाएगा और बदले में आशीर्वाद और धन्यवाद आपको देकर के जाएगा।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में प्रदेश में संचालित प्रमुख आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास, निवेश, जनकल्याण और सेवा वितरण से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत पात्र परिवारों का अंत्योदय कार्ड बनाने और सभी योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने लखनऊ नाइट सफारी परियोजना की समीक्षा करते हुए इससे जुड़ी सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर परियोजना को समय बद्ध रूप से आगे बढ़ाने पर भी बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इस मामले में एसआईटी के पुनर्गठन पर विचार करने को कहा ताकि जांच बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने के निर्देश भी दिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा विवाद अपराध का एक साधारण मामला है और न्यायालय का काम सिर्फ उचित जांच सुनिश्चित करना है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने आज मेरठ में आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंडलों के अधिकारियों के साथ ही उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और संवेदनशील स्थानों सहित सभी प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई। डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और सरकार के तय नियमों का पालन करते हुए कांवड़ की ऊंचाई, डीजे की आवाज और समेत अन्य पहलुओं को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाएगी।
1: इस बार भी तो शासन के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है, कांवड़ की हाइट, कांवड़ के वॉल्यूम लेवल डेसिबल और इस साल के कुछ नए चैलेंजेस हैं, नई व्यवस्थाएं हैं, साथ ही साथ कांवड़ के श्रद्धालु हैं उनको भी एक व्यवस्था के तहत उनके लिए ट्रैफिक का पूरा प्लान बनाया गया है। उस ट्रैफिक के प्लान को आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से समय पर सभी को अवगत कराया जाएगा, जिससे कि पहले से जानकारी रहे कि कांवड़ के मार्ग हैं वो क्या रहेंगे। हमारा प्रयास यही है कि सबके साथ संवाद लेकिन साथ ही
0: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत आईआईटी कानपुर में ग्रीन हाइड्रोजन पर नवाचार और एकीकृत ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर फॉर एक्सलेंस इकोसिस्टम इकोजेन की स्थापना की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन से लेकर भंडारण, परिवहन, उपयोग और विभिन्न प्रणालियों के एकीकरण आदि को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी कर बताया है कि हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई से बढ़ाकर 24 जुलाई 2026 कर दी गई है। इच्छुक हज आवेदक हज कमेटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हज यात्रियों का चयन डिजिटल रैंडम सिलेक्शन प्रक्रिया से 30 जुलाई 2026 को हज हाउस मुंबई में किया जाएगा। चयनित हज यात्रियों की सूची हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में देशभर के स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य छात्रों को सीएजी की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर शोध करने के लिए प्रोत्साहित करना और इससे जुड़े अन्य पहलुओं पर सार्थक चर्चा को बढ़ावा देना है। इस प्रतियोगिता के लिए 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने आज लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में यूपी T20 लीग के सीजन 4 के टिकट लॉन्च किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए खास कदम उठा रही है।
2: माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश में

0: स्पोर्ट्स के लिए, यूथ के लिए, विशेष रूप से प्रदेश स्तर पर और जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भी स्पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर का विशेष रूप से उन्होंने ख्याल रखा है। स्पोर्ट की नई नीति लागू करके स्पोर्ट्स पर्सन को पुलिस में, अन्य सभी विभागों में सरकारी नौकरी देने का, और हमारे कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिसमें कि उनको डिप्टी एसपी और तहसीलदार तक नौकरी देने की व्यवस्था की गई है।
1: यूपी T20 लीग सीजन 4 का आयोजन 14 अगस्त से 6 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। इस बार लीग का आयोजन लखनऊ और कानपुर में किया जाएगा। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने आज ग्रेटर नोएडा में CBSE नॉर्थ जोन की लॉन टेनिस और शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में देशभर से 772 शूटिंग खिलाड़ी, 742 लॉन टेनिस खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं बल्कि अनुशासन, नेतृत्व, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण का सशक्त आधार है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के अधिकांश जनपदों में रुक रुक कर हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी, बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा और कुशीनगर में गंडक खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। बारिश के कारण जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक राज्य में भारी बारिश का अनुमान जताया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। 5 अन्य लोग घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संत कबीर नगर जिले में भी एक पुराना मंदिर गिर गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम के हालात बन गए। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में 542 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, SCR के विकास से होगा बाराबंकी का विकास। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में संबंधित पक्षों को राजनीतिकरण न करने के दिए निर्देश। 27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मेरठ में मुख्य सचिव SP गोयल और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने की बैठक। उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के अधिकारी हुए शामिल। और प्रदेश के अधिकांश जनपदों में रुक रुक कर बारिश से शारदा, घाघरा और गंडक नदी पहुंची खतरे के निशान के करीब। मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक भारी बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए डॉक्टर कृपा शंकर पांडे की वार्ता, रीतिकालीन कविता के सरोकार।
4: कविता के विषय में मेरी स्पष्ट धारणा है कि जो कविता भाषा की लोक चेतना के भार को वहन करने की जितनी अधिक क्षमता रखती है, उस कविता की व्याप्ति समाज में उतनी ही गहरी होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उस कविता में आभिजात्य संस्कृति लोक चेतना के माध्यम से सामाजिक मूल्य के यथार्थ को ग्रहण करने में उतनी ही सफल होती है। और उस कविता का कला पक्ष अपने सृजन के धरातल पर उतना ही साधारणीकृत भी। कविता वही साधारणीकृत होती है जिसमें अपने समय का समाज, राग चेतना के साथ मनुष्य की संस्कृति को रचनात्मक संस्कृति में आत्मसात करने की क्षमता रखती है। रीतकालीन कविता अपने समय और समाज के यथार्थ को उद्घाटित करने की क्षमता रखती है, इसीलिए उसकी जीवनी शक्ति जनता के बीच सुरक्षित है। हिंदी साहित्य के रीतकालीन कविता के सरोकार को स्पष्ट करने के लिए

तीन शब्दों को स्पष्ट करना आवश्यक समझता हूँ। पहला सरोकार, जिसका अर्थ मानक कोशों में इस प्रकार दिया गया है, परस्पर व्यवहार का संबंध, लगाव, वास्ता। उर्दू फारसी कविताओं में इसका प्रयोग मनुष्य की ऊंचाई या कद की सुंदरता सूचित करने के लिए उपमा के रूप में होता है। दूसरा शब्द रीति है, जिसका अर्थ है प्रणाली, पद्धति, मार्ग, पंथ, शैली आदि। वास्तव में रीति का अर्थ विशिष्ट कार्य पद्धति होता है। संस्कृत साहित्य में रीति को काव्य की आत्मा मानते हुए उसे विशिष्ट पद रचना के रूप में व्याख्यायित किया गया है और ये गुणों पर आधारित है। रीति का दूसरा संबंध पद रचना है, जिसका संबंध समाज से है। इस आधार पर कुछ आचार्यों ने समासहीनता, स्वल्प समासता, दीर्घ समासता के रूप में रीति शब्द को व्याख्यायित किया है। हिंदी साहित्य में रीति शब्द का विशिष्ट अर्थ में प्रयोग है, जिसका तात्पर्य लक्षण देते हुए या लक्षण को ध्यान में रखकर लिखे गए काव्य से होता है। अलंकार, रस, ध्वनि आदि को लेकर इनके उदाहरण रूप में रचित हिंदी काव्य इस साहित्य के अंतर्गत है। हिंदी में रीति को काव्य रचना की प्रणाली के रूप में ग्रहण करने की अपेक्षा प्रणाली के अनुसार काव्य रचना करना रीति का अर्थ मान्य हुआ, जिसके आधार पर रीति काव्य का अर्थ हुआ। ऐसा काव्य जो अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि की काव्य शास्त्रीय प्रणालियों के आधार पर रचा गया हो, इनके लक्षणों के साथ या स्वतंत्र रूप से इनके आधार पर काव्य लिखने की पद्धति ही रीति नाम से विख्यात हुई। और यह पद्धति जिस काल में सर्वप्रधान रही वह काल रीति काल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका काल 1700 से 1900 विक्रम तक का काल है। मोटे तौर पर इसे जहां शाहजहां के शासन की समाप्ति और औरंगजेब के शासन के प्रारंभ से लेकर प्रथम स्वाधीनता संग्राम तक ये काल माना जाता है। इस काल में भक्तिकालीन काव्यधाराओं जैसे संत काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, वीर काव्य, नीति काव्य आदि का विकास हुआ। परंतु सबसे अधिक महत्व उसी रीति काव्य को प्राप्त हुआ जो अलंकारों, रसों, नायिका भेदों, शब्द शक्तियों, ध्वनि भेदों आदि के आधार पर लिखा गया। यह प्रवृत्ति इस युग की नवीन चेतना के रूप में विकसित हुई। रीतकालीन कविता का विकास राजाश्रय के योग से निर्मित है। साहित्य के लिए यह स्वीकृत धारणा है कि कविता या कला जब भी राजाश्रित होती है उसका विकास आचार्यत्व प्रदर्शन और श्रृंगारिक भावना के ऐहिक रूप से होता है। 200 वर्षों का ये काल कला और साहित्य की दृष्टि से समृद्धि और विलासिता का काल है। साधना के काल भक्त युग से यह इसी बात में भिन्नता रखता है कि इसमें कोरी विलासता ही उपास्य बन गई, वैराग्य पूर्ण साधना का समादर न रहा। नवाब, जागीरदार, मनसबदार, सामंत सभी का उद्देश्य विलासिता और समृद्धि का जीवन। तुलसी की कीरति भनिति भूति भल सोई, सुरसर सम सबका हित होई की धारणा आचार्य केशवदास के यहाँ रामचंद्र की चंद्रिका वर्णत हो बहुछंद के रूप में इसी तथ्य को उजागर करती है। यहाँ चंद्र की चंद्रिका की का सीधा अर्थ राम के ऐश्वर्यमय भोगमय विलास और समृद्ध को संकेत करता है। हाँ, ये अवश्य है कि रीतकालीन कविता के प्रवर्तक आचार्य केशवदास के साथ ही अन्य आचार्य कवियों ने भी श्रृंगारपूर्ण रचनाओं के बीच भक्ति काव्य की शीतल जलधारा श्रद्धालु भक्त जनों को सुख शांति और संतोष देकर उन्हें निरंतर आस्थावान बनाती रही। रीति

और श्रृंगार की प्रवृत्तियों के साथ भक्ति भाव का बदला हुआ मानदंड राम भक्ति काव्य में यदि रसिक संप्रदाय के रूप में विकसित होता है, तो वहीं कृष्ण काव्य में वासना के कुंड में समाहित होने के बाद भी आस्था का विषयी रूप काव्य में अपनी पहचान बनाता है। हाँ, ये अवश्य है कि रीतिकालीन कविता में सामाजिक जीवन जीने के लिए साधन किसी प्रकार का क्यों न हो, समृद्धि का अर्चन ही साहित्य की सार्थकता थी। कारण उच्च वर्ग के लोग कविता और कला के संरक्षक थे। सजाव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य का एक बड़ा प्रतिमान था। लोकेशणा का सीमित और भोग्य रूप इस काल के यथार्थवादी धरातल का संकेत करता है, पर यह यथार्थवाद सामाजिक क्रांति के बीज बोने वाले आधुनिक यथार्थवाद से भिन्न है। वास्तव में वो यथार्थवाद कला और कारीगरी का यथार्थ है। चिंतना, ठेस, असंतोष की चिंगारी बिखेरने वाला

सामाजिक जीवन जीने के लिए साधन किसी प्रकार का क्यों न हो, समृद्धि का अर्चन ही साहित्य की सार्थकता थी। कारण उच्च वर्ग के लोग कविता और कला के संरक्षक थे। सजाव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य का एक बड़ा प्रतिमान था। लोकेषणा का सीमित और भोग्य रूप इस काल के यथार्थवादी धरातल का संकेत करता है, पर यह यथार्थवाद सामाजिक क्रांति के बीज बोने वाले आधुनिक यथार्थवाद से भिन्न है। वास्तव में वो यथार्थवाद कला और कारीगरी का यथार्थ है। चिंतना ठेस असंतोष की चिंगारी बिखेरने वाला यथार्थ नहीं, जिसके कारण इस काल की कलात्मक उपलब्धियों में एक रस्ता है, विविधता नहीं। रीतिकालीन कविता के अंतर्गत दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। एक तो वे रचनाएं जिनमें मुख्यतः काव्यशास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया है। स्पष्टतः हिंदी कवियों का यह प्रयास बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सिद्धांत प्रतिपादन की दृष्टि से इनका महत्व इसलिए नहीं है कि उनमें मौलिकता का अंश बहुत कम है, ये अनुवाद मात्र या उनकी छाया पर आधारित हैं। दूसरे प्रकार की वे रचनाएं हैं जो काव्य लक्ष्यों को प्रतिपादित करने की दृष्टि से नहीं लिखी गई। इस प्रकार की काव्य में भाषा भाव तथा शैली सभी का अत्यंत निखरा हुआ रूप मिलता है। ये लक्षण मुक्त कविता ही वास्तव में रीति काल की कविता का प्राण तत्व है, जिसके विकास के अनेक कारण हैं। एक कारण तो संस्कृत में इसकी विशाल परंपरा है। जिस समय भाषा साहित्य का प्रारंभ हुआ उस समय भी संस्कृत में लक्षण या अलंकार साहित्य की रचना चल रही थी। दूसरा कारण कवियों को प्राप्त राजाश्रय है। अकबर ने सबसे पहले हिंदी कवियों को दरबार में आश्रय दिया। हिंदी साहित्य के विकास का तीसरा कारण कवि और काव्य के स्वतंत्र रूप से प्रतिष्ठित होने का भी है। इस क्षेत्र में केशवदास का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी कारण उनको आगे के युग में दीर्घकाल तक सम्मान प्राप्त हुआ। रीतकालीन कविता के विकास में तत्कालीन राजनैतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग रहा है। वस्तुतः ये परिस्थितियां इस प्रकार की काव्य सर्जन के अनुरूप अनुकूल ही थीं। उस समय की राजनीतिक उथल पुथल और सत्ता एवं वैभव की क्षणभंगुरता ने जीवन के दो अतिरेकपूर्ण दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायता दी। एक ने जीवन के प्रति पूर्ण विरक्ति और त्याग का भाव जागृत किया, जबकि दूसरे ने पूर्ण भोग का दृष्टिकोण। ऐहिक काव्य को इस प्रकार का विलासपूर्ण चित्रण करने की प्रेरणा देने में राजनीति स्थित का भी हाथ था। जहां तक सामाजिक संबंध का प्रश्न है, मध्ययुग का समाज सामंतवादी पद्धति पर आधारित था, जिसमें सम्राट शीर्ष पर था, जिसके बाद राजा अधिकारी और सामंत थे। उनको भी समाज में विशेष अधिकार और सम्मान प्राप्त थे। कवियों को अपने आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार या उन्हें प्रभावित करने वाला काव्य लिखना आवश्यक था, जिससे उनकी ऐहिक संतुष्टि होती थी और प्रतिभा का भी एक क्षेत्र में कम से कम विकास होता रहता था। एक दूसरा पक्ष जनसाधारण का भी है। नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का चरित्र इन विलासी दरबारियों के अपेक्षा कहीं अच्छा था। कारण उस पर भक्त युग का प्रभाव था। रीतकालीन काव्य पर जो दोष लगाए जाते हैं वे हैं अश्लीलता, समाज को प्रगति प्रदान करने की अक्षमता, आश्रयदाता की प्रशंसा, विलास प्रियता और रूढ़िवादिता। रीतकालीन समस्त काव्य को दृष्टि में रखकर जब हम विचार करते हैं तो ये समस्त दोष उस युग के काव्य या समस्त रीति काव्य पर लागू नहीं किए जा सकते। ये दोष तो प्रत्येक युग के काव्य में थोड़ी बहुत मात्रा में तो पाए ही जाते हैं। संस्कृत काव्य इसका प्रमाण है। हाँ, ये अवश्य है कि मुगल सत्ता के सुदृढ़ होने से देश के भीतर तुलनात्मक दृष्टि से शांति का वायुमंडल बन गया। इस शांति के अवसर पर जीवन में कला और संस्कृत को विशेष महत्व मिला। शिष्ट और सुसंस्कृत व्यवहार का सम्मान बढ़ा, जिसके परिणाम स्वरूप कला प्रेम और विलासिता की भावना भी प्रखरता से जागृत हुई।

0: भाषा साहित्य को राजाओं और सामंतों के संरक्षण से और भी आश्रय प्राप्त हुआ।
1: हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कृपा शंकर पांडे की वार्ता रीतिकालीन कविता के सरोकार। इसी के साथ हिंदी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

दोस्तों आइए संकल्प लें कि शिक्षा की रोशनी हर घर तक पहुंचे, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति केवल अपना भविष्य नहीं संवारता बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए श्रेया श्रीवास्तव के स्वर में भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना श्रेया श्रीवास्तव के स्वर में भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में नीट पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण आज दिनभर सदन में कामकाज बाधित रहा और कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, विपक्षी सदस्य तख्तियां हाथ में लेकर सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे। अध्यक्ष ने सदस्यों को शांत रहकर और अपनी सीटों पर लौटकर प्रश्नकाल चलते रहने का देने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों ने उनकी बात नहीं सुनी और हंगामा करते रहे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने प्रश्नकाल जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। अध्यक्ष ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने सदन में तख्तियां लहराने और नारेबाजी को संसद की मर्यादा का उल्लंघन बताया और कहा कि सत्र के पहले दिन सदन नहीं चलने की परंपरा टूटनी चाहिए। प्रश्नकाल में नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना उचित नहीं है। अध्यक्ष ने इस दौरान सदस्यों से बार बार व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन इसका विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ और सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। हंगामा बढ़ता देख श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने कहा कि विपक्षी सदस्यों का व्यवहार ठीक नहीं है। असम अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आई है, लोग परेशान हैं, देश में और भी कई समस्याएं हैं, आप उन पर चर्चा कीजिए, आपको नियमानुसार समय दिया जाएगा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सैकिया की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और वे हंगामा करते रहे। इस पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी कर

करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। विपक्षी सदस्य शोरगुल करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। श्री सैकिया ने नारेबाजी न करने और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की, लेकिन सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा में भोजनावकाश के बाद भी कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने सदस्यों को नियम 377 के तहत अपने मामले उठाने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्य तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। श्री पाल ने कहा कि जनता ने सांसदों को अपने उम्मीदों के साथ लोकसभा में भेजा है, सदन में तख्तियां और बैनर लेकर आना तथा नारेबाजी करना उचित नहीं है और इसकी अनुमति नहीं है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कोरम का मुद्दा उठाया, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि सदन में कोरम पूरा है। कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि सांसदों को सदन में आने से रोका जा रहा है, लेकिन श्री पाल ने इस आरोप को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पीठासीन अधिकारी ने विपक्षी सदस्यों से हंगामा बंद कर अपनी अपनी सीटों पर लौटने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा और शोरगुल होने लगा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजुमदार ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने वर्ष 2025-26 से वर्ष 2029-30 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए के कुल बजटीय व्यय के साथ मेक इन इंडिया AI वर्क फॉर इंडिया की परिकल्पना के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में शिक्षा हेतु AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। ये केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप देश भर में शिक्षार्थियों को AI सक्षम उपकरण उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी का समावेशन करना है। उन्होंने कहा कि बजट 2025-26 में घोषित कौशल हेतु 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को उन्नत ITI PMSETU योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार के एक भाग के रूप में अनुमोदित किया गया है। इस योजना के तहत भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। श्री मजुमदार ने कहा कि शिक्षकों को प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग में सक्षम बनाने के उद्देश्य से NCERT द्वारा AI विषय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें 96,000 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार CBSE भी शिक्षकों को शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में AI उपकरणों के उपयोग और शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशासन में उनकी उपयोगिता के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। पिछले 3 वर्ष में 1,234 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें CBSE से संबद्ध विद्यालयों के 64,775 शिक्षक लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय करियर सेवा NCS पोर्टल देश भर के सभी हितधारकों के निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। उन्होंने कहा कि NCS परियोजना में अन्य बातों के साथ साथ राज्यों, संस्थाओं के सहयोग से करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए आदर्श करियर केंद्र MCC स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है। अब तक सरकार ने पूरे देश में 407 आदर्श करियर केंद्रों को मंजूरी दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का प्रयास देश से सभी बसे हुए गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराना है। बैंकिंग आउटलेट उपलब्धता की निगरानी एक भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित एप्लीकेशन जनधन दर्शक JDD ऐप द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व अनुमति के बिना वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, पेमेंट्स बैंकों, स्थानीय क्षेत्रों के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारत में कहीं भी बैंक शाखाएं खोलने की अनुमति दी है, बशर्ते कुल शाखाओं का 25% हिस्सा बैंकिंग सुविधाओं वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाए। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा, लेखक हैं PTI।

भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज मॉनसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपने संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनके इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। हंगामे के कारण उच्च सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके और कोई विधायी कामकाज भी नहीं हो सका। इससे पहले दिन में 11 बजे मॉनसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। गुजरात से भाजपा के मुकेश भाई जे राठवा, कर्नाटक से कांग्रेस के पवन खेड़ा, मध्य प्रदेश से भाजपा के महेश केवच, मेघालय से एनपीपी के जेम्स पगसा कोंकल संगमा, मिजोरम से खिंग्यांगटे लातलू आंग कीमा, राजस्थान से भाजपा के डॉक्टर सतीश पूनिया, पश्चिम बंगाल से भाजपा के प्रकाश चेक बड़ाइक, सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। खेड़ा ने अंग्रेजी में मुकेश भाई जे राठवा, महेश केवट, जेम्स पगसा कोंकल संगमा, डॉक्टर सतीश पूनिया और प्रकाश गवड़ाइक ने हिंदी में तथा सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर रॉय ने बांग्ला में शपथ ली। बजट सत्र संपन्न होने और मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले निर्वाचित हुए कुछ अन्य सदस्य अंतर सत्र अवधि के दौरान सभापति के कक्ष में शपथ ले चुके हैं। सभापति ने नए सदस्यों का सदन में स्वागत किया। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगा साई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। श्री खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकता न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सदस्यों ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल बंटवारे का मुद्दा उठाने की कोशिश की तथा सदन के बीच में आने का प्रयास किया, हालांकि सभापति राधाकृष्णन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सभापति ने बैठक स्थगित करने से पहले कहा कि वो गतिरोध को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा करेंगे। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने सदन में चर्चा एवं पारित किए जाने वाले विधेयकों के लिए तय किए गए समय के बारे में सदन को बताया। उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी और विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहाँ चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन और उन पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। उपसभापति हरवंश ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि सुबह से अब तक कोई कामकाज नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये उच्च सदन है और इस तरह का व्यवधान उचित नहीं है। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शुरू होने के 1 मिनट के भीतर ही कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सभापति ने सत्र के प्रारंभ में अपने संबोधन में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया

कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। सभापति ने कहा, मैं सदन के सभी पक्षों के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस प्रतिष्ठित संस्था की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखें। हालांकि संसदीय लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें इस तरह से व्यक्त किया जाना चाहिए कि सदन की पवित्रता बनी रहे। व्यवधानों को इसके कामकाज को बाधित नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने सत्र के उत्पादक, रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण रहने की कामना की और कहा, मैं राज्यसभा के 271वें सत्र की शुरुआत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सदन की सार्थक चर्चाओं की गौरवशाली परंपरा रही है और मुझे विश्वास है कि इस सत्र उस विरासत को आगे बढ़ाएगा। हमारे सामने 19 बैठकें हैं और यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस बहुमूल्य समय का उपयोग राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करने और उन पर निर्णय लेने में करें। सभापति ने कहा, इस सत्र का एक महत्वपूर्ण विधायी और विचार विमर्श संबंधी एजेंडा है। मैं सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे कामकाज के समय पर निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान देश और उन लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी करता है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि सत्र से उच्च सदन के सचिवालय ने सदस्यों की सीटों पर लगे मल्टीमीडिया उपकरणों के माध्यम से 9 भाषाओं में कार्यवाही का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद शुरू किया है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे इस सुविधा का सभी 22 अनुसूचित भाषाओं तक विस्तार किया जाएगा। उन्होंने इस व्यवस्था में सुधार के लिए सदस्यों से अपनी प्रतिक्रिया देने को भी कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बरसात की रात फिल्म का ये गाना आपने सुना, साहिर के बोल रोशन का संगीत। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब की इस आवाज़ में इस खूबसूरत गाने के साथ चंद शब्द याद आ गए मुझे। बरसती बूंदों में अक्सर दिल की आवाज़ सुनाई देती है, जो बात लफ्ज़ों में न कही जाए वो बारिश कह जाती है। दोस्तों, पहली नज़र का असर कुछ ऐसा होता है जो कि खब सबसे ख़ास होता है।

दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो बिना कोई आवाज़ किए दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। उनमें सबसे ख़ास होता है पहली नज़र का एहसास। ये खूबसूरत सा गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में अप्रैल फूल फिल्म से। संगीत था शंकर जयकिशन का, शब्द रचना हसरत जयपुरी की। सावन की रिमझिम फुहार जब धरती को छूती है तो सिर्फ मौसम ही नहीं बदलता, दिलों का मिजाज भी बदल जाता है। भीगी हवाएं, मिट्टी की सोंधी खुशबू और बारिश की हर बूंद जैसे जिंदगी को एक नया गीत गुनगुनाने के लिए मजबूर कर देती है।

0: मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में मजबूर फिल्म का ये गाना आपने सुना। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, शब्द रचना आनंद बख्शी की। श्रोताओं, इसी के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कानून और हम। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे हर्ष बिहारी श्रीवास्तव की वार्ता, नए आपराधिक कानून एवं उनकी उपयोगिता।
1: औपनिवेशिक युग में भारतीयों को दंडित करने के लिए तीन आपराधिक कानून, भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1898, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 बनाए गए थे, जो वर्ष 2023 तक प्रभावी रहे। इन कानूनों में समय समय में संशोधन भी किए जाते रहे, किंतु भारत सरकार ने इन तीनों औपनिवेशिक कानून के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का निर्माण किया, जो 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिए गए। प्रश्न यह है कि इन तीन नए आपराधिक कानूनों को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसी विषय को लेकर आज चर्चा की जा रही है। पुराने आपराधिक कानून मूलतः अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को दंडित करने के लिए बनाए गए थे, न कि उन्हें न्याय प्रदान

करने के लिए। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 में भारतीयों को 6 प्रकार के दंड दिए जाते थे। पहला मृत्युदंड, दूसरा आजीवन पर्यावसान, तीसरा आजीवन कारावास, चौथा कारावास सादा या कठोर, पांचवा संपत्ति का जब्तीकरण और छठा जुर्माना। इसमें से आजीवन पर्यावसान, जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता था, यह एक ऐसा दंड होता था जो पूर्ण रूप से अमानुषिक एवं बर्बरतापूर्ण होता था। इसमें सजा के तौर पर दंडित व्यक्ति को किसी निर्जन टापू पर ले जाकर छोड़ दिया जाता था, जहां पर वह व्यक्ति या तो भूख या प्यास से तड़प तड़प कर मर जाता था, या फिर उसे कोई जंगली जीव जंतु अपना शिकार बना लेता था। यह मानवीय अधिकारों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन था। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को ग्रहण किया गया, तब आजीवन पर्यावसान काला पानी के दंड को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 से हटा दिया गया। हमारी लोकतांत्रिक सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 में भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का संकल्प लिया है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा समय समय पर भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 तथा भारतीय शासन अधिनियम 1872 में कई संशोधन किए गए, किंतु लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना साकार नहीं हो पा रही थी। अतः विधि आयोग की अनुशंसा पर सरकार ने इन तीनों आपराधिक कानूनों को नए सिरे से बनाने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार ने इसके लिए कैबिनेट के सामने प्रस्ताव रखा, जिस पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी। कैबिनेट की अनुमति मिलने के बाद इसे विधेयक के रूप में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखा गया। जब उक्त तीनों आपराधिक कानूनों का विधेयक संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया, तब उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया गया। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति महोदय ने इन तीनों नए आपराधिक कानूनों को अनुमति दे दी। 1 जुलाई 2024 से इन तीनों नए आपराधिक कानूनों को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया, किंतु शर्त यह रही कि जो आपराधिक मामले 30 जून 2024 तक विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन रहे हैं, चाहे वो जांच के स्तर पर, विचारण के स्तर पर, अपील के स्तर पर, पुनरीक्षण के स्तर पर अथवा रिट के रूप में, वे सभी पुराने कानून द्वारा ही आगे चलेंगे, जैसे कि भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में प्रावधानित थे, न कि नए कानून के प्रावधान इन पर लागू होंगे। 1 जुलाई 2024 से लागू नए कानूनों की जो प्रमुख विशेषता थी वह है, नंबर एक, सर्वप्रथम हम नागरिकों की यह समस्या थी कि जब हमारे साथ कोई अपराध होता है तो हम थाने जाते हैं और थाने पर हमारी FIR नहीं दर्ज की जाती। दूसरी समस्या हम लोगों की ये थी कि हमको ये नहीं पता लगता था कि हमारा संबंधित थाना क्या है, और अगर हम ऐसे थाने पर चले जाते थे जो अधिकारिता नहीं रखता था तो वहाँ से नागरिकों को भगा दिया जाता था और उनकी FIR को दर्ज नहीं की जाती थी। इस समस्या का निराकरण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 में किया गया। इसका नाम दिया गया जीरो FIR और EFIR। जीरो FIR का तात्पर्य होता है कि आप किसी भी थाने पर जाते हैं, चाहे वो अधिकारिता वाला थाना हो, चाहे अधिकारिता विहीन वाला थाना हो, वहाँ के थाने के भारसाधक अधिकारी को इस नए संहिता में निर्देशित किया गया है कि आप उसकी पीड़ा को सुने और तत्काल उपचार दें। दूसरी जो मूलभूत समस्या थी कि हम थाने नहीं जा पाते, विरोधी हमको रोक लेता है, नहीं जाने देता, निकलने पर हमारे साथ और अपराध करने के लिए हमको डराता है, तो इसके लिए अब इलेक्ट्रॉनिक FIR का सिस्टम आ गया है। आप अपने मोबाइल के थ्रू थाने पर आप मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक FIR। ये सबसे प्रमुख विशेषता के रूप में नए कानून में आई। दूसरी जो प्रमुख विशेषता आई वो आया भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4 के अंतर्गत। धारा 4 में दंड का 6 स्वरूप बताया गया है। इसमें जो नया स्वरूप एक हम लोग के सामने

आया है सामुदायिक सेवा, जिसको हम लोग कम्युनिटी सर्विसेज के नाम से जानते हैं। इसमें अपराध के दोषी व्यक्ति को कारावासित न करके उसमें सुधार लाने के लिए उसे समुदाय की सेवा के कार्य में लगा दिया जाता है, ताकि उसके मन मस्तिष्क में जो आपराधिक प्रवृत्ति आ गई है वो धीरे धीरे करके निकल जाए और एक हमारा नागरिक बच जाए, वो फिर अपराध के दुनिया में न जा पाए। ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संशोधन नए कानून में आया। इसके बाद जो बालक शब्द होता था चाइल्ड, इसमें पहले ये था कि जो बालक होता था यानी कि पुरलिंग होता था उसको कहा जाता था 16 साल के नीचे, और जो महिला होती थी 18 साल के नीचे। नए कानून में कहा गया ऐसा कुछ नहीं, अब बालक में 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो और चाहे वो उभयलिंगी ट्रांसजेंडर हो, सबको अब 18 वर्ष के नीचे के बालक माना जाएगा। अगला जो ट्रांसजेंडर थे जिनको थर्ड जेंडर का नाम दिया गया, उनको भी पूरे अधिकार उसी प्रकार दिए गए, ताकि वो उपेक्षित न हो और वो आम नागरिक की तरफ वो भी अपना

0: से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह महिला हो और चाहे वह उभयलिंगी ट्रांसजेंडर हो, सबको अब 18 वर्ष के नीचे के बालक माना जाएगा। अगला जो ट्रांसजेंडर थे, जिनको थर्ड जेंडर का नाम दिया गया, उनको भी पूरे अधिकार उसी प्रकार दिए गए ताकि वो उपेक्षित न हो और वो आम नागरिक की तरह वो भी अपना जीविकोपार्जन कर सकें। इसके बाद इस समय इस नए कानून की एक विशेषता ये थी, आत्महत्या के प्रयास को अब अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया, जो पहले अपराध की श्रेणी में रखा गया था। पुराने कानून में जो हमारे शब्द थे, ब्रिटिश कैलेंडर, क्वीन, ब्रिटिश इंडिया, जस्टिस ऑफ पीस जैसे औपनिवेशिक शब्दों को अपूर्ण रूप से नए कानून से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो मॉब लिंचिंग होती थी, उसको पहली बार भारतीय न्याय संहिता में दंडात्मक स्वरूप दिया गया और भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 की उपधारा 2 में इसको दंडात्मक अपराध के रूप में स्थान दिया गया है। महिलाओं के प्रति जो अपराध होते थे, उन सभी अपराधों को अब एक नए जगह पर संकलित कर दिया गया है और उसमें महिलाओं के प्रति जितने भी प्रकार के अपराध होते थे, वो सबको एक स्थान पर दे दिया गया है। ये नई कानून की एक प्रमुख विशेषता है। संगठित अपराध को धारा 111 में पूर्ण रूप से डिफाइन कर दिया गया है ताकि लोग जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता था उसके बारे में प्रावधान जान सकें। भारत में जो आतंकवादी कृत्य होते थे, उसके लिए भारतीय दंड संहिता में कोई प्रावधान नहीं था, इस बार नए कानून की धारा 113 में इसके लिए प्रावधान रखा गया। अगली विशेषता है कि अपराधों का जब कभी अन्वेषण होगा, जांच होगा, विचारण होगा, तो ऑडियो वीडियो इसकी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग कराई जाएगी, जिसको हम लोग के संहिता में नाम दिया गया है श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इसके साथ साथ न्यायालयों को ये नए संहिता में ये निर्देशित किया गया है कि जब कोई न्यायालय अपना निर्णय सुनाए, तो निर्णय सुनाए जाने के 7 दिन के भीतर अपने निर्णय की प्रति को न्यायालय के पोर्टल पर लोड कर दे, ताकि आम नागरिक भी अगर देखना चाहे, जानना चाहे, तो उसको आसानी से जान सकता है और देख सकता है। जो हम लोग का भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाया गया 2023, इसको 4 भागों में, 12 अध्यायों में, 170 धाराओं में विभक्त किया गया और इसके साथ साथ इसमें एक अनुसूची भी डाल दी गई है जो नए कानून को एक नया स्वरूप प्रदान कर रही है। अनुसूची को इस अधिनियम की धारा 63 के अनुरूप बनाया गया है। इसमें 2 भाग रखे गए, भाग ए भाग बी। देखिए, भाग एक में यह रखा गया है कि जब न्यायालय में कोई पक्षकार आता है तो पहले क्या होता था, वो अपने मन के अनुसार बयान देता था, दर्ज करता था, जिससे न्यायाधीशों को निर्णय देते समय उनके द्वारा दिए गए बयानों को बहुत ही बार पढ़ना पड़ता था। अब यह कहा गया, अब ऐसा नहीं, बल्कि उनको छपे छपाए प्रारूप दिए जाएंगे। जो पक्षकार न्यायालय में आएंगे, उसी प्रारूप के अनुसार वो अपने बयानों को दर्ज कराएंगे। दूसरे जो न्यायालय में विशेषज्ञ आते थे, जैसे डॉक्टर आते थे, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आते थे, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आते थे, इन सब लोगों को भी जब ये अपना बयान दर्ज कराने न्यायालय के सामने आएंगे, तो इनको जो भाग 2 में स्थान दिया गया है, उनको भी प्रारूप में अपनी बातों को लिख कर दिया जाएगा। अंत में हम ये कहना चाहते हैं कि जो उक्त समस्त प्रावधान है, ये भारत को एक लोकतांत्रिक, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। जय हिंद, जय भारत।
1: कानून और हम कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे हर्ष बिहारी श्रीवास्तव की वार्ता, नए आपराधिक कानून एवं उनकी उपयोगिता। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

जो समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। शिक्षा ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। ज्ञान हमें शक्ति देता है, लेकिन चरित्र हमें सम्मान देता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। शिक्षा जीवन की तैयारी

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
3: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो।

0: अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनो में स्टेफान सेल मारिसी स्वेंट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आज़ादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनो में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
2: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्डोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और बी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश लेने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली एसआईटी को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में एसआईटी जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित

0: नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
1: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
0: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
3: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2-3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेन देन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना

जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Today we will change politics to make it more collaborative, more about problem solving than point scoring.
1: In news, Justin, India has condemned the attack on the vessel MV Golden Leo yesterday while departing the port of Odisha. External Affairs Ministry in a statement said four Indian nationals have tragically lost their lives while one is hospitalized in a critical condition. The ministry said that the Indian mission in Ukraine is closely monitoring the situation and is making every effort to extend all possible assistance to those affected. Benchmark domestic equity indices ended on a negative note today. The Sensex declined 443 points or 0.6% to close at 77,709. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Monsoon session of Parliament begins on stormy note. Both Houses of Parliament witness repeated disruptions over various issues. Union Minister J.P. Nadda holds talks with protesters in New Delhi, appeals to end sit-in and restore normalcy. President Draupadi Murmu calls for stronger economic partnership between India and Moldova and greater cooperation in high-growth sectors. Heavy rainfall claims four lives in Jammu Division, taking death toll over past 2 days to 16. Red alert issued for very heavy rainfall over Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir tomorrow. And Labour Party leader Andy Burnham assumes office as the new Prime Minister of the United Kingdom. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शोरगुल के साथ शुरू हुआ। दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुख्तलिफ मामलात पर शोर शराबे की वजह से बार बार मुलतवी करनी पड़ी। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में मुजाहिरीन के साथ बातचीत की है। उन्होंने धरना खत्म करने और मामूल के हालात बहाल करने की अपील की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के दरमियान मजबूत इकतसादी शराकतदारी और आला तरक्की वाले शुबों में इश्तराक बढ़ाने पर जोर दिया है। जम्मू डिवीजन में शदीद बारिश से मजीद चार लोगों की जान चली गई है, जिससे पिछले दो रोज में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकज के ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाके के मुख्तलिफ ज़िलों में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल बहुत शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया गया है और लेबर पार्टी के लीडर एंडी बर्नहैम ने बरतानिया के नए वजीर आजम की जिम्मेदारी संभाल ली है। अब खबरें तफसील से। मानसून इजलास के पहले दिन आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में बार बार रखना पड़ा। अपोजिशन पार्टियां नीट पेपर लीक मामले समेत मुख्तलिफ मामलों पर हंगामा आराई करती रहीं। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई की शुरुआत हाल ही में फौत हुए अपने 6 साबिक अराकीन पार्लियामेंट को ताजियत पेश करने के साथ हुई। ऐवान ने कतर के अमीर के वालिद शेख हमद बिन खलीफा अल सानी को भी खिराज अकीदत पेश किया। ताहम वक्फ सवाल की कार्रवाई नहीं चल सकी क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अपोजिशन अराकीन नीट मामले पर नारेबाजी करने लगे। पहले स्पीकर ओम बिरला और बाद में प्रिसाइडिंग अफसर दिलीप साइकिया की जानिब से ऐवान में नज़्म व नस्क बरकरार रखने और कार्रवाई चलने देने की बार बार अपीलों के बावजूद एहतजाज जारी रहा, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इधर राज्यसभा की कार्रवाई में भी बार बार रखना पड़ा। राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत 9 मुंतखब अराकीन की हलफबरदारी से हुई, जिसके बाद 4 साबिक अराकीन के इंतकाल पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। अपोजिशन अराकीन की जानिब से नीट पेपर लीक मामला और दीगर मामले उठाए जाने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई कई मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। हालांकि चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्यूटी चेयरमैन हरिवंश ने कामकाज चलाने की कई मरतबा कोशिश की। राज्यसभा की कार्रवाई भी बाद में दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए एक सूदमंद मानसून इजलास पर जोर दिया है कि जिस तरह एक अच्छा मानसून मुल्क के लिए मुफीद होता है, उसी तरह एक तामीरी पार्लियामेंट मुल्क की तरक्की में ताउन करती है। इजलास के शुरू होने से पहले मीडिया से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवान नए संगमील हासिल कर रहे हैं, जिससे इस्लाहात की कामयाबी और भारत की बढ़ती सलाहियतों का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता महीने की हुसूलियाबियों ने, जिनमें खलाई शोबा शामिल है, हर भारतीय को फख्र का एहसास कराया है। आलमी महाजाराई खासतौर पर मगरबी एशिया का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने तवानाई, खाद और दीगर ज़रूरी अशिया की सप्लाई से मुतालिक चैलेंजों का कामयाबी से सामना किया है।

0: वज़ीराज़म ने मज़ीद कहा कि इन चैलेंजों के बावजूद मुल्क ने 7.7% की शरह तरक्की दर्ज की है, जो उसे दुनिया की तेज़ी से तरक्की कर रही अहम मईशत बनाता है। जनाब मोदी ने एतमाद जाहिर किया कि मानसून इजलास मुल्क की तरक्की के सफ़र को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मुजाहिरीन के नुमाइंदों से मुलाकात की। जनाब नड्डा ने कहा कि हुकूमत से बात करने की तजवीज़ आज सुबह मुजाहिरीन की जानिब से आई। जनाब नड्डा ने कहा कि यह मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और मुजाहिरीन के वफद के साथ तफसील से शुरुआती जबानी बातचीत हुई। इसके बाद मुजाहिरीन के वफद ने सपहर 4 बजे के करीब हुकूमत को एक तहरीरी अर्जदाश्त सौंपी। जनाब नड्डा ने सभी मुजाहिरीन से धरना खत्म करने और इंतजामिया को मामूल के हालात बहाल करने में मदद करने की अपील की। दिल्ली पुलिस ने इस दौरान मुजाहिरीन से कौमी राजधानी में अमन व अमान बरकरार रखने, तहमुल बरतने और कानून नाफिज करने वालों के साथ तआवुन करने की अपील की, ताकि अमन व कानून की अवामी सूरत हाल को यकीनी बनाया जा सके। अपने वीडियो पैगाम में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव रंजन ने लोगों से तशद्दुद से बाज रहने, पुलिस हिदायत पर अमल करने और सोशल मीडिया पर अफवाहें या गैर मुसद्दका इत्तेलात फैलाने से गुरेज करने की अपील की। जनाब राजीव रंजन ने शहरियों से मालूमात के लिए मुस्तनद ज़राए पर इन्हिसार करने की भी अपील की। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया की इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि एहतजाज कर रहे अभिजीत दिपके को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इन इल्ज़ाम को बिल्कुल गलत करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश हुकूमत से कहा है कि वो अयोध्या के राम मंदिर मुबैना चंदा गबन मामले में खसूसी जांच टीम SIT तश्कील देने के इम्कान पर गौर करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजारों को खबरदार किया कि वह इस मामले को सियासी रंग न दें। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहाना पर मुश्तमिल बेंच ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो SIT की तश्कील के बारे में हिदायत हासिल करें कि क्या मुकामी पुलिस की बजाय उस SIT पर भरोसा किया जा सकता है जो FIR दर्ज होने से पहले इस पूरे मामले की जांच कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट 27 जुलाई को इस मामले की अगली समाअत करेगी, जब उत्तर प्रदेश हुकूमत इस मामले में SIT जांच के बारे में इत्तला देगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने आज कहा है कि पेट्रोल में 20% से ज़्यादा एथेनॉल की आमिजिश किए जाने के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए पेट्रोल और कुदरती गैस के वजीर मुमलकत सुरेश गोपी ने कहा कि एथेनॉल की आमिजिश में इजाफे के सिलसिले में कोई भी फैसला तफसीली, साइंसी और तकनीकी मुताले और सभी मुतल्लिका फरीकों के साथ सलाह मशवरे के बाद ही किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि E20 कोई नया ईंधन नहीं है और उन्होंने मजीद कहा कि इथेनॉल एक सदी से ज़्यादा दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता आ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का पेट्रोल में इथेनॉल आमेजिश प्रोग्राम साल 2001 में पायलट प्रोजेक्ट के साथ शुरू हुआ था। जनाब गोपी ने कहा कि E20 की जानी मुंतकली रफ्ता रफ्ता शवाहिद पर मबनी और साइंसी जायजे की बुनियाद पर हो रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल की आमेजिश में साल 2013-14 के 1.53% से साल 2025-26 में 20% का इजाफा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत का मकसद साइंसी जवाज के साथ पेशकदमी करना है और ईंधन के मेयारात में बेहतरी लाना है। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोलदोवा के दरमियान गहरी माशी मसरूफियात की बात की है और कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान आला नमो के कई शोबों में इश्तराक को वसूत देने की भरपूर सलाहियत मौजूद है।
1: I am greatly encouraged by the growing cooperation. There is immense potential for collaboration across diverse sectors such as digital technologies, artificial intelligence, cyber security, fintech, digital public infrastructure, infrastructure development, renewable energy, advancement of manufacturing, logistics, agriculture, food processing, pharmaceuticals, biotechnology. Indian companies are interested in participating in the development projects of Moldova in renewable energy sector, including solar energy, battery storage, smart grids, green hydrogen.
0: सदर जमहूरिया आज चिसिनाऊ में भारत मोल्दोवा कारोबारी फोरम से खिताब कर रही थीं। विकसित भारत 2047 का हवाला देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत एतमाद और मुश्तरका खुशहाली पर मबनी इश्तराक का खाहां है, वहीं मोल्दोवा का स्ट्रेटेजिक महल वकू और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत भारतीय कारोबार के लिए उम्मीद अफजा इम्कान की पेशकश करती है।
1: India also offers good business opportunities for Moldovan companies for trade and investment. We remain committed.

आशा भोसले की आवाज़ में उमराव जान फिल्म की ये गज़ल आपने सुनी। खयाम का संगीत था शहरयार के बोल। दोस्तों, अगली गज़ल जो हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसमें बिछड़ने का दर्द भी है, साथ बिताए लम्हों की मिठास भी, और मोहब्बत की वो मासूम इल्तिजा भी जो हर दिल को छू जाती है। ये महफिल, ये फिज़ा, ये हंसी शाम का आलम, कुछ देर और ठहरो, यही दिल की ख्वाहिश है।

आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में कहकशां फिल्म की ये गज़ल आपने सुनी, मधु मुखर्जी का संगीत। दोस्तों, गज़ल की खूबसूरती यही है कि वो बहुत कम अल्फाज में दिल की गहरी बात कह देती है। कभी एक मुस्कुराहट, कभी एक खामोश नज़र और कभी झुकी हुई पलकों का अंदाज़, ये सब भी इश्क की जुबां बन जाते हैं।

जगजीत सिंह की आवाज़ में अर्थ फिल्म की ये गज़ल आपने सुनी। संगीत था जगजीत सिंह का, शब्द रचना कैफी आज़मी की। दोस्तों, फुर्सत के वो पल, वो हंसी, वो बातें आज भी यादों की किताब में महकती हैं। दिल ढूंढता है फिर वही सुकून जो जिंदगी की सादगी में मिला करता था।

मौसम फिल्म का ये गाना आपने सुना भूपेंद्र की आवाज़ में। ये गज़ल संगीत से सजाई थी, मदन मोहन ने शब्द रचना गुलजार की थी। दोस्तों, दिल एक ऐसा मुसाफिर है जो अक्सर उस राह पर निकल पड़ता है जहां मंजिल का पता नहीं होता। कभी ये ख्वाबों के पीछे भागता है तो कभी यादों में खो जाता है और कभी अपने ही सवालों के जवाब तलाशता रह जाता है। शायद इसीलिए इसे दिले नादान कहा जाता है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में रज़िया सुल्तान फिल्म की ये गज़ल आपने सुनी। संगीत था खयाम का, शब्द रचना जान निसार अख्तर की। इसी के साथ कहकशा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे।
1: माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी,
2: माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को अपने 6 पूर्व साथियों एवं कतर के पूर्व अमीर फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री नादेन दला भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के खम्मम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, जो अभी तेलंगाना में है, 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। श्री राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री नादेंदला भास्कर राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। श्रीमती ओमवती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी। वे श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु सील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुधांशु सील जी का निधन 81 वर्ष की आयु में 14 मई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रक्षा संबंधी संसदीय समिति तथा वित्त संबंधी संसदीय समिति के सभापति भी रहे। वह अन्य कई संसदीय समितियों में भी अपनी सेवाएं दी। उन्हें नए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास गरीबी उपशमन मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री खंडूरी जी 2 बार उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का निधन 91 वर्ष की आयु में

0: 20 मई 2026 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। श्री केपी धन पालन केरल के चाला कुंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य तथा कंप्यूटर के प्रावधान संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री केपी धन पालन का निधन 76 वर्ष की आयु में 30 मई 2026 को एर्नाकुलम केरल में हुआ। श्री प्यारेलाल संगवार उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व वे 2 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्यारेलाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। माननीय सदस्यगण, प्लीज आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। नहीं, सदन के अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है। उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी, सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज प्रश्नकाल, प्रश्न नंबर 1, धवन लक्ष्मण भाई पटेल।
1: प्रश्न नंबर 1।
2: प्रश्न संख्या 1, क्या संस्कृति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क भारत की धरोहर पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई ज्ञान भारतम पहल के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं? ख, क्या भारत की पांडुलिपि और ज्ञान की विरासत के संरक्षण के लिए उक्त पहल में दक्षिण गुजरात के वलसाड निर्वाचन क्षेत्र के ढोडिया, कोकना और वर्ली समुदायों सहित जनजातीय समुदायों की मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं का प्रलेखन शामिल है? ग, उक्त पहल के अंतर्गत ऐसी जनजातीय ज्ञान परंपराओं सहित प्राचीन पांडुलिपियों और ज्ञान की परंपरा के डिजिटीकरण, परिरक्षण और प्रसार में कितनी प्रगति हुई है? घ, ये पहल भारत की सभ्यता और ज्ञान की विरासत को सुदृढ़ करने के लिए किए जाने वाले व्यापक प्रयासों के साथ किस प्रकार जुड़ती है? और अंग, क्या सरकार के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग सहित इन डिजिटीकृत संसाधनों के साथ विद्वान जन के व्यापक जुड़ाव, सहयोग और लोगों के लिए इनकी सुलभता हेतु कोई रूपरेखा है?
3: मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान

0: पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड़ संसदीय क्षेत्र के दोड़िया, कोकड़ा और वाली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें एआई का उपयोग किया जा रहा है।
1: माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है, और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे। मोदी जी ने प्राण लेलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे विकसित भारत बनाने का। दूसरा प्रण लेलवाते हुए गुलामी की मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी, और तीसरा प्रण लेलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि विरासत से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मेनू हमारी विरासत है, और आज मंदिर के रूप में, शोक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारी मैनुस्क्रिप्ट है। ये मैनुस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च ड्रिवन बनाने के लिए, जन सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा, और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैनुस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया। उसमें से ये मैनुस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ अब डिजिटलाइज हो चुके हैं, और उसमें से 3,74,000 मैनुस्क्रिप्ट आज ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, और उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैनुस्क्रिप्ट होगी उसको भी ये सर्वे में शामिल करके उसको भी उसके प्रति संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा।
2: सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है, मेरा आपसे आग्रह है आप सदन के अंदर साथ चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर पर्याप्त समय मिलेगा, नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है, मैं आपको प्रयास में दूंगा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
3: अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू आर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
4: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में अभिनेत्री फिल्म से, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत मजरूह के बोल।

श्रोताओं, अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं विपिन सचदेवा की आवाज में सनम बेवफा फिल्म से। संगीत है महेश किशोर का, शब्द रचना सावन कुमार की।

आशा भोसले की आवाज़ में लीजिए सुनिए तेरी मेहरबानियां फिल्म का ये गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, SH बिहारी के बोल।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए गुरु प्रसाद शर्मा का राग रागेश्री में वायलिन वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गुरु प्रसाद शर्मा का राग रागेश्री में वायलिन वादन। आपके साथ तबले पर संगत की थी श्री संदीप कुमार चक्रवर्ती ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति के गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक

0: least 7 people are still missing as heavy rains continue to hamper rescue operations in flood-affected Rajouri and Poonch districts. Chief Minister Omar Abdullah has announced an ex gratia relief of 6 lakh rupees for the next of kin of each person who lost their life in rain-related incidents in Rajouri and Poonch districts. That is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 11:10 हो रहे हैं। हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह प्रातःकालीन सभा में 5:53